आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: We have seen the comments.
3: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: Regulate the flow of foreign funds.
1: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं।
2: While we are coordinated,
3: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
1: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
6: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिया।

0: गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
2: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के OPD में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
4: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर CBI द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, NTA के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, CBI का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते। NTA के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, CBI ने दाखिल की चार्जशीट, NTA के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से CBI ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी CBI जांच करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली NCR में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जल भराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, FCRA पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। UPI लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित FCRA विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to present IIT Delhi's highest honours to meritorious students during its convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies APEC's digital payments body PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation is country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. US Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over five countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars, who will be conferred their degrees during the ceremony. We have more from our correspondent.
6: Prime Minister Narendra Modi will present the institute's most prestigious honours, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medal to the meritorious students during the ceremony. Further, Mr. Modi will also inaugurate Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at the Sonipat campus of IIT Delhi. The state-of-the-art facility is expected to significantly enhance the institute's capabilities in AI, data science, advanced computing and interdisciplinary research. In a social media post, the Prime Minister has said that IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said that he looks forward to being among the students and teachers of this pioneering institute. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
5: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu has thanked Prime Minister Modi after the two leaders reviewed progress in various aspects of partnership. Mr. Netanyahu wrote in a social media post responding to Mr. Modi's post regarding the conversation between the two leaders. During the phone call on Thursday evening, both leaders reviewed progress on various aspects of the India-Israel Special Strategic Partnership and also discussed the current situation in West Asia. Payments Council of India, PCI, has announced that UPI will continue to be free for consumers. We have a report.
7: In a statement, the PCI affirmed that every Indian can continue to make instant digital payments without any transaction charges. It also noted that small merchants will not be charged for accepting digital payments. The PCI added that banks, fintech companies, NPCI and the RBI have been investing in technology, cybersecurity, fraud prevention and innovation to maintain UPI's reliability. The PCI clarified that any applicable merchant service charges, which are commercial arrangements solely between merchants and payment providers, do not mean that consumers pay to use digital payments. It highlighted that UPI has become a critical national digital infrastructure used daily by many citizens. The PCI further noted that as transaction volumes continue to grow, sustained investment in security, resilience, innovation, fraud prevention, and infrastructure will remain essential to ensure UPI reliably serves consumers and businesses for years to come. With Bhanu and Suparna, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
5: India has rejected the objections raised by a US lawmaker on the proposed Foreign Contribution Regulation Amendment Bill, saying that its legislative matters are its internal affairs in which the decisions are taken by the Parliament. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this during a media briefing in New Delhi while replying to a question in this regard.
8: We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs on which decisions are taken by the Parliament of our country.

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: BMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

श्रोताओं, कहते हैं कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। आज की सुबह भी आपके लिए ढेर सारी नई अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे नए नए अवसर लेकर आई है। आपके दरवाजे पर ढेर सारी खुशियां लेकर आई है। सुप्रभात, नमस्कारम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है आप सभी का। स्वागत अभिनंदन करते हैं आज के इस बेहतरीन से प्रोग्राम में और इस बेहतरीन से सुबह में आप सभी का पूरे खुले दिल के साथ स्वागत अभिनंदन है। वेलकम वाला गुड मॉर्निंग है जी, एक ताज़ा सुपर फ्रेश वाला गुड मॉर्निंग आपको ताज़ा तरीन करने और बेहतरीन से गाने सुनाने और ढेर सारी बातें बताने आपके रेडियो पर हाजिर हो गए हैं। वक्त हुआ है 8:23। श्रोताओं, आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के साथ। यह है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ जी, 8:24 हो रहे हैं। समय के साथ साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। और बड़ी खूबसूरत सी बात किसी ने लिखी है कि बहुत सारे ख्वाब टूटते हैं, उसके बाद एक बहुत प्यारी सुबह मिलती है, और उस सुबह को हम ऐसे कैसे व्यर्थ जाने दे सकते हैं, राइट। सुबह खूबसूरत है, दिन बहुत प्यारा है, आज सैटरडे है, बहुत खूबसूरत सी वाइब है, बहुत प्यारा मौसम है, और ऐसे में अच्छे गाने ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। आज की सुबह की शुरुआत एक अच्छे गाने से करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि अगर आज की सुबह आप कहीं भी जा रहे हैं तो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक आप निकलिए अपनी जर्नी पे। और तबीयत अगर थोड़ी सी नाशाद है तो कोई बात नहीं जी, हम तो आपके लिए यही प्रार्थना करेंगे कि गेट विल सून, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, मस्त हो जाएं। और अगर आप स्वस्थ हैं तो थोड़ा सा अपनी बॉडी के लिए जागरूक बने, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। सुबह सुबह योगा, प्राणायाम, कपाल भाती, ओम चेंडिंग, जो आपको अच्छा लगता है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप जरूर करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको कभी बीमार नहीं होने देगी। श्रोताओं, आने वाला गाना जो आपकी सुबह को और भी बनाएगा झकास, आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, यह बिंदास मॉर्निंग ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मैं जरा से दिन में लौट कर आता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ करेंगे आपसे ढेर सारी बात। 10 बजे तक रहूंगा आपके साथ इसी स्टेशन पर। फिलहाल आने वाला गाना जसपिंदर नरूला एंड रूप कुमार जी की ब्यूटीफुल आवाजों में, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: कोई मिल गया
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है यार, इतना बढ़िया गाना, और इसको सुन के सच में मैं आपको बता रहा हूँ सुबह अमेजिंग हो गई है, एकदम ब्यूटीफुल हो गई है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आरजे आनंद के साथ, यह है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, 8:37 का समय हो गया है और अभी स्टेशन की घड़ी में वक्त तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, तारीख है आज 8 अगस्त 2026। देखिए आप कितनी तेजी से अगस्त का महीना निकल रहा है यार, आई कांट बिलीव दिस। दोस्तों आपको बता दें, जिंदगी में अगर आप कुछ सच में अच्छा सोचते हैं ना, तो वो अच्छा आपके साथ होता भी है। बस आपको ना अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को एंट्री देनी है, अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है आपने एंटर कराना है अपनी लाइफ में। जब आप अच्छी चीज़ों को एंटर कराएंगे तो यकीन मानिए वो अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को भी अच्छा बना देंगी। ग्रोकरी कैलेंडर के अनुसार 8 अगस्त वर्ष को अगर हम बताएं तो अभी ये इस लीप वर्ष का जो ईयर है वो ये 221वां दिन है, और अगर मैं साल की बात करूं तो साल में अभी 145 दिन बचे हुए हैं, यानी कि 145 डेज बचे हैं, जिसमें ढेर सारे फेस्टिवल्स होंगे, बहुत सारी शादियां होंगी और बहुत सारा फन होगा, बहुत सारे वीकेंड्स भी होंगी, छुट्टियाँ भी होंगी, यानी कि 145 डेज अभी बचे हुए हैं आपके पास। सोचिए आप, साल के 365 दिन होते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, लेकिन इन साल के 365 दिन मतलब से जाने को है, मैं आपको शब्दों नहीं बता सकता, मतलब आई कांट टेलिंग यू यार, बट मैं आपको सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 145 डेज जो बचे हैं ना, ये मतलब जो 145 दिन बचे हैं, इनको अच्छे से इस्तेमाल करिए, इनको अच्छे से यूज़ करिए। जिस जो भी आपने अपना एम देखा है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपके अपने रेजोल्यूशन थे 2026 के, वो प्लीज़ सब कंप्लीट करिए, नहीं तो पता चल रहा है सन 2027 में जाते पछतावा मिले, तो वो नहीं करना है आपने। जो भी आपके यू नो ख्वाब हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपने देखा है, आई होप सब कुछ मुकम्मल हो। हाँ जी, 145 डेज, 145 दिन बचे हुए हैं साल खत्म होने में। आगे बढ़ते हैं आइकॉन एक्सप्रेस की, मैं कैसे चीज़ों को बताऊं आप तक, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। आज का दिन क्यों खास है, क्या स्पेशल है आज के इतिहास के पन्नों में। ताइवान आज़ाद होने के लिए जनमत संग्रह की योजना से पीछे हटा सन 2002 में, आज ही के दिन श्रोताओं। और आपको बताते चलिए, मीरूबाई जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था, जो प्रसिद्ध वेट लिफ्टर हैं भारतीय, बहुत ही फेमस भारतीय वेट लिफ्टर हैं ये, 1994 में इनका जन्म हुआ था, आज ही के दिन श्रोताओं। और आपको बताते चलिए, शास्त्रीय संगीत के जो गायिका जिन्हें एक ऐसे खूबसूरत कला से नवाजा गया है, जिनके बारे में बात करना तो बनता है। सिद्धेश्वरी देवी की बात कर रहा हूँ, सन 1908 में आज ही के दिन जन्म हुआ था, शास्त्रीय संगीत गायिका हैं, आज ही के दिन जन्म हुआ था इनका। और आपको बताते चलें, दिलीप जी का जन्म हुआ, दिलीप सर देसाई जो भारतीय क्रिकेटर हैं, सन 1940 में आज ही के दिन जन्म हुआ था इनका। बाकी बलवीर सिंह खुल्लर जी का जन्म हुआ, जो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व सदस्य थे, सन 1942 को इनका जन्म हुआ था श्रोताओं, आज ही के दिन। आपको बता दें, एक और क्रिकेटर का नाम जुड़ गया है आज ही के दिन, 8 अगस्त को भारतीय क्रिकेटर सुधाकर राव जी का जन्म हुआ, सन 1952 में आज ही के दिन। बाकी और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आज के दिन के बारे में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, 1942 में महात्मा गांधी ने मुंबई भारत छोड़ो आंदोलन का जो है ऐतिहासिक आह्वान किया था, करो या मरो नारा भी उन्होंने आज ही के दिन दिया था श्रोताओं। और आपको बता दें, आज के दिन 1967 में आज़ादी के बाद पहली बार लोकसभा केंद्र में सरकार को मतदान में हार का सामना जो करना पड़ा था, वो आज ही का दिन था।

तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ विशेष बातें, विशेष महत्वपूर्ण घटनाएं जिन पर हम एक नजर डाल रहे थे। बाकी और क्या स्पेशल है आज की तारीख में, इस पे हम और आपको बताएंगे थोड़ी थोड़ी देर के अंदर, बताते रहेंगे सारी चीजें। 8:41 हो गए, आप आनंद को सुन रहे हैं। अगर अभी तक आपने मुझे मैसेज नहीं किया है तो फिर आप बहुत पीछे हैं मेरी क्लास में। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पे, लौट कर आएंगे तो आपके मैसेज को हम यहाँ पर शामिल करेंगे। ना अभी लौट कर आएंगे तो फिर ये मत कहना यार मेरी मैसेज क्यों शामिल नहीं हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज भी यहाँ पे हम शामिल करें तो उसके लिए आप हमें मैसेज करें 9837896896 पर। हमें इंतज़ार रहेगा आपके मैसेजेस का। फिलहाल एक आने वाला गाना जिसके लिए आपको बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एक बहुत ही खूबसूरत और उम्दा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर निकल गया है एंड काफ़ी समय के बाद मैं इस गीत को सुन रहा हूँ। बाकी आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पर। अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। काफी ब्यूटीफुल ट्रैक है उदित नारायण एंड अलका याग्निक जी की आवाजों में इस प्यारे गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। रेडियो की वॉल्यूम थोड़ी हाई कर लीजिए क्योंकि आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला।
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

काफी बढ़िया फिल्म और काफी बढ़िया गाना और काफी नॉस्टैल्जिया गाना फ्लैश बैक में लेके होगा आपको ये गाना, बहुत ही अच्छा गाना। इसको सुनते हुए तो हम भी बड़े हुए हैं यार। लता ताई इतनी प्यारी देखो यार आवाज लता मंगेशकर मैम की, और इतना खूबसूरत ट्रैक माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइजेशन, गाना इतना बढ़िया, स्टार कास्ट इतनी अच्छी, मूवी इतनी बढ़िया, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आज की सुबह ऐसे गाना सुन के आप फ्लैश बैक में चले जाओगे। 8:55 हो रहे हैं, आनंद के साथ सुन चुके हैं आप भैया एक बढ़िया गाना, और अभी आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। आपके मैसेज की तरफ आगे बढ़ेंगे, जोरदार ताली, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप कर रहे हैं, ओरिजिनल वाली ताली दे रहा हूँ यार आज की सुबह। चलो आगे बढ़ते हैं, पूजा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह गायत्री नगर से, ये लिखती हैं आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आए आनंद जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, और बस आपकी हर कोशिश रंग लेकर आए, हर दिन आपकी जिंदगी में मुस्कान आए, पॉजिटिविटी आए, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच मैम। हाय गुड मॉर्निंग, सिविल लाइन से राहुल बात कर रहा हूँ, आनंद कैसे हाल चाल है ब्रदर, आपके गाने और आपकी बातें सुनके तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। एक बात कहना चाहता हूँ, बीता हुआ कल चाहे जैसा भी था आज आपके हाथ में है, इसे बेहतर बनाइए और खूबसूरत बनाइए। आरजी आनंद आपको दिल से थैंक यू, आप बहुत ही अच्छे गाने प्ले करते हो। माय गॉड राहुल, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज यार, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल मैसेज। आगे बढ़ते हैं, एक और मेरे पास मैसेज पहुंचा है सोनिया जी का, गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल हैं, ये मुझे कारशूट से मैसेज करती हैं, TDI सिटी से लिखती हैं, आई होप आनंद आप अच्छे होंगे, मैं सुबह सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर रही हूं और आपका रेडियो सुन रही हूं, वीकेंड है, अच्छे गाने आप बजाते हो, बड़ा मजा आता है ये गाने सुन के, हमारा दिन और हमारी आत्मा दोनों ही बढ़िया हो जाती है ये गाना सुन के। ओ माय गॉड क्या बात है यार, थैंक यू सो मच सोनिया जी, आपने बात लिखी और साथ में एक प्यारा सा थॉट भी शेयर करती हैं कि आज बस इतना याद रखिए कि आपकी मुस्कान जो है वो आपकी सुबह को और भी ब्यूटीफुल बना सकती है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, और सोनिया जी हमारी मुस्कान हमारे साथ साथ किसी और का दिन भी अच्छा बना सकती है, राइट, तो इसीलिए अपने चेहरे पर एक मीठी मीठी मुस्कान लेकर आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए। तो मुरादाबाद आप भी उठिए, मुस्कुराइए और कहिए गुड मॉर्निंग, आज का दिन मेरे लिए बड़ा खास है क्योंकि आज मैं आरजे आनंद को सुन रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी मुझे कुछ स्पेशल बताना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड प्यारे प्यारे मैसेज मुझ तक पहुँचा सकते हैं। इसी बीच अमित जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं हनुमान मूर्ति से, लिखते हैं आज किसी की जो है आपने टेंशन नहीं लेनी है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और धीरे धीरे चलते रहिए, रुकिए मत, जिंदगी में सफलता ज़रूर मिलेगी। आनंद वेरी गुड मॉर्निंग, FM मुरादाबाद सुन रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका रेडियो एंड काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स बैक टू बैक होते हैं आपके चैनल पर, थैंक यू सो मच अमित जी। नेहा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह पागवाड़ा दिल्ली रोड से, लिखती हैं आनंद जी सुप्रभात, कैसे हालचाल है, एक और नई सुबह आप कहते हो लेकर आई है, नया मौका मैं आपको देती हूँ आज के दिन की ढेरों मंगल शुभकामनाएं, थैंक यू नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जरे नवाजी के लिए। और इसी बीच विकास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। जुल्फी भाई जुड़ चुके हैं, लिखते हैं आज का दिन नई उम्मीद के साथ शुरू कीजिए, मेहनत आपकी है, नतीजा भी जरूर आपको अच्छा मिलेगा, क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत। तारिक भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लिखते हैं गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल हैं, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, ये जिगर कॉलोनी से मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं आज की सुबह। तो आपके ढेर सारे मैसेजेस के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे दोस्त, आप ऐसे ही अपना प्यार और अपनी मोहब्बत इतनी शिद्दत के साथ जो आप बनाए रखते हैं ना उसको ऐसे ही बनाए रखिए। बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ खास सेलिब्रेट होता है आज की तारीख में, और लेकिन उससे पहले तालियां, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ थोड़ी सी देर में, जो आपके दिमाग का बत्ती गुल मीटर चालू कर देगी, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, जरा सी देर में लौट कर आऊंगा तो डेफिनेटली आपसे पूछने वाला हूँ। स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास। कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ नंबर 9837896896 पर।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: क्या मेरी कसम?
1: मिस कर दिया तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय.
4: बिंदास मॉर्निंग.
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.
5: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग.

गुड मॉर्निंग है, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज एक बहुत ही बेहतरीन सुबह है, सैटरडे मॉर्निंग है, वीकेंड इज हियर, फाइनली वीकेंड आ गया। मुझे लग रहा था यार कितने महीनों बाद ही सैटरडे आएगा, आई डोंट नो, फाइनली सैटरडे आ गया, आई एम सो हैप्पी यार। फिलहाल तीसरे घंटे की शुरुआत, दिस इज माई लास्ट आवर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। कौन सा चैनल है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। घर से निकलने से पहले कौन सी ऐसी चीज है जो इंसान को डेफिनेटली करनी चाहिए? आज की सुबह अगर कोई घर से बाहर निकल रहा है, अभी अपने ऑफिस जा रहा है या फिर अपने किसी भी काम से जा रहा है, किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जा रहा है, तो उसे क्या एक ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे उसका दिन बहुत ही बेहतर से बेहतरीन हो जाए? आप क्या एडवाइस करोगे आज की सुबह? आप क्या स्पेशल करके निकलते हो, मतलब अपने आराध्य की, इष्ट की पूजा करके निकलते हो, जिस भी भगवान को आप, अल्लाह को, वाहेगुरु, खुदा, जिसको भी आप मानते हो, उनको नमन करके निकलते हो या अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके निकलते हो? कौन सी चीज है जो करके आप निकलते हो तो आपको लगता है कि आपका दिन बढ़िया हो जाता है? मैं जानना चाहता हूं आज, हो सकता है आपका वो फंडा, वो जो तरीका है, वो किसी और को अपना कर, कोई और उसको अपनाए, उसके काम आ जाए, हो सकता है उसकी लाइफ में थोड़ा चेंज आ जाए। सो डू शेयर जो भी आप करते हैं अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए। कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए, जब आप कोई फंडा फॉलो करते हो, कोई रेमेडी फॉलो करते हो, तो कौन सी होती है वो आप मुझे बताओ। क्या एक ऐसा काम करके निकलना चाहिए अपने घर से बाहर कि हमारा काम भी बन जाए और हमारी चीज़ें भी बेहतर हो जाएं? अब ये मत कहना आनंद यार हम तो दही चीनी खा के निकलते हैं, हर कोई स्पेशल काम के लिए वो चीज़ करके निकलता है, बट आपका क्या फंडा है आप मुझे डेफिनेटली बताइए, वो मैं पूरे मुरादाबाद को शेयर करूंगा। घर में जब हम होते हैं और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कौन सी चीज को आप करके निकलते हो या निकलना चाहिए करके, कौन से काम को जिससे आपका दिन बेहतर से बेहतरीन हो सके?

वाला बेहतरीन गाना जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी ऑसम। एक और गाना वीकेंड है यार, सैटरडे की सुबह एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम इस गाने को सुन रहा हूँ और इस गाने के साथ करेंगे आज की शुरुआत।

आप मुझे व्हाट्सएप करके जरा फटाफट से बताओ, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आप कौन सी चीज को फॉलो करते हो, कौन से फंडे को फॉलो करते हो, और बाकी लोगों को भी क्या ये करना चाहिए, दिन लोगों का अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, बेहतरीन हो जाए, क्या ऐसा एक काम करके घर से बाहर निकलना चाहिए, आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं व्हाट्सएप करके 9837896896 पे। आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस, फटाफट मैसेज करना, कोई बहाना मत देना, इमीडिएटली व्हाट्सएप कर सकते हो आप मुझे 9837896896 पे। इंतजार कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का, एंड फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इस गाने को सुनेंगे। लौट कर आऊंगा तो बताऊंगा आज का दिन क्यों खास है, इस पे बात करेंगे। अरिजीत सिंह की ब्यूटीफुल आवाज, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: हॉस्पिटल मुरादाबाद में

आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ, और अभी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। मैं डेफिनेटली इनको यहाँ पे शामिल करने वाला हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कहीं ट्रैफिक में हैं, आपको लग रहा है कहीं हल्का ट्रैफिक है, कहीं स्लो ट्रैफिक है, कहीं हैवी जाम है, तो डेफिनेटली आप मुझे अपडेट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896 पे। आप मुझे बता सकते हैं आज की सुबह मैसेज करके अगर कहीं पे जाम है, तो अगर नहीं भी है तो भी आप मुझे अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल इस गाने को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं।

0: शहर की वाइब सेट हो रही है इंडिपेंडेंस डे को लेकर। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मुरादाबाद, अब तैयार हो जाओ इंडिपेंडेंस डे की रंग में रंगने के लिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव आ गया है, जिसके बारे में अगर आपको पता है तो आरजे आनंद है ना बताने के लिए। हाँ जी, तो देखिए बहुत सारी अब लेटेस्ट खबरें आपको फटाफट बताते हैं। आज इंटरनेशनल कैट डे मनाया जाता है। जो लोग कैट लवर हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। जो लोग अपनी कैट से बड़ा प्यार करते हैं, जो अपनी कैट को बहुत ज़्यादा अपने दिल के करीब रखते हैं, उनके लिए बहुत ही स्पेशल दिन है आज। ऑफकोर्स येस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल कैट डे। मेरी भी एक दोस्त है जो कैट से बड़ा प्यार है यार, बट मेरे को सच्ची बता रहा हूँ, मैं 100% बता रहा हूँ, मेरे को कैट से बड़ा डर सा लगता है, पता नहीं क्यों यार। मतलब मुझे लगता है यार कितनी भयंकर, मतलब वो कहते हैं शेर की मौसी होती है शायद कैट, राइट? पता नहीं क्यों मेरे को डर लगता है यार। तो मैं बाकी जो लोग बड़े एकदम चौड़े में कैट से बड़ा प्यार करते हैं एकदम धांसू तरीके से, तो उनके लिए स्पेशल दिन आज सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी आपको बताया ना, देखिए कावड़ भाइयों के लिए बहुत ही स्पेशल मंथ चल रहा है। हर हर महादेव बोलना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, तो अभी हर हर महादेव हम साथ में बोलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे आज सीएम योगी जी। हाँ जी यस, आज मेरठ में जो है ये पुष्प वर्षा होने की तैयारी हो गई है। आपको बता दें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज सैटरडे को मेरठ में कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे, एंड मुख्यमंत्री साहब गाजियाबाद के जो है, मतलब गाजियाबाद से शुरू होगा ये सिलसिला, और ये मेरठ तक जो उस मार्ग पे जो कावड़िए होंगे उनके लिए बहुत ही स्पेशल मूवमेंट होने वाला है आज की सुबह। ऑफकोर्स ये जो कार्यक्रम है लगभग 2.5 घंटे तक चलने वाला है, और आपको बता दें अपनी यूपी में बहुत ही स्पेशल रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी भी चल रही है। सीएम योगी साहब शनिवार को जो है, मतलब आज लखनऊ से जो है वो रवाना होंगे 10:50 पर, और उसके बाद जो है वो गाजियाबाद एंड बागपत और मेरठ, इन सभी रूट पे जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर वो हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करने वाले हैं। सो ये तो अपने आप में एक बहुत ही एक स्पेशल मूवमेंट होने वाला है, एंड दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग एंड मेमोरेबल मूवमेंट, जिसको लोग बड़ा फीचर करने वाले हैं, कैप्चर करने वाले हैं। ये जोरदार ताली है अपने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस यार, ये बहुत ही अच्छा, हर बार ये कुछ ना कुछ नया होता है, तो ये चीज़ सुनकर देखकर सच में अंदर से एक ग्रेट वाली फीलिंग आती है यार, सच बता रहा हूँ आपको। अभी आने वाला गाना भी अच्छा है। जरा सी देर में इस गाने को सुनने वाले हैं आप आनंद के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ कहना चाहते हैं तो इमीडिएटली मैसेज कर सकते हैं आप अभी भी मुझे 9837896896। आपको बताया ना रूट डाइवर्जन हो गया है, ट्रैफिक को लेकर बहुत सारी नई नई चीजें हुई हैं। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे तक ही रहने वाला है, यानी कि कल मंडे तक इनफैक्ट क्या कुछ और खास चीजें चेंज हुई हैं ये मैं अभी आपको मैसेज करके बताऊंगा। आप मुझे मैसेज करके बताओ, सॉरी मैं गलत बोलूँ, आप मुझे मैसेज करके बताओ कि आप कहीं जाम वाम में तो नहीं हो। बाकी क्या है राइट इन्फॉर्मेशन ट्रैफिक की, वो मैं आपको दूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप धीरे धीरे रेडियो भी सुन रहे हैं, वेरी नाइस। चलो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और आपके जो वॉइस नोट आए हैं ना पहले इनको सुनते हैं, एंड उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ढेर सारे मैसेज मेरे पास पहुंच रहे हैं आज की सुबह, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेजेस। मेरे पास सोनालिका का मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हैं आप? आपके शो में बहुत ही प्यारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत मजा आता है सुनकर, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे पास गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं गोविंदपुर खुर्द से रजा हुसैन साहब। इसके अलावा हमारे पास मुंबई से बबलू, महाराष्ट्र से बबलू जी जुड़े हैं, मुंबई महाराष्ट्र से। इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, सहारनपुर से बात कर रहा हूं मैं। ये जोन रोजी पलविलीज विद फैमिली जुड़ चुके हैं आज की सुबह हमारे शो में, लिखते हैं हर जगह अपनापन नहीं मिलता, कुछ जगह सिर्फ अनुभव मिलते हैं। एग्जैक्टली रिहाना मेरे साथ जुड़ी है रानी नागल से, गुड मॉर्निंग। मेरे पास पहुंच रहा है श्वेता का, इन्होंने लिखा है आनंद जी जब भी घर से बाहर लोग निकले मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि वो एक स्माइल के साथ निकले, एक पॉजिटिविटी के साथ निकले, उनका दिन पूरा अच्छा जाएगा। मैं तो इसी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करती आ रही हूं, और हमेशा जब भी घर से बाहर निकलती हूं, कितनी भी मैं स्ट्रेस में हूं, टेंशन में हूं, मैं बट कोशिश करती हूं कि अपने चेहरे पर एक मीठी मीठी मुस्कान लेके घर से बाहर निकलूं, और जब भी कोई मुझे देखता है वो भी खुश हो जाता है। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यही ये सबको रिकमेंड कर रही हैं कि आप भी अगर घर से बाहर निकलो तो एक अच्छी से स्माइल लेके फेस पे निकलो, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा फंडा आपने शेयर किया है, थैंक यू वेरी मच। आप भी बता सकते हैं कि भैया आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप कौन से फंडे को फॉलो करते हैं, कौन सी एक चीज़ करके बाहर निकलते हैं जिससे आपका दिन बढ़िया हो जाता है, और मैं चाहता हूँ कि वो और भी लोग करें ताकि उनका भी दिन बेहतर से बेहतरीन हो जाए। डेफिनेटली आप बता सकते हैं मैसेज करके 9837896896 पे। 9:22 हो गए स्टेशन की घड़ी में, आने वाला गाना शुक्र अल्लाह, उससे पहले कुछ एड ब्रेक आ रहे हैं, उसके बाद मेरी एंट्री होगी अच्छे से गाने के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी होंगी। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। वेरी गुड मॉर्निंग।
1: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
5: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
6: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
7: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
6: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

ब्यूटीफुल गाना सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल के भैया आवाजों में अभी आप इस गाने को सुन रहे थे, बहुत ही प्यारा ट्रैक। वेलकम बैक है जी, गुड मॉर्निंग, आप जहां भी जा रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट। आप आनंद के साथ हैं, 9:29 हो गया स्टेशन क्लॉक में टाइम। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था यार, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो कौन सा काम करके घर से बाहर निकलते हो ताकि आपका दिन पूरी तरीके से फैंटास्टिक हो जाए। एंड अगर आप किसी को कुछ एडवाइस करना चाहते हो, जो भी आपको लगता है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड सो मेनी मैसेजेस यार, इतने प्यारे प्यारे व्हाट्सएप आपने किए हैं, एंड मतलब मेरे को बड़ा मजा आ रहा है यार सुनने में। थैंक यू सो मच, कुछ तो बड़े प्यारे प्यारे लिख के आपने जो पहुंचाए हैं ना यार, अनबिलीवेबल यार। देखो मैं फटाफट से पढ़ता हूँ। हाय गुड मॉर्निंग सर, मैं घर से बाहर निकलने से पहले मम्मी को गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ, क्योंकि बिना आशीर्वाद के बाहर निकलना और बिना पेट्रोल के बाइक चलाना दोनों ही रिस्की हो जाते हैं। हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज शुभम। गुड मॉर्निंग शुभम। एंड साथ में एक मैसेज आया, गुड मॉर्निंग, हाय मेरा नाम शिखा है, आई एम फ्रॉम मानसरोवर कॉलोनी। हाय शिखा जी, गुड मॉर्निंग। शिखा ने मुझे लिखा है कि यार मैं घर से निकलते समय ना शीशे में खुद को देखकर बोलती हूँ, भाई आज तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग करने वाली हूँ, और ऑफिस पहुंचकर मुझे याद आ जाता है यार आज तो मुझे ये वाला काम भी निपटाना है। मतलब मैं जो सोचती हूँ ना वो तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो मैं नहीं सोच के जाती हूँ मेरे साथ हो जाता है। बट हाँ, एक चीज़ है जो मैं घर से बाहर निकलने से पहले ज़रूर करती हूँ, मैं खुद को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देती हूँ, शीशे में देख के खुद की तारीफ करती हूँ, खुद को कॉम्प्लीमेंट देती हूँ ताकि मेरा दिन अच्छा हो जाए और मेरी प्रोडक्टिविटी भी उससे बढ़ जाती है। क्या बात है शिखा जी, ये बहुत अच्छा काम है। शिखा जी ने कहा है कि यार मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि वो भी अपने आप को जो है कॉम्प्लीमेंट दें, अपनी तारीफ करें। इस मामले में ना इंडियंस थोड़े पीछे होते हैं। आई अग्री विद यू 100%। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी खुद के ऑफिस में एक शीशा लटका लूँ, जब भी गाना बज रहा होगा उस बीच में अपनी तारीफ ही करता रहूँगा बैठे हुए। और इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। हाय गुड मॉर्निंग जी, घर से निकलने से पहले भगवान का नाम लेता हूँ और मोबाइल की बैटरी देखता हूँ, कभी दोनों में से अगर एक भी साथ छूट जाता है तो दिन खराब होता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ सभी लिसनर से आनंद कि आपके लिसनर को बोलना चाहता हूँ, घर से बाहर निकलने से पहले अपने मोबाइल की बैटरी जरूर चार्ज करके निकलो, अगर मोबाइल चार्ज नहीं है तो सब कुछ जो है आपका पीछे छूटने वाला है। ओ माई गॉड, सच अमेजिंग मैसेज यार। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, रोहन बात कर रहा हूँ मैं। हाय रोहन, गुड मॉर्निंग। रोहन लिखते हैं, यार मैं घर से निकलने से पहले जो है ना एक बार अपनी बीवी की तारीफ जरूर करता हूँ, और जो लोग शादीशुदा हैं वो प्लीज अपनी बीवी की तारीफ करके घर से बाहर निकलें, उससे उनका दिन अच्छा रहेगा, बीवी प्रसन्न रहेगी तो दिन अपने आप खुश हो जाएगा। वाह वाह वाह, भाई कहना क्या चाहते हो? अभी जिनकी शादी नहीं हुई है वो मतलब वो क्या करेंगे, उनके बारे में भी तो बताओ। ये गाना थोड़ी देर में पहुंचेगा आपकी रेडियो पर, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए ऐसे ही एफएम मुरादाबाद 89.6। यार कितने अच्छे अच्छे मैसेज करते हो भाई, मतलब बड़ी खुराफाती है मुरादाबादी। एक मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग जी, मैं निकलते वक्त जो है अपने आप को अच्छे से याद दिलाता हूँ कि आज मुझे क्या क्या चीज़ करनी है, और फिर मुझे याद आता है कि मुझे आज घर से बाहर मीठा खाकर निकलना है। और मैं मुरादाबादी इसको भी कहना चाहता हूँ कि जब भी आप घर से बाहर निकलो कुछ मीठा खाकर निकलो, दिन बहुत अच्छा हो जाता है, और यकीन मानिए जब आप पॉजिटिविटी के साथ बाहर निकलते हैं तो और भी अच्छा दिन हो जाता है। क्या बात है जी, रिंकू जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस अमेजिंग मैसेज, और ये बहुत ही अच्छा ओपिनियन आपने शेयर किया है, बहुत ही प्यारा मैसेज किया है, उसके लिए थैंक यू। ये मैसेज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा बट ये लिखते हैं, मैं तो घर से बाहर निकलने से पहले आरजे आनंद को सुनता हूँ, रेडियो सुनता हूँ, रेडियो सुन के सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रेडियो सुन के अच्छे गाने मिल जाते हैं, दिन अपने आप ही फैंटास्टिक हो जाता है, बाकी

0: जो लोग नहीं सुनते उनसे भी कहना चाहूंगा कि भैया प्लीज ट्यून इन टू एफएम मुरादाबाद। अच्छा जी, क्या बात है, इन्होंने मेरी लाइन में लिखा, ओ माय गॉड। साथ में लिखते हैं कि आरजे आनंद को सुनो, दिन अपने आप अच्छा हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अरे बाप रे, सच अमेजिंग यार, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच मेरे भाई। मैंने बोलने के लिए बिल्कुल भी आपको कोई पैसे नहीं दिए थे, बट आपने बोला उसके लिए थैंक यू सो मच। अपने नाम लिख के प्लीज जरूर बताना, नंबर की 4 डिजिट है 8121। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो यार मुझे जरा नाम तो बता दो भाई साहब, कौन हो ये, कौन है कमाल के महान शख्स जिन्होंने ऐसा लिखा है। यार फिलहाल आगे बढ़ता हूँ और अभी कुछ एड ब्रेक आ रहे हैं, उसके बाद एक अच्छा गाना एंड फिर वापस लौट कर आता हूँ इसी स्टेशन पे, एंड कुछ और चीज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है और एक सवाल भी है, कुछ और लेटेस्ट कलक अपडेट है। आपको पता है WhatsApp एक ऐसा फीचर इनरोल कर रहा है जो आपकी एज को बताएगा, मतलब क्या है ये कमाल का फीचर, इसके बारे में जानना है, बताता हूँ।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

क्या बात है यार, मतलब मैं अखियां नहीं छुपा रहा, मैं बिल्कुल अखियां नहीं मिला रहा। आप आगे बढ़ते हैं मेरे साथ, गुड मॉर्निंग। आपको बता दें भैया, क्या व्हाट्सएप चलाने के लिए आपको बतानी होगी अपनी उम्र? ये मतलब क्या नया फीचर आया है, मुझे भी नहीं पता है, बट मैं इसके बारे में आपको जल्दी से इन शॉर्टली बताता हूँ। 9:38 हो गए हैं, आनंद के साथ सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम दिस इज बिंदास मॉर्निंग। सैटरडे की सुबह है जहाँ ढेर सारी बातें हो रही हैं, फाइनली वीकेंड है, अच्छे गाने हैं एंड जो भी टेंशन है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ यार। 10 बजे तक मेरी जो कंपनी है इसको एंजॉय करो अच्छे से, है ना। अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ भैया, व्हाट्सएप जल्दी करेगा उम्र की जांच। भारत में आएगा एक नया एज वेरिफिकेशन फीचर एंड आई डोंट नो ये क्या करने वाले हैं, सीरियसली पता नहीं चल रहा है व्हाट्सएप कुछ भी कर रहा है यार। व्हाट्सएप भारत में चुनिंदा यूजर्स के लिए एक एज वेरिफिकेशन फीचर जो है वो टेस्टिंग कर रहा है एंड ये बदलाव आने वाली DPDP एक्ट के तहत जो है बताया जा रहा है कि डेटा सुरक्षा और नाबालिग यूजर्स की सुरक्षा तय करने के लिए तैयार है एंड क्या कुछ स्पेशल होगा आपको बता दें। भारत में करोड़ों लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और अब इस लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप पर ये जो मैसेजिंग ऐप है इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि ये अभी हो भी सकता है, अभी फ्यूचर में इसका प्लानिंग किया जा रहा है। मीटा ने जो है एक ऑनरशिप वाला व्हाट्सएप भारत में चुनिंदा यूजर्स के लिए जो है एज वेरिफिकेशन फीचर टेस्टिंग जो है वो कर रहा है और ये कदम काफी डिजिटल पर्सनल डेटा एंड काफी कुछ नया और यूनिक करने के लिए बनाया जा रहा है। आपको बता दें इसकी तैयारी जो है खास तौर पर की जा रही है और इसको जो है देखा जा रहा है कि किस तरीके से और अच्छे से वर्क कर सकता है। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि फिलहाल यह केवल लिमिटेड जो है लोगों के लिए होगा और इसमें क्या स्पेशल रहने वाला है ये डेफिनेटली आपको पता लगेगा, बाकी इसमें कोई खास बड़ा बदलाव नहीं होगा। और क्यों शुरू हुई एज वेरिफिकेशन टेस्टिंग की ये शुरुआत आपको बता दें, भारत में डेटा सुरक्षा और बच्चों की ऑनलाइन प्रिवेसी को लेकर नियम लगातार सख्त किए जा रहे हैं और इसी दिशा में व्हाट्सएप ने कुछ यूजर्स से उनकी डेट ऑफ बर्थ यानी उनकी उम्र कन्फर्म करने के लिए कही है। कंपनी ने कहा है कि यह जो प्रक्रिया है भविष्य में लागू होने वाले कानून और नियमों का पालन करने की तैयारी करने का एक हिस्सा है, बेसिकली पार्ट है एंड व्हाट्सएप के मुताबिक सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है कि यूजर्स की पर्सनल जानकारियां सुरक्षित रहें। कंपनी यह भी स्पष्ट कर रही है कि उम्र से संबंधित जानकारियां अन्य व्हाट्सएप यूजर्स के साथ कभी भी वो शेयर नहीं करेंगे, ये आपकी पर्सनल प्राइवेसी होगी। क्या सभी यूजर्स को डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तो फिलहाल ये नहीं क्लियर हुआ है लेकिन फीचर केवल कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रक्रिया ऑप्शनल है एंड अगर किसी भी यूजर्स को ये प्रमोटिंग दिखाई देता है या किसी भी यूजर्स को लगता है कि भैया कुछ गड़बड़ है तो वो तुरंत जो है अपनी उम्र बताने से यहाँ पर मतलब जो है डिनाई भी कर सकते हैं, वो नहीं भी बता सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, बिल्कुल इनकार कर सकते हैं, ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है व्हाट्सएप कर रहा है एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग इनिशिएटिव और मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें सही भी हैं क्योंकि पता नहीं चलता है भैया कौन क्या कर रहा है, कौन कौन से उम्र का बच्चा। आजकल तो छोटे छोटे लोग व्हाट्सएप स्मार्टफोन सारे ऐप ये वो सारी ऐपों में घुस चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे जो अपने बचपन को खेलते थे आज वो सिर्फ व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और पता नहीं कहाँ कहाँ घुस गए जा करके। एंड आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आपको बता दें अभी 9:41 हो रहे हैं और यहाँ पर कुछ मुरादाबाद से जुड़ी बातें भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है मुझे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। एंड अगर आप भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे दे सकते हैं 9837896896। बच्चन साहब अपने टाइम को लेकर कुछ ज़्यादा ही पंचुअल हैं तो हर कोई जानता है लेकिन उन्होंने जो भी रिसेंटली किया है, जो उनका डेडिकेशन है, जो उनका पैशन है, उसके बाद जो है काफ़ी लोग इंस्पायर हो रहे हैं। मतलब 83 की एज में भी वो इस तरीके का काम कर रहे हैं कि यार मतलब 24 घंटे उन्होंने काम किया कल, जैसे मैंने बताया भी था आपको। एंड इसी चीज को लेकर जो है काफी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं बच्चन साहब, भैया 24 आवर वर्क किया उन्होंने और वो इसीलिए वर्क किया क्योंकि भैया उन्हें अपने काम से बहुत प्यार था, माना कि टाइम के पंचुअल है लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, तबीयत अगर आपकी खराब हो गई, कोई दिक्कत होगी तो फिर कैसे होगा। मतलब बहुत सारे फैंस ने उनकी हेल्थ को लेकर चिंता भी जताई है लेकिन उन्होंने बच्चन साहब ने साफ कहा है मेरा पैशन है और मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काम बहुत प्यारा है। एंड एक्चुअली मुझे भी लगता है जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं ना फिर वो कर जाते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में जो है उनका डेडिकेशन होता है वो डेफिनेटली काम आ ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप भी अपने काम को जो है जहां भी आप जा रहे हैं अच्छे से जाइए। और नेक्स्ट खबर होने वाली है अनिल कपूर फैंस के लिए बहुत ही अच्छी, मैं भी लौट कर आता हूं तो बताऊंगा। एंड इसके अलावा कौन कौन से और नेशनल इंटरनेशनल डेज होते हैं आज के दिन इस पे भी हम बात करेंगे। 9:43 हो रहे हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस ढेर सारे मिल रहे हैं मुझे, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आपने किए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। मैं जस्ट अभी लौट कर आता हूँ, एक अच्छे से गाने के बाद फटाफट एंट्री देता हूँ अपनी यहाँ पर और फिर आपके साथ और ढेर सारी बात करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी कुछ अपडेट देना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है आपका। आने वाला गाना जरा सी देर में इसको आप सुनेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए ऐसे ही आरजे आनंद। यह है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: हाँ मेरी कसम.
1: मिस कर दिया. तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय.
4: बिंदास मॉर्निंग.
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.

0: जिद करो।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
3: अरे आनंद इज बैक।
4: आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, 9:49 हो गए स्टेशन की घड़ी में और अभी यहाँ पर हम आपसे डेफिनेटली एक सवाल पूछने वाले हैं। अगर आपने इसका जवाब दिया तो आज की सुबह आप हमारे शो के सुपरस्टार बन सकते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं सुपरस्टार तो आपको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना है यार, बस आपको मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना है एंड ये बहुत ही सिंपल म्यूजिक मैं आपको यहाँ पर सुनाने वाला हूँ। बेसिकली हम एक गेम खेलते हैं, एक चुटकी सॉन्ग, अगर आप उसका जवाब देंगे तो आप बनेंगे मेरे आज की शो के सुपरस्टार। ये बिल्कुल मेरा सवाल नहीं है, नहीं नहीं, इट्स नॉट माय कड़ा क्वेश्चन। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं उसके लिए दिल से थैंक यू यार। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे नाराज हो रहे हैं कि आनंद जी हमने कब मैसेज किया था, आपने अभी तक हमारा मैसेज नहीं शामिल किया है। तो आप बिल्कुल नाराज मत होइए, आपके मैसेज डेफिनेटली मैं पढ़कर ही जाऊंगा। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले आपके मैसेज को पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे साथ कौन जुड़े हैं? हमारे साथ प्रीतम जुड़ चुके हैं, आज की सुबह गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं। एंड आनंद भाई गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह ड्यूटी पर निकलने से पहले माँ की दुआएं और माँ का आशीर्वाद निकले तो दिन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा और आपका काम भी अच्छा होगा। ये मौसम अंसारी बनारस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज की सुबह, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और ये मैसेज आया है बबली अनजान, गीता कश्यप, लक्ष्मी भाभी, संतोष भाभी गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं। गुड मॉर्निंग पहुँच रहा है मेरे पास मुरादाबाद से, जिला मुरादाबाद बस्तूर से आकांक्षा सैनी गुड मॉर्निंग कर रही है मुझे। साथ ही साथ गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं दुर्गेश सैनी जी, कल्याणपुर मुरादाबाद से लिखते हैं, सुबह उठते ही पूजा करते हैं उसके बाद रेडियो शुरू कर देते हैं, दिन बहुत ही अच्छा हो जाता है। महराज हमारे साथ जुड़े हैं, महराजुद्दीन फ्रॉम कश्मीर गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। एंड हमारे साथ जिला मुरादाबाद बस्तूर से अतर सिंह सैनी साहब जुड़ चुके हैं आज की सुबह, वेलकम है सर। मयंक शर्मा पीतल बस्ती से जय श्री राम पहुंचाते हैं, आपको भी जय श्री राम। और रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं विकी सागर जी। चलिए आई होप गाइस बहुत सारे मैसेज हैं, अभी मैं पढ़ूंगा ना, डोंट वरी। अभी पहले यार आपका सवाल वाला जो सिनारियो है इसको तो पूरा कर लेते हैं। आज का कड़क क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कौन सा गाना है। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग सॉन्ग।

व्हाट्सएप करके बताइएगा भी इतना पैसा में इतना मिलेगा। आज की सुबह एक चुटकी सॉन्ग में आपको बस आइडेंटिफाई करना है कौन सा गाना है। अरे बाबूजी मैसेज करो यार 9837896896 पे। बड़ा सिंपल सवाल है यार। उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब सेंड करिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9837896896 पर। What's going on? Are you ready?

क्या बात है यार, ये आलू चाट नाम सुन के ना मुझे ब्रेकफास्ट वाली फील आ गई। मतलब सुबह सुबह ऐसा लग रहा है कि कुछ खाने पीने को अब होना चाहिए यार। मतलब इतना बढ़िया यार ये गाना था, इसको सुन के मजा आ गया। अभी आगे बढ़ते हुए आपको फटाफट एक अपडेट देता हूँ। 11 अगस्त तक लागू रहेगा डायवर्जन। हाँ जी, आपको पता है ना, कल फ्राइडे से ही जो है, इनफैक्ट थर्सडे से ही दोपहर के 2 बजे से डायवर्जन जो है शुरू हो गया है। आपको बता दें, मुरादाबाद से बरेली और लखनऊ जाने वाले वाहन, गागन तिराहा से मेरठ और सिरसी संभल, इन रोड से जो है वो होकर बताया जा रहा है निकलेंगे शायद। एंड इन्होंने ये भी बताया कि भैया अभी जो ये डायवर्जन है वो 11 अगस्त तक जो है लगातार लागू रहेगा, तो ऐसे में दिल्ली और कानपुर पर भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरीके से बंद है। अभी फिलहाल मंडे तक जो है बंद रहने वाली है। हाँ जी, कांवड़ यात्रियों को जो है मद्देनजर रखते हुए गुरुवार दोपहर 2 बजे से दिल्ली हाईवे पर भारी वाहनों का संचालन पूरी तरीके से, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये मैंने आपको बताया भी था, और ये व्यवस्था 11 अगस्त की शाम 7 बजे तक जो है प्रभावी रहेगी। एंड आपको बता दें, यातायात जो हमारे SP ट्रैफिक सर हैं सुभाष गंगवार जी, उन्होंने बताया कि दिल्ली हाईवे पर ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली, रोडवेज बस एंड निजी बस या फिर जो भारी वाहन है उनको पूरी तरीके से उन पर रोक है। एंड वो 11 अगस्त मंडे की शाम 7 बजे से पहले नहीं निकलेंगे, और ये जो है पूरी तरीके से रूट डायवर्जन रहेंगे, इन पे डायवर्जन कर दिया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें, दिल्ली और मेरठ जाने वाले भारी वाहनों को भी वहां पर बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। तो भैया, अगर आप दिल्ली या फिर मेरठ की तरफ जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको पता है ना, दिल्ली रोड और कांच रोड तो देखिए बिल्कुल आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और ये जो है अभी फिलहाल शुरू हो गया है गुरुवार से डायवर्जन, और ये रहेगा 11 अगस्त को शाम 7 बजे तक। तो ये अपडेट मैंने आप तक पहुंचा ही दी है फिलहाल। और आपको बता दें, मुरादाबाद से रामपुर जाने वाली जो बसें हैं वो आजाद नगर से कुंदरकी, बिलारी और शाहबाद होते हुए रामपुर जाएंगी, इसी मार्ग से वापस लौटेंगी। तो भैया देखिए, जो भी नियम है उनको प्लीज फॉलो कीजिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। थोड़े दिन की बात है यार, उसके बाद तो सब कुछ सेट हो जाएगा, है ना। अभी फिलहाल जब तक ये सावन चल रहा है, कांवड़ती भाइयों का भी तो ख्याल रखना है, जो श्रद्धालु हैं जो बड़ी दूर दूर से कांवड़ लेकर आ रहे हैं। और कल तो मैंने एक बड़ी खूबसूरत कांवड़ देखी, जिसमें एक अंकल थे वो अपने माता पिता को बिठा कर लेकर आए, बिल्कुल श्रवण कुमार का रूप देखने को मिला। साथ में उनके साथ में और भी थे बहुत सारे लोग, उनके साथी लोग, मैंने वो अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया। बहुत ही अच्छा लगा देखकर कि देखिए आज भी इतनी श्रद्धा, शक्ति और भक्ति का प्रतीक जिसे कहा जा सकता है कि अपने माँ बाप के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति इतनी अच्छी भक्ति देखकर मन प्रसन्न हो गया। अगर आपको लग रहा है कि भैया साइबर ठगी का कोई शिकार हो रहा है, या फिर किसी को इस चीज़ की जो है लग रहा है कि आपको ऐसी वाई वारी की कोई आपके साथ साइबर ठगी या फिर कोई इस तरह की घटना घटित करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत जो है कहां पर साझा कर सकते हैं, मैं आपको एक मोबाइल नंबर दे रहा हूं, आप यहां पर जो है शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। कोई भी ठगी से जुड़ा मामला है, या आपको लगता है किसी आसपास में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ हुआ है या हो सकता है, तो उसकी सूचना आप इस नंबर पर दे सकते हैं, 9454-0174-2। नंबर एक और बता देता हूँ, 7839-87-6646। इस नंबर पे जो है आप कॉल करके साइबर ठगी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं श्रोताओं। अगर आपको लाइट की कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि भैया बार बार आप बिजली से बड़े परेशान हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपनी शिकायत जो है यहाँ पर कंट्रोल रूम के इस नंबर पे कॉल करके भी आप जो है बता सकते हैं। नंबर रहेगा 9193300109। इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी जो भी समस्या है वो डेफिनेटली आप इनको बता सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 9193300109 पर। आगे बढ़ते हैं और बताने वाले हैं अभी आपको कि आज का जो मेरा सवाल है उसका कड़क वाला विनर कौन बनेगा, ये तो मुझे भी नहीं पता है। अभी आप में से कोई एक होगा जो मेरे शो का लकी विनर बनेगा। आज की सुबह मैंने आपसे पूछा ये गाना कौन सा है।

व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे फटाफट से 9837896896 पे इंतजार रहेगा मुझे आपके मैसेजेस का। फटाफट वॉइस नोट भी आप पहुंचा सकते हैं एंड आप अपने मैसेज करके भी जो है मुझ तक अपनी प्यारी प्यारी राइट वाले मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। देखिए इंतजार है मुझे आपके राइट मैसेजेस का, सो आप कोई एक्सक्यूजेस मत दो, फटाफट मुझे मैसेज करो 9837896896 पे। सही जवाब दोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा यार, तो फटाफट बिना किसी देरी के मैसेज कर दो आप मुझे। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आप उसका जवाब मुझे इमीडिएटली बता दो। और अभी फिलहाल मैं एक अच्छा सा गाना आपके लिए बजा रहा हूँ, इस गाने को सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये आने वाला नंबर बहुत ही प्यारा ट्रैक। 10 बजने को है स्टेशन की घड़ी में, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे आनंद को, और प्रोग्राम है आपका बिंदास मॉर्निंग। कहीं मत जाइए, इस गाने को ड्रॉप करते हुए आगे बढ़ता हूँ।

0: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: शिल्पा राव और अरिजीत सिंह की आवाज सैटरडे की सुबह, व्हाट अमेजिंग सॉन्ग यार।
1: तेरे हवाले,
0: लाल सिंह चड्ढा का ही गाना। इस मूवी के प्रमोशन के लिए आमिर खान एक रेडियो पे आए थे। जब मेरी उनसे बात हुई थी, मुझे यकीन नहीं था कि मैं आमिर खान से बात कर रहा हूँ, और जब मैंने बात करी तो मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब इतने हम्बल इंसान है आमिर साहब, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बात की, उनसे बड़ा मजा आया। बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है यार आमिर खान साहब। सैटरडे की सुबह आनंद के साथ जुड़ चुके हैं आप ओनली ऑन एफ एम मुरादाबाद।
2: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
0: बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा था एक चुटकी सॉन्ग में एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, कौन सा गाना है ये आपने आइडेंटिफाई करना था। यही बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह हमारी कॉलर, और आइए जरा उनसे बात करते हैं कौन कहां से जुड़ रही हैं और क्या है उनका नाम, क्या उनको पता है राइट आंसर। हाय, गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग,
0: अपने बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। बड़ी प्यारी सी आवाज है आपकी, क्या नाम है आपका, योर गुड नेम, टेल मी कहां हैं आप।
3: थैंक यू सो मच, मेरा नाम उजाला ठाकुर है।
0: ओके उजाला,
3: मैं मुरादाबाद में रहती हूं और मैं बुद्धि बिहार में अपनी जॉब करती हूं एक आईटी कंपनी में।
0: ओ वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस उजाला जी, लवली टॉकिंग टू यू। सबसे पहले तो बड़ा मजा आया मुझे जानकर कि आप अभी जॉब भी करती हैं। मुझे तो आपकी वॉइस सुन के लग रहा था कि आप आई थिंक स्टूडेंट होंगे, अभी पढ़ाई शढ़ाई कर रहे होंगे।
3: नहीं, मैंने अभी अपना पीजी कंप्लीट किया।
0: ओह वाओ,
3: अपनी जॉब भी कंटिन्यू किया।
0: दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। तो रेडियो अभी मतलब गाड़ी में सुन रहे थे आप?
3: हाँ जी, मैं अच्छा। अपने पापा जी के साथ ऑफिस आई थी तो मैं गाड़ी में रेडियो सुन रही।
0: वेरी नाइस, पापा जी का नाम तो बता दो जरा। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप अभी आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, कितने बजे आप निकल जाते हैं सुबह?
3: 9:30।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपको रेडियो सुनने में मजा आता है उजाला?
3: बहुत मजा।
0: क्या चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगती है रेडियो पे, इंटरेस्टिंग लगती है?
3: मुझे जो सॉन्ग्स का कलेक्शन है और जो आप बातें करते हैं, मुझे सब अच्छा लगता है।
0: वेरी नाइस, मतलब एक यू नो टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाता है,
3: right?
0: हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी जो म्यूजिक चल रहा है ये आपके दिमाग की नॉलेज थोड़ी चेक करते हैं, ये कौन सा गाना है? जो म्यूजिक अभी आप सुन रहे थे वो कौन से गाने का था?
3: मेरे रश के कम
0: है। अरे वाह, वेरी नाइस। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका ओल्ड वर्जन भी था ना शायद एक, आई थिंक जितना मुझे याद है।
3: हाँ जी, उसका ओल्ड वर्जन भी मैंने सुना है जो आई डोंट नो नेम।
0: कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, लेकिन अभी जो करंटली गाया है ये पता है किसने गाया है?
3: रामत फतेह अली खान।
0: क्या बात है, जोरदार तालियां, वेरी नाइस। प्लीज ये बताकर तो आपने मेरी जीत रख ली यार, थैंक यू सो मच। एंड मेरा 1-2 किलो खून बढ़ गया ये बात सुनकर कि एटलीस्ट इस सिंगर का नाम तुम्हें पता है, ये तो मानना पड़ेगा। उजाला थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, कांग्रेचुलेशन। ये बिल्कुल वही वाला गाना है, इसमें कौन से हीरो थे आपको पता है?
3: अजय देवगन सर।
0: वो मुझे लगता है कि आपने मूवी भी देखी है, बड़ी ध्यान से आप सारी चीजें बता पा रहे हो, वेरी गुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कुछ कहना चाहते हो आज की सुबह तमाम लोग आपको रेडियो पे सुन रहे हैं?
3: मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: लवली टॉकिंग टू यू, कुछ कहना चाहोगे तमाम लोग रेडियो पे सुन रहे हैं आपको? कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो? ऑलराइट, वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, ऑल द वे बेस्ट। आप अपने ऑफिस पहुंच गए हो, हम ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, एंड अच्छे से एंजॉय करो अपने वर्क को, और ऐसे ही जब भी टाइम मिले रेडियो सुनते रहो। ओके ओके, बाय बाय,
3: बाय
0: बाय। उजाला ठाकुर जुड़ी थी मेरे साथ, आईटी कंपनी में जॉब करती हैं, और इन्होंने एकदम राइट आंसर दिया, कांग्रेचुलेशन उजाला, ढेर सारी तालियां इनके लिए, और बिल्कुल सही जवाब है। 10:13 हो गए, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। आपका नाम अभी पढ़ता हूँ यार।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
0: मॉर्निंग। चलिए भाई, अब मेरा जाने का समय हो गया है, 10:14 हो गए हैं, अगली प्रेजेंटर भी आ गई हैं, सोते साते जागते उठते जैसे भी वो पहुंची हैं, भागते दौड़ते आई गई हैं, और अब आपके मैसेज पढ़ के मैं भी यहाँ से भागते भागते निकलता हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? ललिता कश्यप जी नवीन नगर से सही जवाब पहुँचाती हैं। इसके अलावा हेलो जी गुड मॉर्निंग, ये दुर्गेश जी मुझे सही जवाब पहुँचाते हैं। इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुँचा था सना तुर्क एंड नाजिया जी का, इन्होंने एकदम राइट आंसर दिया था। गौरव हिले नवीन नगर से जुड़े हैं, लिखते हैं गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग शो, इनको अच्छा लग रहा है एंड इनको इन्फॉर्मेशन भी पसंद आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, देर से ही सही लेकिन आप जाग तो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? नमस्ते जी, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजा हुसैन साहब सही जवाब के साथ। आकांक्षा सैनी मुझे राइट आंसर पहुंचाती हैं आज की सुबह, जिला ये मुरादाबाद मस्तूर से मेरे साथ जुड़ रही हैं। एंड अलका वर्मा बुद्धि बिहार से जुड़ चुके हैं आज की सुबह सही जवाब के साथ। मुंबई महाराष्ट्र से बबलू जी सही जवाब पहुंचाते हैं। मोहसिन अंसारी बनारस से सही जवाब दे रहे हैं। रिजवान खान साहब ग्राम बीजना से सही जवाब पहुंचाते हैं। दर्पण जी मेरे साथ जुड़े हैं राइट आंसर के साथ। राजेश मीना बेंगलुरु से सही जवाब पहुंचाते हैं। रिहाना मेरे साथ जुड़ी है आज की सुबह राइट आंसर के साथ। ईदगाह से शफी अहमद अंसारी, रईस दूला अंसारी लिखते हैं गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, एंड इनको हमारा शो अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। कश्मीर से महराजुद्दीन साहब गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। एंड साथ ही साथ ही राजा कश्यप गली चौराहा मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं। एंड इसके अलावा यूपी मुरादाबाद से रणवीर सिंह जेठालाल मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, ये सैटरडे की गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं जी, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। पंजाब पुलिस, चलिए गाइस फिलहाल अब हम यहाँ से लेते हैं आपसे इजाजत। अब अगर आपको और अच्छी अच्छी चीजें चेक करनी है तो आप इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, हमारा ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से, और मेरा आईडी अगर आप ढूंढना चाहो तो रेडियो वाला आनंद के नाम से आपको मिलता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो, वहां पर भी आपके लिए बहुत सारी मस्ती फन एंड मिनी मोर कॉन्टेंट अवेलेबल है, तो आइए चेक आउट कीजिए और सारी लेटेस्ट और कड़क अपडेट के लिए फॉलो करते रहिए। अभी के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड वंडरफुल वीकेंड, बाय।

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी। एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 10:00 यानी कि 26 मिनट हो चुके हैं और आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। सुप्रभात, राधे राधे। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत चंगे होंगे, क्योंकि आज का डे यानी कि सैटरडे, और सैटरडे का डे बहुत ही खास होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस दिन ये कहा जाता है हनुमान जी और शनि देव की पूजा की जाती है, साथ ही साथ शनि के साथ साथ अगर भगवान हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं तो आपके ऊपर जितने भी सारी शांति चलती है वो ख़त्म हो जाती है। सो आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। और आज की तारीख यानी कि 8 अगस्त, यानी कि भैया सुबह सुबह का वेदर है जो बड़ा ही सुहाना होता है और धूप खिलखिलाती हुई निकल गई है। आज तो भाई कुछ नहीं कह सकते, यानी कि धूप भी और साथ ही साथ हवाएं चल रही हैं, और हवाओं के साथ जब धूप हो ना तो अलग ही मज़ा आता है, मज़ा ही आ जाता है एकदम शो। यानी कि मसाला शो में मसाला सब्जी यानी कि मसालों का नहीं लगता है, सब्जी में कोई तड़का नहीं लगता है, यहाँ बातों का तड़का लगता है और बातों के साथ साथ आप सभी के मैसेज का तड़का लगता है, जो आप सभी इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं। ओहो क्या ही बताएं जी, ऊपर से जो आपके गाने होते हैं बड़े ही लाजवाब, बेधड़क बिंदास गाने होते हैं। कभी कभी ये गाने ऐसे होते हैं जो मैं सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पर

0: FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 10:33 हो चुके हैं और अर्जेंटीना आप सभी के साथ कनेक्ट हैं। मॉर्निंग मसाला शो में है, क्या बात जी, गज वाली मॉर्निंग है जी। आप सभी को सत श्री अकाल, राम राम। और आप सभी, मुझे पता है कि ऑफिस के लिए निकल पहुंच गए हैं, यानी कि देखिए क्योंकि 10:33 हो चुके हैं, ऑफिस पहुंच गए हैं और साथ ही साथ घर पर बहुत का ब्रेकफास्ट हो गया होगा। बहुत अभी सोच रहे कि करे या ना करे, क्योंकि सैटरडे संडे ऐसा होता है कि कभी ना मतलब ऐसा हो जाता है कि सीधा ब्रंच ही कर लेते हैं, लंच या ब्रेकफास्ट रहने देते हैं, सीधा ब्रंच कर लेते हैं, इसी में काम चल जाता है, क्योंकि बहुतों के छुट्टियां रहती है और बहुत ऑफिस में जाते हैं, जैसे कि मैं और मेरे जैसे आप भी हैं जो ऑफिस जाते हैं इस टाइम। देखिए घर रहो ना, मतलब संडे वाले दिन ऐसा लगता है कितना बड़ा दिन हो गया, मतलब पूरा दिन कैसे निकलता है समझ नहीं आता है, लेकिन जब ऑफिस में आओ काम करो पता ही नहीं चलता समय कब खत्म हो जाता है, एकदम भी नहीं पता चलता है। चलिए फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हुए श्रोता हो, किनका मैसेज आते हैं हमारे पास। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग रीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से और ये गाना सुनना चाहते हैं, धुम मचाले धुम। अच्छा, आपने वो पिंक वाला फोन देखा होगा, है ना, वो छोटी सी जो बचपन में हम उसे ही लेके खेलते थे, अभी भी बच्चों को, जो बच्चे जिद करते छोटे वाले उनको ही दे देते थे और उसमें यही धुन चलता रहता था, धुम मचाले धुम। भाई सच में आपने बताना है मैसेज करके, वो पिंक वाला छोटी वाली फोन किसने किसने ट्राई किया है, किसने इंजॉय किया है, किसने उसके साथ खेला है, और अभी भी मतलब जब भी उसको मार्केट में जाओ आप देखते हो ना तो बचपन के दिन याद आ जाती है कि कैसे घर वाले बोलते थे ये आपके लिए फोन है, आप इसे इंजॉय करो, गाने सुनो, धुम मचाले, बस धुम मचाले ही चलता था उसमें और कुछ नहीं चलता था। तो हम बता सकते हैं मैसेज करके कि आपने अगर यूज किया है तो बिल्कुल डेफिनेटली मैसेज करिए। और अभी भी बच्चे मांगते हैं तो उनको ये बोलते थे ये फोन आपके लिए बहुत परफेक्ट है, बेस्ट है, और ये गाना यानी कि डेडिकेट करना चाहते हैं बबलू सैनी को। ठीक है जी, सत्य प्रकाश सैनी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईदगाह मुरादाबाद से सैफी अहमद अंसारी जी कनेक्ट होते हैं और इनके दोस्त रहीश दूला। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, बहुत बढ़िया है जी, आप बताइए कैसे है, हैव अ लवली डे, थैंक यू जी, आपका भी दिन हो आज बहुत ही शुभ रहे। साथ ही साथ रीना मैम, मॉर्निंग मसाला शो अच्छा पेश कर रही हूँ आप, थैंक यू जी। और ये नंबर वन बीबी नंबर वन से गाना सुनना चाहते हैं, आजाना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना बोलो तुझे मेरी कसम, लेकिन किसी को छू मत दीजिएगा, सच बता रही हूँ। अगले मैसेज की बात करो श्रोताओं तो रीना जी, राम राम, गौरव टेलर नवीन नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। रीना जी वेरी गुड मॉर्निंग जी, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेस कर रही हो आप और जानकारियां भी बहुत ही अमेजिंग लेकर आती हो और कार्यक्रम भी बहुत अच्छे अंदाज में आप पेश करती हो। आप जो बोलती हो ये यानी कि बहुत निराला लगता है, ओ माय गॉड। और ये गाना सुनना चाहते हैं, सर की जो सर की धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। और ये कुछ लाइनें भी लिखते हैं, पैसा भी कमाल की चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी इज्जत नहीं है, जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं है। अरे क्या बात बताई सर, बहुत बहुत ही प्यारा आपने लाइन लिखा है, जिसके पास पैसे नहीं है उसे उसकी कदर पूछिए और जिसके पास पैसे हैं वो किसी की कदर नहीं करता भैया। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं दुर्गेश सैनी की रिक्वेस्ट पर, धुम मचाते हैं जी, और सुनते रहिए, रेडियो का वॉल्यूम बिल्कुल इधर उधर नहीं करना आपने, अर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहना है। अगर आप गाड़ी में हैं तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, तभी मजा आएगा इस गाने का।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1444 7

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: क्या बात है जी, आवाज आपने सुन ली होगी, म्याऊ म्याऊ, मतलब इनके म्याऊ में भी इमोशन छुपे हुए होते हैं श्रोताओं। आई दिस साइड आर्जरीनो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करो श्रोताओं तो 10:47 हो चुके हैं और आज की तारीख 8 अगस्त। म्याऊ म्याऊ की आवाज, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी बिल्ली है जो खुद को घर का मालकिन और आपको स्टाफ समझती है तो आज का दिन उन्हीं के लिए है, बिल्ली मासी के लिए है आज का दिन। जी हाँ बिल्कुल, बिल्ली मासी के लिए है ये दिन, आप समझिए।
3: तेरे ना जवानी तेरी लड़ दिया, दिनों दिन तेरे नी डिजायर वदी जा।
2: क्योंकि आज है इंटरनेशनल कैट डे, मनाया जाता है हर साल यानी कि 8 अगस्त को। ये दिन बिल्लियों को घर में देखभाल और उसकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में इंटरनेशनल फाउंडर ऑफ एनिमल वेलफेयर ने की थी। बिल्लियां भले ही कम बोलती हो लेकिन उनकी एक म्याऊं में पूरा इमोशन छुपा होता है, कभी प्यार, कभी भूख और कभी साफ सफाई का आदेश। मैडम खाना लगेगा क्या? अगर नहीं लगेगा ना तो किचन में जो दूध रखा है उसको हम पी जाने का पता भी नहीं लगेगा कि कौन पिया है। चार पैरों से आएंगे और कब दूध सट कर जाएंगे आपको भी नहीं पता लगेगा। और ऊपर से मम्मी फिर हमें ताने देती है कि तुम कहाँ रहती हो भैया, एक घर का ध्यान नहीं रख सकती हो, बिल्ली मासी को पूरा दूध पिला दिया तुमने। बिल्ली मासी इतनी तेज होती है। तो आज अगर आपके पास कोई बिल्ली है उसे थोड़ा प्यार दीजिए, पानी और खाना दीजिए। अगर कोई बेसहारा बिल्ली आपको दिखे तो उसकी मदद करने की कोशिश करिए, क्योंकि जानवरों से प्यार करना सिर्फ इंसानियत नहीं इंसान होने की खूबसूरती भी दर्ज कराती है। तो आज है हैप्पी इंटरनेशनल कैट डे यानी कि बिल्ली मासी डे। ये मासी इतनी तेज होती है भैया कि खुद का दूध अगर रखा हो आपका स्लैब पर तो कब चट कर जाती है आपको भी नहीं पता चलेगा। चलिए फिलहाल हम बढ़ेंगे मैसेज की तरफ, किनका हमारे पास मैसेज आया है। हेलो रीना जी, हेलो जी, सबरीन मलिक जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है करण अर्जुन मूवी से मुझे गाना सुनवा दीजिएगा। राणा जी मुझको माफ करना। राणा जी कतई माफ नहीं करेंगे जी, क्योंकि नया वर्जन जो आ गया है, मतलब उनका कहना है कि हमारा पुराना ही वर्जन सही था, ये नया वर्जन क्यों आया। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करेंगे तो हेलो गुड मॉर्निंग रीना जी, जिला यानी कि कनेक्ट होते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान, उमेश खान, दीपक जी। रीना जी हमें एक गाना सुना दीजिएगा। बिल्कुल सुनाएंगे जी। का जानू मैं सजनिया, ओए होए, अमित कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली हम आपको एक गाना कतई सुनवाएंगे जी। और एक मैसेज भी आया हमारे पास आजाद नगर मुरादा हरिद्वार से कनेक्ट होते हैं, हरी के द्वार उत्तराखंड से। और इनका कहना है कि आदरणीय प्रसारण महोदय जी आपको हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, हमें किसी भी सदाबहार गाने में शामिल कर लीजिएगा। ठीक है जी, हम आपको शामिल कर लेंगे। थोड़ी बिल्लो जेड़ी तेरे ते करे गुरु जीत गेल राइम गाने गुरु दे उत्ते नाच नाच दे। और नाम है ताज मोहम्मद अंसारी। ओके

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग मसाला शो में दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 11:01 हो चुके श्रोताओं, और आप सभी को गुड वाली मॉर्निंग है। और साथ ही साथ अब रामायण मूवी का जो डेट है वो चेंज हो गया है, जबकि ये कहा जा रहा था कि जो रामायण मूवी है वो 6 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब उसका डेट शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि चेंज कर दिया गया है। छोटी दिवाली यानी कि 8 नवंबर को रिलीज होने वाली है रामायण मूवी, यानी कि उसका डेट चेंज कर दिया गया है। नोट कर लीजिएगा, 8 नवंबर को ही आपने जाना है मूवी देखने रामायण। ओके जी, फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, आप सभी की जो प्यारी प्यारी खूबसूरत मैसेज। रानी नांगल से रिहाना कनेक्ट होती है, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है। वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं। और ये गाना सुनना चाहती है, ओहो तुम ओहो तुम। अगले मैसेज की बात करूं तो मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं। खुशी मैडम गुड मॉर्निंग। अरे भैया, मुझे तो लग रहा है कि आप रेडियो नहीं सुन रहे हैं, बस मैसेज कर रहे हैं। आज खुशी मैडम जी नहीं है, खुशी मैडम जी सैटरडे को छुट्टी पर होती हैं, और रीना मैडम जी आज जाती हैं यहाँ पर आसमान से टपक कर। ये गाना सुनना चाहते हैं, सावन का महीना आया। ओके चलिए, फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो कश्मीर से मिराज उद्दीन जी कनेक्ट हो गए हैं, और ये गाना सुनना चाहते हैं,
4: वो यादा कली कली बत्ती आड़म
2: है। मिल गए आज मेरे सनम। ठीक है जी, ये गाना हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे। चलिए फिलहाल अगला गाना भी सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है। मैसेज करते रहिए, नंबर है 9823789689।
5: का जानू मैं सजनिया, का जानू, का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया,

ख्वाबात जिंदगी ख्वाब और जो दिल कहे वही काम करे, बहुत प्यारा गाना है। मुकेश जी की आवाज में सदाबहार गाने तो वैसे ही बड़े लाजवाब होते हैं, आप इनको कभी भी सुने तभी भी आपका दिल नहीं भरता है। और आज जो है 8 अगस्त और यानी कि 17 जिलों में आज आंधी तूफान बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ मुरादाबाद की बात करें तो भैया बूंदाबांदी रहेगी, अगर आ गई तो ठीक है, अदरवाइज मौसम का आनंद लीजिए और इंजॉय करिए। और टेम्परेचर की बात करूँ तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है मुरादाबाद का इस टाइम। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने शो में। आज जरीना आप सभी के साथ कनेक्ट है, समय की बात करूँ तो 11:09 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग रीना मैम, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपकी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं और आपका शो बहुत बिंदास, आप शो बहुत बिंदास पेश कर रही हैं, थैंक यू सो मच जी। और ये गाना सुनना चाहते हैं, दिल्ली मुंबई चाहे जाओ आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा, अरे नहीं मिलेगा ऐसा रेडियो जो आपके लिए भैया सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए एंटरटेनमेंट और अपडेट्स जो लेकर आते रहते हैं। तो अपने शहर का नंबर वन रेडियो है, सामुदायिक रेडियो है भैया, इसको प्यार दीजिए क्योंकि आपके प्यार के बिना ये रेडियो भी फीकी फीकी है। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सोनू कुमार जी सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। अगला मैसेज है हमारे पास यानी कि हर हर महादेव। रीना जी क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से और आज ये गाना सुनना चाहते हैं, चिटे सूट दे दाग पे गए आए हाय। अगले मैसेज की बात करूँ तो जिला मुरादाबाद बस्तूर से आकांक्षा सैनी कनेक्ट हो गई है और ये गाना सुनना चाहती है, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है, वेरी गुड मॉर्निंग। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरे सपने में।

0: क्या बात है श्रोता, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। सावन का महीना आया, सच में सावन के महीने में मतलब हर नेचर प्राकृतिक ऐसे खिलखिला जाती है ना, ऊपर से बारिश की बूंदे जब उनके ऊपर पत्तियों के ऊपर पड़ती है तो एक अलग ही खुशबू सोंधी सोंधी से पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे देश में फैल जाती है। और यही होता है यानी कि सावन का पावन महीना बड़ा ही सुनहरा होता है। आरजेरी ने आप सभी के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, समय की बात करूं तो 11:20 हो चुके हैं और आइए बिना देरी के अपने अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। मयंक शर्मा जी कनेक्ट होते हैं पीतल बस्ती से, राम राम जी रीना जी, राम राम जी, और गाना सुनना चाहते हैं आई एम इन लव, गाना सुनना चाहते हैं वंस ऑफ अ टाइगर इन मुंबई मूवी से। एक हमारे पास आती है वॉइस मैसेज, तो चलिए इनकी मधुर आवाज सुनते हैं कि इनकी मधुर आवाज में क्या भेज रहे हैं। जरा इनकी भी आवाज सुनना बहुत जरूरी है ना श्रोताओं, तो चलिए देखते हैं ये क्या भेज रहे हैं अपनी मधुर आवाज में।
1: भोलेनाथ की हर। हेलो रीना मैम जी, नमस्ते, जय भोलेनाथ की, हर महादेव। मेरा नाम उमेश कुमार प्रजापति है, मैं लोधीपुर जवान नगर मुरादाबाद से हूँ। मैम जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी एक गाना सुनवा देना मैम जी, बोल तेरे मीठे मीठे सपना चौधरी का। थैंक यू मैम।
0: बिल्कुल, हम आपको एक गाना जरूर सुनवाएंगे, बोल तेरे मीठे मीठे सपना चौधरी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना सुनवाएंगे आपको। बस आप बिंदास रहिए और यूं ही कनेक्ट रहिए।

गुड मॉर्निंग रीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं रवि सैनी लाइन पर मुरादाबाद से, और ये गाना सुनना चाहते हैं, मौज शाह मौज आए हाय, क्या बात है जी। डेफिनेटली आपको ये गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही शानदार गाना तो सुनेंगे सुनेंगे, फिलहाल एक और मैसेज। रीना सिस्टर जी, राधे राधे नमस्कार, राधे राधे जी नमस्कार। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं अजीत कसाना जी, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। चलिए जी गाना सुनते हैं, और अभी टाइम है आपके पास, मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9837896।

Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

क्या बात है श्रोता, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। चलिए जी, अगले मैसेज।

0: समय की बात करूँ श्रोताओं, तो 11:31 हो चुके हैं मॉर्निंग मसाला शो में आपके देखे, और मैसेज आया है हमारे पास मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद शारिक अली, मिराज अंसारी, बाबू अंसारी। गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? सैटरडे में आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये गाना सुनना चाहते हैं, ये जो चिलमन है, दुश्मन है, दुश्मन है हमारी आवाज, मोहम्मद रफी की। और अगले मैसेज की बात करूं तो बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी और संतोष कश्यप जी कनेक्ट होती हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाती, वेरी गुड मॉर्निंग जी। वारिस फिल्म से ये गाना सुनना चाहती हूँ, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, क्या बात है जी। और एक वॉइस मैसेज आता है श्रोताओं, तो चलिए उनको भी सुन ही लेते हैं क्या कहना चाह रहे हो।
1: वालेकुम, मेरा नाम जाने आलम है, मैं संभल कर रहने वाला हूँ, मैं आसाम में काम कर रहा हूँ, ये गाना सुनना है, दिल के जख्म आंसुओं से धो दिए, जब भी तेरी याद आई हम तो रो दिए।
0: ओके, तो हम आपको डेफिनेटली गाना सुनाएंगे श्रोताओं, बस कनेक्ट रहिए, और भी मैसेज उनको भी शामिल करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना बहुत ज़रूरी है। और अगला गाना भी बहुत ही शानदार है, बबलू सैनी की रिक्वेस्ट पर ही, चिट्टे सूट दे, आय हाय। चलिए जी, चिट्टे सूट दे गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, सपने में मिलता है। ओहो क्या बात है जी, सपने में मिलता है। आज रीना के साथ अब कनेक्टेड श्रोताओं, मॉर्निंग मसाला शो में और समय की बात करूं तो 11:41 हो चुके हैं और आपने जो ये मधुर आवाज में गाना सुना है, यानी कि आशा ताई और सुरेश वाडकर जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना सपने में मिलती है। चलिए जी, फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। किन का हमारे पास क्या मैसेज आया है? हेलो रीना मैम, गुड वाला मॉर्निंग मसाला शो में गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी। ललिता कश्यप जी कनेक्ट हो गई है नवीन नगर मुरादाबाद से और प्यारी लाइन लिखती है, सावन आया बादल छाए, ओके ठंडी ठंडी हवा चली, रीना मैडम जब हंसती तो महफिल पूरी खिल जाती है। हाय हाय क्या बात है। झूले पेड़ों पर क्या बात है जी, क्या शायरी लिखती हैं आप। दिल हुआ बेकरार, मैम की एक मुस्कान ने कर दिया सावन शानदार। आय हाय आय हाय, ये तो भोले बाबा की कृपया है जी। जय भोले की, जय भोलेनाथ की। आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठंडी वाली हवाएं चल रही हैं। मैं कहती हूँ जी कंबल निकाल लीजिए, कभी देखिए ठंड ना लग जाए आपको। और ये गाना सुनना चाहती हैं भोले तेरे भगवान जी का गाना सुनना चाहती है, भोले भंडारी का गाना सुनना चाहती है, भोले तेरी भांग कमाल करेगी। क्या बात है जी, नाश्ता कर लो जी। जी बिल्कुल नाश्ता कर लेंगे, आप भिजवाइए, अब नाश्ता करने के लिए रेडी हैं। अगले मैसेज की बात करूँ तो रीना जी आदाब, ओके जी, और इनका कहना है कि मेरी पसंद का भी एक गाना सुनवा दीजिए। अरे बिल्कुल सुनवा देंगे जी, आप बेफिक्र रहिए।

ये गाना सुनना चाहते तुमको मेरे दिल ने पुकारा है। अंसार हुसैन जी मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल जी, आपका जो ये गाना है हम डेफिनेटली सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ श्रोताओं। बहुत ही शानदार गाना एंजॉय करेंगे। बस बने रही आर जोरीना के साथ, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: Come on!

बच्चों, तुम्हारे माँ बाप बड़े शैतान हैं। इन्होंने बार बार झूठ बोला, मगर मैंने पहली नज़र में पकड़ लिया था।

0: है कि नहीं?
1: जी दादी।
0: देखा वही सच निकला कि नहीं?
2: जी दादी।
0: अरे बच्चों, हमारी उम्र में वक्त नहीं लगता, एक झलक काफी होती है ये पहचानने के लिए कि लड़के और लड़की के बीच

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना एंजॉय किया है। जब भी वी मेट मूवी से बहुत ही शानदार मूवी है। और चलिए बिना किसी देरी के अपने अगले महसूस की तरफ बढ़ते हैं और लेते हैं उसे जाने की इजाजत। विक्की सागर जी कनेक्ट हो गए हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं। हाँ जी, लेट तो हो गए हैं यहाँ, लेकिन ये इनका कहना है कि मुझे गाना सुनना है। मैं 2:18 की, मैं 40 का हरियाणवी ट्रैक ये सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सुनवाएंगे जी, लेकिन यहीं से मैं अब लेती हूँ जाने की इजाजत। अब हम मिलेंगे आपको मंडे को मिलेंगे जी, यानी कि इवनिंग मस्ती शो में धमाल करेंगे, एंजॉय करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। और आज यानी कि दोपहर 3 बजे मिलने वाले हैं आपको अखिल जी। अखिल जी के साथ आप एंजॉय करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट है, वो आपकी पूरी करने वाले हैं 3 बजे। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ध्यान रखना बहुत जरूरी है श्रोताओं। और जो आप सभी के गाने हैं मैं डेफिनेटली प्ले करूंगी, बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए। ऐसा नहीं कि आपके गाने प्ले नहीं होंगे, आपके गाने तो प्ले होंगे जी। चलिए अभी के लिए बाय बाय।
1: मन है

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मेरा जिला सांबा है और तहसील मेरी रामगढ़ है। मेरे को खेती करते कोई कोई 10-15 साल हो गए। जमीन मेरे पास 16 कनाल है, खड़ी फसल पर ओले पड़े हैं, सारी बर्बाद हो गई। इस बार धान की फसल का मिला है 63,000 मुआवजा मिला था, बहुत फायदा हुआ इसका। जो बहुत जरूरी है, दोनों फसल का जो करवाना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत से लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूं। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना?
1: बिल्कुल। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप संवर जाता है।
0: बात तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी?
1: अरे मतलब बच्चों का भविष्य स्कूल से भी पहले शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
1: अच्छा, तो क्या जन्म के बाद?
0: नहीं, उससे भी पहले।
1: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रही हैं। आखिर कब से?
0: विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चों को भी जीवन की मजबूत शुरुआत मिलती है।
1: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं बल्कि माँ के स्वस्थ और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की ओर ले जाती है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है।
1: और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर इतना जोर दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा। हाल ही में समापन हुआ पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर से नहीं बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
1: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
0: बिल्कुल। और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने सेहतिया सिंह और हमारी साथी टीकन देवी जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आरजे रीना जी, आप सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम।
0: सेहतिया जी, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण है?
2: बिल्कुल महत्वपूर्ण है आर्चरीना, और यह केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोज संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है और वह बीमार भी कम पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना नहीं रहता, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसी के शरीर से पहुँचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी ही बेहतर होगी।
1: यानी माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है।
2: बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसके शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसका मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वस्थ और पोषण पर ही निर्भर करता है।
1: यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
2: बिल्कुल सही कहा टीकन जी।
0: सेहतिया जी, आपने पोषण तत्वों की बात की, आजकल एक और शब्द बहुत सुनने को मिलता है, अनीमिया, यानी खून की कमी। आखिर यह समस्या कितनी गंभीर है?
2: आर्चरीना, ये समस्या बहुत गंभीर है। सबसे बड़ी चिंता है इस बात की है कि यह महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता है कि उनमें खून की कमी है। वे कमजोरी, थकान या चक्कर आने को सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता और इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है,
1: इसीलिए उन्हें हमेशा थकान रहती है।
2: बिल्कुल आरजे, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिलाओं में हो तो जोखिम और भी बढ़ जाता है।
0: किस तरह का जोखिम?
2: बिल्कुल आर्जेरीना, समय से पहले प्रसव हो सकता है, कम वजन वाले बच्चों का जन्म हो सकता है और प्रसव के समय अगर ज्यादा रक्तस्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
0: अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोर महसूस करना।
1: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरनाक बन सकता है। अगर माँ अनीमिक है तो बच्चे में भी आयरन की कमी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
0: यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं बच्चा भी चुकाता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच और पोषण संबंधित जानकारियां पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए, क्या तैयारी उससे पहले भी जरूरी है?
2: बिल्कुल, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है, उसे आयरन की कमी नहीं है तो भविष्य में गर्भावस्था में अधिक सुरक्षित रहती है।
1: यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा।
0: हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था। क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध है?
2: बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फॉलिक एसिड, आयोडीन और DH जैसे पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले हजार दिन। आखिर इसका मतलब क्या है?
1: पहले हजार दिन यानी गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल का होने तक का समय। विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौरा मानते हैं। इस दौरान बच्चे की मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेज विकास होता है। अगर इस समय पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले, बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है।
2: ठीक है जी, अब हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
1: बच्चे के जन्म से पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जिसे कैलोस्टम कहा जाता है, बच्चे के लिए पहले प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है। ये उसे कई संक्रमण से बचाने में मदद करता है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, गुट्टी या कोई दूसरा भोजन देने की जरूरत नहीं होती।
0: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए?
2: बिल्कुल आरजे, तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, फल, अंडे और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चे के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए?
2: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू कर देना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जी, मौसमी फल, अंडा, जहाँ परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में करें, धीरे धीरे बच्चे की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता को बढ़ाया जाए।
0: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं, अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिलता है।
1: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच ये है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही और अंडे जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात यह है कि भोजन संतुलित हो और समय पर दिया जाए।
0: सेहतिया जी, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ हो और पोषित हो।
2: बिल्कुल, अक्सर हम बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह याद रखना हमें चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
0: और शायद इसी वजह से कहा जाता है, अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहे होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है हम ये सोच बदलें। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वह अपने बच्चे, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएगी,
0: और इसमें परिवार की बाकी सदस्यों की भी बराबरी जिम्मेदारी है। पति, सास, ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें, तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
2: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती है।
0: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही जानकारी,

0: तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
1: और मैं सभी बहनों और परिवार से यही कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत को कभी नजरअंदाज ना करें, समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
2: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता ANM आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है।
0: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से बस इतना ही याद रहे, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
1: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
2: धन्यवाद RJ। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
1: धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पर समाप्त होता है और जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ सही।
0: श्रोताओं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बने रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ज और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रीना। दोस्तों सोचिए, अगर हमारी थाली में हरी सब्जियां, दालें और दूध जैसी चीजें गायब हो जाए तो क्या होगा? कमजोरी, थकान और बीमारियां हमें घेर लेगी, है ना? लेकिन अगर हमारी थाली में रंग बिरंगी हो, हरी सब्जी, पीली दाल, लाल टमाटर और सफेद दूध से भरी हुई, तो सेहत भी खिल उठेगी और जिंदगी भी। तो आज सेहत से ही लाभ कई में हम बात करेंगे पोषण की, यानी स्वस्थ जीवन की असली चाबी। इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे इस कड़ी के एक बहुत नित्य साथी सेहतिया जी। सेहतिया जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी, और मुझे उम्मीद है हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे होंगे। मुझे आपकी यही बात अच्छी लगती है कि आप हर बार एक नई थीम लेकर आती हैं हमारे श्रोताओं को, और इस बार तो सबसे जरूरी पोषण। अगर हम पोषण अच्छा लेना शुरू कर दें तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी और हम ऐसे ही काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। हमने सोचा जब पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 में मनाया जा रहा है तो हम क्यों पीछे हटे अपने श्रोताओं को बताने से।
1: आरजे जी, यही तो रेडियो की खूबी है कि आप अपने श्रोताओं को हर जानकारी हमेशा जोड़कर रखते हैं। आप अपने श्रोताओं को हर जरूरी जानकारी से हमेशा जोड़कर रखते हैं। पोषण की बात चल रही है तो मुझे अपने गांव की घटना याद आ रही है। हमारे गांव में एक नन्ही सी बच्ची है, त्रिशा, घर की इकलौती और सबकी लाडली। प्यार इतना ज्यादा था कि घर के बड़े बुजुर्ग भी मना करते थे, मगर उसके माता पिता और उसके रिश्तेदार हर रोज उसे चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे के और पैकेट वाले खाना ला लाकर खिलाते थे। सोचिए, मासूम बच्ची जब खुश होकर खाती थी तो किसी ने रोकना ठीक नहीं समझा। लेकिन अचानक से ही उस बच्ची के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया और हालत ये हो गई कि लगातार उल्टियां होने लगी। परिवार घबरा गया, डॉक्टर के पास उसको लेकर गए। कई दिनों तक इलाज चला। डॉक्टर ने साफ कह दिया, इस बार बाहर का जंक फूड बिल्कुल मत देना वरना हालत और भी बिगड़ सकती है। देखा आपने, थोड़ा सा स्वाद, थोड़ी सी लापरवाही और बच्ची की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो जाता है।
0: हाँ, हम अपने श्रोताओं को ये गलती नहीं करने देंगे।
1: जी चलिए, बिना देरी के अब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की बात करते हैं, और इसकी थीम है सही आहार बेहतर जीवन, यानी ईट राइट फॉर बेटर लाइफ।
0: तो आप हमारे श्रोताओं को सही बताइए कि सही आहार का मतलब आखिर है क्या और ये हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाता है।
1: सच कहूँ रीना जी तो पोषण का विषय हर परिवार के लिए उतना ही जरूरी है जितना घर की नींव। बिना सही पोषण के कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि ये राष्ट्रीय सप्ताह क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई।
1: देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में हर साल 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और तब से लगातार इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, लोगों को जागरूक करना है और सही और संतुलित खानपान और पोषण से ही स्वस्थ जीवन संभव है। और इस साल सन 2025 का थीम है ईट राइट फॉर बेटर लाइफ। इसका मतलब है कि अगर हम सही खानपान अपनाएंगे तो न केवल बीमारियों से बचेंगे बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे।
0: वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन सेहतिया जी, जब हम पोषण की बात करते हैं तो अक्सर सुनते हैं कि भारत में बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे।
1: जी आरजे रीना जी, बिल्कुल। भारत में कुपोषण अभी भी एक गंभीर चुनौती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 के आंकड़े हमें बताते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 35.5% बच्चे अवरुद्ध यानी कम लंबाई के हैं और 19.3% बच्चे यानी उनका वजन कम है और 32.1% बच्चे अंडर वेट हैं। यही नहीं, अमीनिया यानी खून की कमी भी सबसे बड़ी समस्या है। 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में 67%, 5 बच्चों में 59% किशोरियों और लगभग 57% महिला अमीनिया से पीड़ित हैं।
0: ओहो, ये तो सचमुच चिंता की बात है। तो क्या इसका असर सिर्फ शरीर पर होता है या फिर पढ़ाई लिखाई और काम काज पर भी पड़ता है।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल असर पड़ता है। कुपोषण से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों प्रभावित होते हैं। वो जल्द ही बीमार पड़ते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग, आगे चलकर वो समाज और देश की प्रगति में भी पूरा योगदान नहीं दे पाते। एक कुपोषित बच्चा बड़ा होकर भी एक कमजोर रहता है और अक्सर बीमार रहता है।
0: ठीक है, अब ये बताइए कि सही पोषण का मतलब क्या है, हमारी थाली में आखिर क्या क्या होना चाहिए।
1: बहुत ही अच्छा सवाल आरजी रीना जी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने इसके लिए गाइडलाइंस दी है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी थाली संतुलित होनी चाहिए। इसमें तीन बड़े हिस्से जरूरी हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, रोटी, आलू और अनाज जो हमें ऊर्जा देते हैं।
0: सेहत या भैया, प्रोटीन का भी और विटामिन का भी तो बताइए।
1: हाँ हाँ अर्जी रीना, बताता हूँ। एक तो तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है, तो श्रोताओं, दूसरा प्रोटीन जैसे दाल, अंडा, दूध, मछली और मांस जो शरीर की मरम्मत और विकास में काम आते हैं, और तीसरा विटामिन और मिनरल्स जो फल और सब्जियों से मिलता है जो हमें बीमारियों से बचाते हैं।
0: ये सब तो काफी अच्छी जानकारी है, पर सेहतिया जी, लोग सोचते हैं तेल घी से मोटापा और हृदय की बीमारी होती है। खैर, हमारा मन तो अटपटा चटपटा खाने से मानता ही नहीं है।
1: हाँ भाई, ये तो सबसे बड़ी समस्या है, पर कभी कभार तो चल जाता है। हमारी रोजमर्रा की थाली में थोड़ी मात्रा में तेल घी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। नमक 6 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सबसे जरूरी, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
0: तो क्या इसका मतलब है कि हर इंसान को दिन भर में लगभग कितनी कैलोरी लेनी चाहिए?
1: बहुत ही अच्छा सवाल आरजी रीना जी। प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर में 2000 से 2500 कैलोरी की जरूरत होती है, लेकिन उम्र, लिंग और काम के अनुसार बदलता है।
0: अच्छा सेहतिया जी, इतना सब कुछ बताया तो ये भी हो सकता है कोई सही मात्रा में ना ले पोषण, तो सभी अंगों का कितना भाग होना चाहिए?
1: प्रोटीन लगभग 50 ग्राम रोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कुल ऊर्जा का 55 से 60% होना चाहिए, और वसा यानी फैट 30% से ज्यादा नहीं। साथ ही 25 से 30 ग्राम फाइबर रोज लेना जरूरी है जो हमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज से मिलता है।
0: वाह, अब ये सबके लिए बड़ी उपयोगी जानकारी है, लेकिन क्या सिर्फ संतुलित आहार से ही सब ठीक हो सकता है, ठीक हो जाएगा? सरकार भी तो कई कार्यक्रम चला रही है।
1: बिल्कुल, सरकार कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रही है, जैसे एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB। इसका लक्ष्य है बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया कम करना। इसके लिए आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं और समय समय पर कीड़ों की दवा दी जाती है और जागरूकता फैलाई जाती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस यानी NDD, इसमें स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को साल में 2 बार अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है उनके पेट में कीड़े ना पनपे।
0: और वो माँ करके एक प्रोग्राम था वो?
1: अरे हाँ हाँ भाई, वो भी बता रहा हूँ, माँ का स्नेह माँ कार्यक्रम। इसका मकसद है कि हर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध पीना शुरू करें और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। लैक्टेशन मैनेजमेंट सेक्टर्स LMCS, यह बीमारी या समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए माँ का दूध सुरक्षित रूप में उपलब्ध कराया जाता है। पोषण पुनर्वास केंद्र यानी NRCS, ये ऐसे बच्चों के लिए है जो गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। यह उन्हें इलाज और पोषण, यहाँ उन्हें इलाज और पोषण दोनों दिए जाते हैं।
0: सेहतिया भैया, आप एक और भूल रहे हैं, विटामिन ए वाला एक प्रोग्राम था ना?
1: अरे हाँ भाई हाँ, वहाँ भी पहुँच रहा हूँ। और आखिर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, 5 साल से छोटे बच्चों को हर 6 महीने पर विटामिन ए की खुराक दी जाती है।
0: वाह सेहतिया जी, आपने तो सारी जानकारी एक साथ दे दी, लेकिन हमारे गांव में लोग अक्सर कहते हैं कि फल और सब्जियां महंगी है, तो क्या पोषण सिर्फ अमीरों के लिए है?
1: आरजी रीना जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोषण हर किसी के लिए है। हमारी लोकल और मौसमी चीजें जैसे चना, मूंगफली, दालें, गुड़, हरी सब्जियां और मौसमी फल, ये सब बहुत पौष्टिक होते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं है। जरूरी है कि हम इन्हें रोज अपनी थाली में शामिल करें।
0: बहुत बढ़िया सेहतिया जी, हमारे गांव और मोहल्ले में लोग पोषण को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। कई बार समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। क्यों ना आप आज हमारे श्रोताओं को कुछ आम मिथकों की सच्चाई बता दीजिए।
1: जी बिल्कुल आरजी रीना, ये तो जरूरी है। चलिए कुछ बड़े मिथक की परत खोलते हैं।
0: सबसे पहले तो यही सुना है, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खाना खाना चाहिए, चाहे जैसा भी हो।
1: देखिए ये पूरी तरह गलत फहमी है, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा नहीं बल्कि संतुलित और पौष्टिक भोजन चाहिए। अगर वह सिर्फ तली भुनी चीजें या सिर्फ चावल रोटी खाएंगी तो माँ और बच्चा दोनों कमजोर रहेंगे। थाली में हरी सब्जियाँ, दालें, दूध, फल और अनाज सब होना चाहिए।
0: ठीक है, अब दूसरा मिथक, लोग कहते हैं बच्चों को 6 महीने से ऊपर ही ऊपर का दूध या खाना देना चाहिए।
1: अरे नहीं आरजे रीना जी, WHO और भारत सरकार दोनों की गाइडलाइन साफ कहती है कि बच्चे के जन्म के पहले 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, यही उसका सबसे और पर्याप्त पोषण है। ना पानी, ना शहद, ना ऊपर का दूध, सिर्फ माँ का दूध।
0: अब सुनिए तीसरा, लड़कों को दूध, घी और फल ज्यादा देना चाहिए, लड़कियों को उतना ही जरूरी नहीं।
1: यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है, यही लैंगिक भेदभाव और बच्चों की सेहत बिगाड़ता है। सच्चाई ये है कि लड़के और लड़कियां दोनों को बराबर का पोषण मिलना चाहिए। किसी को कमजोर रखने का मतलब पूरे परिवार और समाज को कमजोर करना है।
0: बहुत सही, लेकिन एक और मिथक है, मीठा और जंक फूड बच्चों की सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस दांत खराब करता है।
1: नहीं आरजे रीना जी, यह तो सबसे खतरनाक सोच है। लगातार मीठा और जंक फूड बच्चों को मोटापा, डायबिटीज और पेट की बीमारियां देता है। सिर्फ दांत ही नहीं, पूरा शरीर बीमार हो जाता है।
0: अब अगला मिथक, पानी या दाल में डाला गया आयरन फॉलिक एसिड पाउडर दवा है और इसे साइड इफेक्ट होगा।
1: बिल्कुल गलत, यही सुरक्षित पोषण सुधार तकनीक है। खाना खाने का स्वाद नहीं बिगड़ता और शरीर को जरूरी आयरन मिलता है, इससे बच्चे और महिलाओं में अमीनिया कम होता है।
0: ठीक है, एक और सुना है, खून की कमी सिर्फ औरतों को होती है, पुरुषों को नहीं।
1: गलत फहमी, ये भी गलत फहमी है, अनीमिया पुरुषों में भी होता है, बस दर महिलाओं और बच्चों में ज्यादा। खून की कमी किसी को भी कमजोर बना सकती है।
0: और आखिरी मिथक, नाश्ता छोड़ने से वजन कम होता है।
1: ये तो सबसे बड़ा झूठ है रीना जी, नाश्ता छोड़ने से शरीर थका थका रहता है और दिन भर इंसान ज्यादा खा लेता है। यह सच्चाई है कि नाश्ता करने से वजन नियंत्रण रहता है और सेहत अच्छी रहती है।
0: वाह सेहतिया जी, आपने तो आज पोषण से जुड़े सारे मिथक तोड़ दिए। मुझे लगता है हमारे श्रोता अब और ज्यादा जागरूक हो गए हैं। अब अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के मौके पर?
1: आरजे रीना जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सही पोषण ही असली धन है। अगर हम अपने बच्चे और परिवार को संतुलित आहार देंगे तो बीमारियाँ कम होंगी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी। इसलिए सब लोग इस सप्ताह यह संकल्प लें कि हम अपनी थाली को रंग बिरंगी और संतुलित बनाएंगे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तो तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कहीं।
0: वाह सेहतिया जी, आज आपने बहुत ही काम की बात बताई। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1 सितंबर से लेकर यानी कि 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, यानी कि पोषण। हमें अपने डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो शामिल करने चाहिए जिससे हमें यानी कि एनर्जी मिले और हमारे बाल भी सही रहे और हमारे स्किन भी सही रहे। कहते कि हेल्दी खाना ही आपको हेल्दी रखता है। तो आज मेरे साथ कनेक्ट है डॉक्टर किरण मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए।
2: मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ, महिला चिकित्सालय में और मुरादाबाद में, और हमारा SNCU का वो है मेनली। तो हम यूनिट्स को देखते हैं, 28 दिन तक के बच्चे सारे हमारे पास ही आते हैं और साथ में लैक्टेशन यूनिट भी है हमारा। तो उसमें हमारा मदर का भी हमारा पूरा होता है, KMC का भी हमारा यूनिट है जिसमें कि हम बच्चों को गर्म करना और कैसे उनको गर्माई दे करके लो बर्थ वेट को हमारे को सही करना है।
0: ओके मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक आखिरकार मनाया क्यों जाता है ये?
2: हमारे पास पोषण वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से सरकार भी ये प्रयास करती है कि इस तरह के वीक्स अगर वो बनाते हैं तो हर जना सेम टाइम पर पे उस चीज को पोटेंशिएट कर देता है, उस बात को, उस हमारा जो भी हम एक थीम को लेकर के चलेंगे। तो कुपोषण वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत है, क्योंकि भुखमरी भी काफी है,
3: बिल्कुल,
2: और गरीब लोग भी काफी हैं, है ना। एंड दूसरा, अमीर भी हैं तो दे डोंट नो द स्टाइल ऑफ ईटिंग, तो वो फिर ज्यादा वो मीडिया और उसके हिसाब से जैसे जो चीजें ज्यादा पब्लिसाइज हो रही हैं उस पे चले जाते हैं। तो मतलब ओबेसिटी भी कुपोषण है, ओवरवेट होना भी
3: बिल्कुल
2: कुपोषण है, और अंडरवेट होना भी कुपोषण
3: है।
2: तो वी कैनॉट से कि कोई अमीर है तो वो वेल न्यूट्रिश्ड है ना, वेल नरिश्ड है, क्योंकि उसके अंदर भी हमारा हम देखें तो वो बच्चे ओवरवेट हैं, क्योंकि उनका जो मोड ऑफ ईटिंग है एंड चॉइस ऑफ ईटिंग है वो बिल्कुल ही अलग है। तो इस वजह से कुपोषण दोनों हर लेवल पे, हर जगह पे हमारे को मिल रहा है।
3: तो मैम, जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने डाइट में, रेगुलर डाइट में ऐसा क्या शामिल करना चाहिए जिनसे उनको एनर्जी मिले, और डाइट में अपने क्या क्या ऐसी चीजें जो शामिल करें वो?
2: देखिये, जो भी हम जिस भी लोकेलिटी में रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, जो वहाँ का लोकल फूड है वो हमारे लिए बेस्ट डाइजेस्टेबल है। जो फ्रूट है वो क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से है, क्योंकि वो महंगा है इसलिए वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा। जो सीजनल फ्रूट होगा, भले ही वो अमरूद हो, वो केला हो, है ना, जिस सीजन में जो चीज हो रही है, एप्पल है तो एप्पल का हमें लेना है। सीजनल फ्रूट अगर हम लेंगे तो उसमें हमारे को सारे विटामिन एंड जितना भी उसका मिनरल्स अगर मिलने हैं वही मिलेंगे। सेम चीज हमारे पास वेजिटेबल्स के लिए है, जितनी फ्रेश होंगी एंड जितनी टाइमली हम उसको यूज कर लेंगे। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि मंडी से गए, वहां से मतलब खेत से आया तो मंडी पे आया, ठीक है, फिर मंडी से वो मार्केट में आया, मार्केट से हमारे फ्रिज में गया, फिर मंडी हम धीरे धीरे ओवर अ वीक हमने से खाया, तो जितना वो स्टेल होता चला जाएगा, पुराना होता चला जाएगा, उतना उसके जो मिनरल्स एंड जो उसकी पौष्टिकता है वो चीज कम होती चली जाती है। इसलिए हमारे को हर चीज कोशिश करनी है कि फ्रेश खाएं, जो भी हम खाएं, जैसे हमारे सिस्टम में है रोटी सब्जी दाल चावल, हम दाल लें या नॉन वेज लें, प्रोटीन हमें उसी से मिलता है, ठीक है, दूध दही फल एंड सैलड, ये अगर हमारे न्यूट्रिशन, जैसे हमारा ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन है जो हमारी थाली बनती है, तो वो सबसे अच्छा फूड है, चीपेस्ट भी है एंड बैलेंस्ड भी है। जितना हम अलग अलग चीजों में जाते हैं, जितना ये फास्ट फूड्स आ गए, ठीक है, विच इज कॉल्ड जंक फूड, तो वो वाकई में जंक है, बिकॉज उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी नहीं है, और उसमें हमारा अमाउंट ऑफ फैट एंड चीज ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, तो वो पब्लिसाइज इतना हो गया है मीडिया, उसमें एडवर्टीजमेंट और उसकी वजह से ना, तो बच्चे उसकी तरफ को ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट हमारे को उनको इस चीज को एजुकेट करना चाहिए, सरकार ने तो अपनी तरफ से अच्छा कर रखा है, क्योंकि साइंस जब से भी स्टार्ट होती है फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर हमेशा न्यूट्रिशन एंड डाइट पे ही होता है, तो दैट इज एन अवेयरनेस जो कि बच्चे को अपने स्कूल में ही मिल रही है, टीचर से ही मिल जा रही है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, और उसमें वो समझ में आता है उनको कि क्या क्या चीजें उनको किस तरह से मिल रही है, बैलेंस डाइट क्या है, वो सारा स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। अब इस वीक में हमने उसको और पोटेंशिएट कर दिया, हमने और अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन कर दिया, तो उन्हें मीडिया में भी सुनने को मिल गया, जो कि एक मीडिया की तरफ से कोई मैसेज आता है तो बच्चे काफी अटेंटिव हैं, मोर ऑन द मीडिया, और एज के हिसाब से हम लोग रिलेटिवली काफी कम उसको यूज करते हैं, तो ये एक मैसेज हमारा बड़ा अच्छा सा जाता है उससे।
3: तो मैम, जो महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाती है, उनके लिए डाइट कितना जरूरी है, और अपने डाइट में ऐसा क्या शामिल करें ताकि बच्चों को भी पोषण मिले और उनको भी पोषण मिले?
2: जैसे पूरी प्रेगनेंसी रही तो सब वो जो भी न्यूट्रिशन बच्चे को मिला वो मदर से ही मिला, अब डिलीवरी के बाद भी उसको मदर से ही मिलना है, तो इस वजह से मदर अब डबल तो खा नहीं सकती, इसलिए हमारे को कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनसे हमें सप्लीमेंट करना होता है, उसमें हमारे को ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, है ना, मिल्क आ जाता है, जो चीज वो इजिली ले ले, कंज्यूम कर ले, और उसको हमें ध्यान देना है कि उसकी डाइट में प्रोटीन्स भी अच्छी हो, दो बार मुंह से डाल दें, दलिया दें, ठीक है, क्योंकि दलिया में हमारा फाइबर्स भी आ जाता है, और जिसमें फाइबर आएगा साथ में विटामिन्स भी आ जाते हैं, ठीक है, साथ में हम फ्रूट्स दे सकते हैं जो भी सीजनल फ्रूट्स हों, एंड ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू जैसे बोले, बस हमें इतना ध्यान रहना पड़ता है कि जो सिजेरियन वाले हैं, क्योंकि उनमें हीलिंग होनी है, जितने टाके हैं, तो उसमें जो फैटी चीजें हैं, ऑयली चीजें हैं, घी का इस्तेमाल थोड़ा संभल के कर लें, बाकी और चीजें ले सकते हैं।
3: और ऐसी क्या चीज है जो उनको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए?
2: कोई चीज ऐसी नहीं है नहीं लेनी चाहिए, ये जो हमारे सिस्टम में बना हुआ है परहेज फॉर 3 मंथ्स, और कितनी मदर आज तक भी ऐसी आती है जो कि सिर्फ मूंग की दाल खा रही है 3 महीने, विच इज इम्पॉसिबल, कोई जना 3 महीने मूंग की दाल लगातार खाए तो वो खा ही नहीं सकता, है ना,
3: बिल्कुल।
2: अल्टीमेटली अवॉइड ईटिंग इट। और हमारा जो बच्चादानी है और जो

0: डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट इज बिल्कुल डिफरेंट, है ना। तो बच्चा डिलीवर हो गया, बच्चेदानी अपनी जगह पे आ गई, नसें बंद हो गई 42 डेज में, है ना। तो हमारा 6 वीक्स का जो है, उस बीच अगर हमें परहेज करना है तो हम ठंडे का कर लें। आप ऐसे मान लो कि नसें खुली हैं, अगर उनको करना भी है तो ठंडी वाली चीजें, बर्फ की चीजें, कोई भी ऐसी चीज है फ्रिज व्रिज की रखी हुई, उसका परहेज कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फूड में देखें, नीड एवरीथिंग, सब कुछ डाइजेस्ट होता है, इसे कोई ऐसा परहेज नहीं है कि हमारे को सिर्फ मूंग मसूर ही खानी है 3 महीने के लिए, कुछ करनी है नहीं। उससे क्या है, मतलब मदर का तो न्यूट्रिशन हमने खराब कर ही करी थी, उसका दूध भी नहीं अच्छा उतरेगा।
1: अच्छा अच्छा,
0: जितनी अच्छी डाइट उसकी होगी उतना ही हेल्दी उसका मिल्क भी होगा। वही चीज है, क्योंकि 6 मंथ तक हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे को हमें कुछ भी नहीं देना है, तो वो टोटल डिपेंड करे, उसको डाइजेस्ट ही नहीं होगा।
1: हाँ जी, हाँ,
0: ठीक है। तो मदर का हम जितना न्यूट्रिशन अच्छा रखेंगे तो उतना हमारा बच्चा ही तो हेल्दी होगा।
1: और जो हमारे जो ओल्ड बुजुर्ग होते हैं मैम, उनको एक्चुअल में जो सही डाइट है उनके लिए, बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि उनके दांत भी टूट जाते हैं, तो उनको ऐसा डाइट में क्या शामिल करना चाहिए जिससे उन्हें दिक्कत भी ना और पूरी हेल्दी, यानी कि पूरी अच्छे से पोषण उनको मिल जाए।
0: देखिए, डाइट तो बेसिकली वही है, नहीं हमारा है, दाल है, सब कुछ। तो ये हम कर सकते हैं कि मतलब बहुत हैवी वाली चीजें उनको ना दे, क्योंकि थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो आई जाती है उनको विद टाइम।
1: हाँ जी,
0: तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको हमने जैसे खिचड़ी के फॉर्म में दे दिया, उसी में हमने वेजिटेबल्स भी मिला दी, ठीक है। हमने रोटी या कुछ बोती तो हमने उनको दे दिया दाल में, क्योंकि प्रोटीन्स की कमी होती है मेनली एज के साथ। रोटी तो वो खा ही लेते हैं पर प्रोटीन्स का इतना वो ध्यान नहीं रखते, सब्जी अपना मन के हिसाब से खा ली। एंड ओल्ड एज एक बड़ी ही डेलिकेट एज है एज अ चाइल्ड विद ईगो, मतलब अपना चाहते भी हैं, अटेंशन देना भी पड़ता है, नहीं दे पाए तो नाराज भी हो जाते हैं, है ना। पर बच्चे को थोड़ा डर होता है।
1: हाँ, बिल्कुल जी।
0: और उनसे हम डरते हैं, है ना, ये डिफरेंस होता है।
1: बिल्कुल जी,
0: तो इसलिए इट इज अ वेरी नाइस थिंग कि हमारे को उनको प्यार से भी रखना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, डांट भी खानी पड़ती है, पर यह है कि मतलब उस हिसाब से उनको बस उनकी उन्हें एक अफेक्शन मिल जाए, उन्हें टाइम मिल जाए हमारा।
1: तो मैम, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि मोटापे और कुपोषण से बचने के लिए हमें क्या करना है?
0: देखिए, मोटापा हटाने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे को खाना बंद कर देना है, ठीक है। डाइट प्लान्स चल रहे हैं, बिल्कुल भूखे रहते हैं वो, या तो आप उस चीज को बिल्कुल ही किसी डाइटिशियन के अंडर ही करें, ठीक है। मेन थिंग इज जो हम खा रहे हैं, हमारी लाइफ इतनी स्टैग्नेंट हो गई है, ठीक है ना। तो हर चीज, तो अब आप सोचिए, बाहर निकलो तो खेलने की जगह नहीं है।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: दे आर नो फील्ड्स। तो बच्चे खेले तो कहाँ खेले, छत पे खेलते हैं या घर पे खेलते हैं या मोबाइल पे खेलने,
1: छत पे भी खेलने से मना करते हैं।
0: हाँ, वही वहाँ भी गिर जाते हैं बच्चे भी। एरिया ना अटेंडेंट हमेशा चाहिए उन्हें देखने के लिए। बाहर रोड में नहीं खेल सकते, ट्रैफिक इतना है, बाहर कहीं दूर जाएं तो बच्चे चोरी हो जाते हैं।
1: हाँ,
0: है ना। तो पेरेंट्स वैसे भी डर के मारे भेजना चाहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा मेन थिंग ये है कि एक्टिविटी कोई हो जाए, मतलब जो हम खा रहे हैं, वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट। खाना सब कुछ है, साथ में हमारे को उसको बर्न आउट कर देना है। तो बच्चे कोई साइकिलिंग कर लें, डांस कर लें 1 घंटे का, है ना, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लें जिसमें कि उनको पसीना आए, ठीक है, और वो कंटिन्यूस हो। एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज कर लें, ठीक है, और अगर पॉसिबल है तो जिम कर लें। एनीथिंग, मतलब एक्सरसाइज करनी है, जरूरी नहीं हम जिम जाएं तभी हमारी एक्सरसाइज होगी, घर पे भी कर सकते हैं, या अपना खेल लें कुछ एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी हो जिसमें कि हमारी वो एनर्जी बर्न हो, है ना, तभी वो हटेगी। नहीं खाने से हमारा BMR कम हो जाता है और वो दोबारा वेट गेन करता है।
1: अच्छा अच्छा, मतलब डबल वेट गेन करता है वो।
0: मतलब BMR क्या करता है, BMR इज हमारी बर्निंग ऑफ द कैलोरीज वी आर ईटिंग। तो उसमें हमने क्या करा, जब हमने अपनी कैलोरीज कम कर दी, 1000 से भी कम कर दी, अब हमारी बॉडी में BMR भी कम हो जाएगा अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। तो BMR कम हो गया मतलब अब हमारी रिक्वायरमेंट कम हो गई, अब हम जितना खा रहे हैं उतना भी बर्न आउट होकर के कंज्यूम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अबव दैट जो हमने खाया वो फिर हमारा वेट गेन नहीं आ जाएगा, ठीक। इसलिए इट इज नेसेसरी कि खाना हम पूरा खाएं जितनी हमारी डाइट बनती है 1500-2000 कैलोरीज तक का, ठीक है, और उसके बाद उसको हम बर्न आउट भी करें। एल्डर्स हैं, वॉक कर लें,
1: बिल्कुल,
0: ठीक है, और बच्चे हैं तो डांस कर लें, साइकिलिंग कर लें, एक्टिविटी कर लें, खेल कूद करें, मतलब अच्छा प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी।
1: एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे?
0: खाना तो हमें बैलेंस ही खाना है, एंड जो हमारे ट्रेडिशनल फूड है दैट इज द बेस्ट, दैट इंक्लूड रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और सारा हमारा सैलेड, यही बैलेंस्ड है।
1: थैंक यू मैम।
2: आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, सही पोषण बेहतर जीवन। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे और सेहतिया जी को अनुमति।
3: नमस्कार।
4: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: सब ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हाँ जी दोस्तों, कैसे हाल चाल है? मैं आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत करते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ साथियों, अगर हमारी सोच बदलेगी, हमारे समाज की सोच बदलेगी तो हमारा देश अपने आप बदल जाएगा। एक बार फिर से आनंद हाजिर हो गया इस प्रोग्राम को लेकर और आज हमारा मुद्दा बहुत ही खास और विशेष और अहम और महत्वपूर्ण है। सारे शब्दों का मैंने इस्तेमाल कर लिया है श्रोताओं। एक बार फिर से सबसे पहले आपका वार्म वेलकम करते हैं आपके फेवरेट स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और इस प्रोग्राम को आज मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूं, मेरा साथ दे रही है हमारी प्यारी सी को एंकर कुमकुम। बहुत बहुत स्वागत है कुमकुम स्टूडियो में, कैसी हैं आप?
1: थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आज का जो प्रोग्राम है सोच बदलो, आज उसके बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो काफी डिजिटल के बारे में बात करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा रहने वाला है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर देखने से ज्यादा सुनाई देने वाला है कुमकुम जी। कुमकुम हाँ। अभी थोड़ी नई नहीं है इसलिए ना वो डिजिटल जमाने में ज्यादा एक्टिव है, इसलिए वो देखने की बात कर रही है, लेकिन हम यहाँ सुनाई देने की बात करते हैं क्योंकि यहाँ आवाजों की दुनिया है। तो कुमकुम हमारे साथ अभी नई जुड़ी है, श्रोताओं कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम बिल्कुल सही बताया, सोच बदलो। आज हम इसमें एक बहुत ही अहम मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया की, जहां दोस्ती भी ऑनलाइन है, काम भी ऑनलाइन है और पहचान भी ऑनलाइन है। आजकल तो खाना पीना भी ऑनलाइन है, क्यों कुमकुम जी? कपड़े जी भी ऑनलाइन है,
1: अब तो हमें जो चाहिए वो ऑनलाइन मिल जाता है।
0: इनफैक्ट मजे की बात यह है, आजकल मेकअप भी ऑनलाइन है, आप नहाकर मत आओ, फिल्टर लगाओ, आपका मेकअप भी आ जाता है। तो सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है। लेकिन इस डिजिटल जमाने में जितनी चीजें मेरे और आपके लिए आसान है ना कुमकुम, उतनी ही खतरनाक भी है। क्यों?
1: हाँ। सही कहा ना मैंने, सोशल मीडिया से हमारे कनेक्शंस और लोगों तक जा सकते हैं जो निगेटिव रहते हैं हमारे लिए।
0: करेक्ट करेक्ट, और हम वो सारी चीजें जाने जाने में शेयर भी कर देते हैं जिसका हमारे जो हेटर्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं कई बारी। हाँ। तो श्रोताओं, आज इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। आप बिल्कुल चिपक के बैठिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पे। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, चलिए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः मिलेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना, क्या बात है। मतलब बच्चन साहब और रेखा जी पर पिक्चराइजेशन, बड़ा ही प्यारा गाना था। आपको कैसे लगा कुमकुम ये गाना?
1: जी ये तो मेरा एक फेवरेट गाना हो गया।
0: अरे वाह, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। और देखिए भाई साहब, निगाहों में गुल नहीं, आजकल निगाहों में सोशल मीडिया के एप्स खुले हुए हैं, कहीं पर इंस्टाग्राम, कहीं पर व्हाट्सएप, कहीं पर फेसबुक और कहीं स्नैपचैट और पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शायद अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो हमारा समय कम पड़ जाएगा। वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन सा ऐप है जरा ये बताओ, तुम सबसे पहले उठते ही कौन सा ऐप खोलती हो मोबाइल में?
1: Actually, मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ।
0: देखा, व्हाट्सएप के दीवाने भी भरे पड़े हैं, मुझे पता है गाइज, आप भी व्हाट्सएप चलाते हो दोस्तों, मैं जानता हूँ। मैम दीदी जी, सुबह उठते ही व्हाट्सएप मत चलाया करो। फैमिली ग्रुप्स में गुड मॉर्निंग भी आ जाता है ना सुबह उठते ही, मुझे पता है। तुम्हारे पास किसका गुड मॉर्निंग आता है सबसे पहले?
1: एक्चुअली मेरी फैमिली का ही आता है।
0: ये लो भाई, आजकल जमाना बड़ा डिजिटल हो गया, फैमिली के साथ बैठे हैं फिर भी ऑनलाइन गुड मॉर्निंग कर रहे हैं।
1: हाँ, नहीं मेरी हाँ, तो
0: आपकी
1: शादी हुई
0: तो बात अलग है। जी हाँ, वो तो फिर चलो समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप्स है ना, इसमें जो लोग खेलते हैं गुड मॉर्निंग, हमको भी कभी कभी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों खैर, जितनी मजे की चीज है ना सोशल मीडिया, उतनी घातक और खतरनाक भी है। क्यों कुमकुम? क्योंकि मुझे लगता है कि आज हम जो जी रहे हैं वो एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर चीज हमारे लिए बहुत आसान हो गई है, बहुत कन्वीनियंट हो गई है, बट कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्क भी बढ़ गया है। डिजिटल स्कैम्स लगातार हो रहे हैं, हम इन पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं। चीजें बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर सावधानी हम नहीं रखेंगे तो चीजें खराब भी हो सकती हैं।
1: हाँ, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ।
0: हाँ प्लीज।
1: जैसे कि डेटिंग एप्स हैं।
0: हाँ अरे वाह, बताओ बताओ।
1: डेटिंग एप्स पे जो गर्ल्स अपने पार्टनर्स ढूंढ रही होती हैं, कई बार उनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है, या बॉयज के साथ भी हो जाता है।
0: ट्रू ट्रू, आजकल तो लड़के लड़कियां बन के घूम रहे हैं, व्हाट्सएप पे आईडी बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे भी, और आपको मैसेज करेंगे ये वो। इनफैक्ट सबसे मजे की बात तो ये है कि आजकल आप ही के दोस्त के नाम की आईडी बना के आपसे पैसे लूट रहे होते हैं लोग।
1: जी राइट,
0: ये भी बहुत हो रहा होता है। कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा?
1: मेरे साथ तो नहीं, बट मेरी फ्रेंड के साथ हो चुका है, क्योंकि उसके साथ तो मैंने ही करा था।
0: आइयो रामा भाई, सबसे बड़ी यहाँ पर क्राइम, साइबर क्राइम बैठी हुई है, क्या कह रहे हो?
1: बट वो एक प्रैंक था।
0: अच्छा प्रैंक था, बट यार ऐसे प्रैंक मत किया करो, दिक्कत हो जाती है। वेल, इसे जोक सपाट दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा नया प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो, और अगर हम बदलेंगे तो सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो समाज अपने आप बदलेगा। और आज हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है सोशल मीडिया सिक्योरिटी, यानी कि खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखना भी जरूरी है। तो तुम क्या मानती हो कुमकुम, ऑनलाइन जितनी सारी चीजें आजकल हमें मिल रही हैं, इसमें क्या रिस्क भी है?
1: जी हाँ, अगर हम अपनी सारी चीजें ही सोशल कर देंगे तो सारी चीजें लोगों को पता चल जाएंगे, और जिससे हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी।
0: और लोग करते हैं यार
1: जी,
0: अगर लोग चाय भी पी रहे हैं उसकी फोटो, थोड़ी देर बाद सैंडविच खा रहे हैं उसकी फोटो, कहीं जा रहे हैं उसकी फोटो, मैं गाइस यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ।
1: एक्चुअली लोकेशन इंस्टाग्राम पे मोस्ट ऑफ डालते हैं कि लोकेशन के साथ कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं,
0: और जबकि वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है।
1: जी, आप पैसे निकाल लें एटीएम से, तब आप ऑनलाइन हैं, लाइव आ रहे हैं, ये सारी चीजें गलत है।
0: गॉट इट, बिल्कुल सही कहा इसने। और श्रोताओं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आज हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद ही शेयर कर देते हैं, जैसे इन्होंने कहा, जैसे कि लोकेशन। एग्जैक्टली, फोन नंबर भी हम कई बार डाल देते हैं ना जब हम आईडी बना रहे होते हैं। आजकल तो खैर लोग कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो अपना आधार कार्ड भी डाल देते हैं भाई, जबकि वो नहीं डालना होता है, दिस इज फुल ऑफ प्राइवेसी। बट क्या ही कर सकते हैं, देखिए हमारा डेली रूटीन है, मानते हैं, एक तो आदत भी हो गई है कहीं ना कहीं कुमकुम इस चीज की ना, हमें कि उठते ही हर चीज शेयर करनी है, हर चीज को दिखाना है,
1: सोशल मीडिया का कीड़ा बनना हो गया है एक तरह से।
0: करेक्ट करेक्ट, मतलब पूरे आदि बन चुके हैं हम
1: जी।
0: अगर एक दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो पता नहीं लोग क्या हाल होगा,
1: आधी दुनिया रुक जाएगी।
0: सच बोल रही है यार, ये तो मुझे भी लगता है। तो दोस्तों यहीं से शुरू होता है खतरा, यानी कि हैकर्स या फिर फ्रॉड जिन्हें हम कहते हैं। और आज छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, और आज का हमारा टॉपिक हमने आपको बता ही दिया है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ श्रोताओं, सोशल मीडिया सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, कैसे आप बच सकते हैं सोशल फ्रॉड से, इस पे हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है, सोच बदलो प्रोग्राम के अंतर्गत आपके साथ तमाम बातें साझा करेंगे। आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः लौट कर आ रहे हैं मैं और कुमकुम।

0: क्या गाना था यार, मजा आ गया किशोरदा की आवाज सुन के। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल बताओ, कल का तो नहीं पता, लेकिन आज भी अगर आपने चीजों को सही से मैनेज नहीं किया तो बिल्कुल कल का कुछ पता नहीं चलेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बताता हूँ अभी आपको, लेकिन उससे पहले आप सभी का खुली बात के साथ स्वागत है जी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, सोशल मीडिया सिक्योरिटी। बहुत जरूरी है आजकल, जहां सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर कोई इस्तेमाल करता है। इस सोशल मीडिया में थोड़ी थोड़ी सावधानी भी बहुत जरूरी है, थोड़ी नहीं पूरी सावधानी बहुत जरूरी है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। तो मेरे साथ दे रही है कुमकुम जी। कुमकुम, आपको कैसे लगा ये गाना और आप क्या कहना चाहेंगी इस गाने के बारे में?
1: ये गाना तो बहुत अच्छा था और मैं इस प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया सिक्योरिटी, यानी हाँ खुद को आप ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में भी और आगे बताएंगे। इतने हम आनंद जी से जानते हैं, क्या क्या बोलना चाहिए?
0: देखो यार, मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए सोशल मीडिया पे ना जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अक्सर अवॉइड करनी चाहिए, और ये गलतियां हम डेली करते हैं, जैसे कि हम कोई भी ऐसा नॉन लिंक हमारे पास आता है इंस्टा या फेसबुक पे, हम तुरंत क्लिक कर देते हैं। कई बार व्हाट्सएप पे आता है, हम तुरंत क्लिक कर लेते हैं, और ये लिंक पे क्लिक करना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। दूसरा, तुम्हें भी पता होगा हर फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे पास 2 मिनट में आती है, ऐसे ऐसे लोगों की आती है जिनको हम जानते भी नहीं है और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और एक और बात, कई बारी होता है ना कि हम अपना पासवर्ड बहुत कमजोर बनाते हैं, कई बारी अपना फोन नंबर रख लेते हैं, कई बारी 1, 2, 3, 4, 5 रख लेते हैं, हमें लगता है ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, लेकिन ये पासवर्ड हैकर्स बहुत आसानी से हैक कर सकते हैं और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, स्कैम हो सकता है सोशल मीडिया वाला। दूसरी बात, सबसे अहम जो आपको याद रखनी है, किसी को भी अपना OTP नहीं बताना है, ये तो आप भी जानती हैं।
1: शेयर नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे OTP को लेकर?
1: OTP को लेकर मैं शेयर करना चाहूंगी कुछ बातें, जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, हमारी सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स के एप्स के जो भी होते हैं उसका OTP आता है, जो हम कभी कभी दोस्तों में अपनी ID बताने के चक्कर में शेयर कर देते हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए। OTP तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों याद रखिए, OTP वन टाइम पासवर्ड नहीं होता, only to person, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कुमकुम ने, जो पासवर्ड है ये सिर्फ आपके लिए है, आप ही का बनाया हुआ है, और आप इसका सही इस्तेमाल करें और हर किसी के साथ अपनी पर्सनल डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी साझा ना करें। इसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं नहीं जाएंगे, सुनते रहेंगे कुमकुम और आनंद को। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया सुरक्षा की, क्योंकि आज हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन दुनिया में बीतता है। सोशल मीडिया आखिर क्या सच में हमारे लिए जितना लाभदायक है, क्या उतना खतरनाक भी है? तो चलिए इस पर बात करते हैं। श्रोताओं, आज हम फोटो वीडियो शेयर करते हैं, अपनी लोकेशन बताते हैं, परिवार और दोस्तों से जुड़ते रहते हैं, निजी विचार और जानकारी पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपकी पोस्ट कौन कौन देख रहा है और उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पर ज्यादा जानकारी साझा करना आपको ठगी, पहचान की चोरी और ब्लैकमेल का शिकार भी बना सकता है। तो चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि एक पोस्ट कई मुसीबतें लेकर आ सकता है। रोहन, दोस्तों मैं परिवार के साथ 7 दिन के लिए मनाली जा रहा हूँ, ये रहा होटल का नाम और पूरा ट्रेवल प्लान। रोहन, तुम्हारे अकाउंट से मैसेज आया है, तुम फंस गए हो या पैसे चाहिए?
6: क्या, मैंने ऐसा कुछ नहीं भेजा।
5: किसी ठग ने रोहन की पोस्ट से जानकारी लेकर उसके नाम से नकली प्रोफाइल बना ली, उसके दोस्त को मैसेज भेज दिया, मैं मुसीबत में हूँ, तुरंत पैसे भेज दो। कुछ दोस्तों ने पैसे भी भेज दिए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ खतरे ऐसे हैं जो आम हैं, जैसे कि फर्जी प्रोफाइल, पहचान की चोरी, फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल, ब्लैकमेल या मार्फिंग, फ्रॉड लिंक और गिफ्ट स्कैम, लोन या इनाम का लालच। कई बार ठग आपकी प्रोफाइल से आपका जन्मदिन, आपका मोबाइल नंबर, आपके परिवार की जानकारी इकट्ठा करके आपके पासवर्ड का अंदाजा भी लगा लेता है। अगर आपको कुछ ऐसे संकेत दिखते हैं तो आप जरूर सतर्क रहिए। अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आना, आप इनाम जीत गए हैं जैसा मैसेज आना, बैंक या लोन का ऑफर सोशल मीडिया से, किसी करीबी के नाम से अचानक पैसे मांगना, संदिग्ध लिंक। याद रखिए, हर प्रोफाइल असली नहीं होती। सोशल मीडिया को आखिर सुरक्षित कैसे रखें? आपकी प्रोफाइल प्राइवेट होनी चाहिए, मजबूत और अलग पासवर्ड होना चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू होना चाहिए। अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, अपनी लोकेशन सार्वजनिक रूप से पोस्ट न करें, निजी दस्तावेज या पहचान संबंधी जानकारी साझा न करें। महिलाओं और छात्रों को मैं कुछ खास सलाह देना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर अक्सर महिलाओं को फर्जी प्रोफाइल से परेशान किया जाता है, छात्रों को फर्जी स्कॉलरशिप या जॉब ऑफर दिया जाता है, इसलिए अनजान लोगों से चैटिंग में सावधानी रखें। फोटो और वीडियो सोच समझकर शेयर करें, ब्लैकमेल होने पर चुप न रहें। अगर सोशल मीडिया फ्रॉड हो गया हो तो आपका अकाउंट हैक हो जाए, कोई फर्जी प्रोफाइल बन जाए, ब्लैकमेल किया जाए, तो आप तुरंत 1930 पर कॉल करें और आप अपनी शिकायत www.cybercrime.government.in पर भी जाकर कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा की अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर जा सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े 7 ऐसे नियम मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हैं। कम से कम निजी जानकारी शेयर करें, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, मजबूत पासवर्ड रखें, संदिग्ध लिंक से बचें, लोकेशन सार्वजनिक ना करें, शक हो तो तुरंत उसे रिपोर्ट कर दें। श्रोताओं, सोशल मीडिया हमें जोड़ता है, लेकिन सावधानी के बिना नुकसान भी पहुंचा सकता है। लाइक और शेयर से पहले एक बार जरूर सोचें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। कार्यक्रम से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानी जरूर बरतें। जैसा कि बताया गया कि हर किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। अगर आपने अपना पासवर्ड कमजोर बनाया है तो ऐसा करें कि उस पासवर्ड को स्ट्रांग बनाकर रखें। अपनी प्रोफाइल किसी के साथ साझा न करें। अगर आप अपनी फैमिली के साथ पोस्ट भी कर रहे हैं अपनी फोटो, तो कोशिश करें आप लोकेशन वहां पर ना साझा करें। अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है जिसमें पैसे की लेन देन के बारे में बात हो रही है, तो उसे इग्नोर करें। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी उकसाते हैं, तो उन चीजों से बचकर रहें। जितनी सावधानी आप बरतेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो एक बार जरूर सोचें कि शायद ये सोशल मीडिया आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, तो उतना ही इस्तेमाल करें जिससे आपको कोई परेशानी ना हो।
0: तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जो जानकारी सुनी इस पे आप जरूर अमल करेंगे, गौर करेंगे और इन छोटे छोटे बिंदुओं को अपने जीवन में आप जरूर उतारेंगे। और भैया, ईच वन टू कीच वन, आप भी अप्लाई करें, औरों को भी करवाएं। तो ये छोटी सी जानकारी इस प्रोग्राम के जरिए, जिसका नाम है सोच बदलो, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम यहीं पर अटके रह जाएंगे, क्यों कुमकुम? तो इसीलिए हमारा मुद्दा भी यही है कि सोच बदलना जरूरी है, और सोच बदलने के साथ साथ छोटी छोटी चीजों का बदलना जरूरी है, डेली रूटीन की हैबिट को बदलना जरूरी है। अच्छा, मान लो कुमकुम, आज हम सोशल मीडिया सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जहां दिन भर में तमाम 50 फोटो हम शेयर करते हैं, 100 लाइक्स हमारे पे आती है, नहीं आती है तो बड़े डिप्रेशन में हो जाते हैं, यार मेरे पड़ोसन की फोटो पे 50 लाइक आए हैं, मेरे पे 2 ही आए हैं, ये सोच के भी लोग तनाव में चले जाते हैं।
1: जी हाँ, बहुत सारी लेडीज भी ऐसी होती है, बहुत सारे पड़ोसी भी ऐसे होते हैं कि हाँ भाई ये उठ रहा है और हम नहीं उठ रहे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: ऐसा सोच के। अच्छा, मान लीजिए अगर आनंद जी आपको वो इंस्टाग्राम पे कोई लिंक सेंड करे कि हाँ आपने 50 लाख की लॉटरी जीती है और आपका भाग्य खुल चुका है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे?
0: देखो यार, अगर 50 लाख की लॉटरी या 25 लाख की लॉटरी का मेरे को कोई मैसेज आता है और वो कहेगा कि पहले लिंक क्लिक करो, तो मैं एक्साइटमेंट तो सबको होगी, मैं जरूर सोचूंगा, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है वो 50 लाख का मुझे लालच दिया जा रहा हो।
1: जी हाँ, ऐसा मेरे भाई के साथ भी हो चुका है।
0: अच्छा?
1: तो पक्का बोला था, मतलब? कि आपकी लॉटरी में बाइक निकली है।
0: कौन सी वाली थी, स्प्लेंडर या कौन सी?
1: सुपर बाइक।
0: सुपर बाइक या केटीएम बाइक?
1: नहीं, सुपर बाइक थी वो, एक जो कि यहाँ नहीं था, इंडिया से बाहर का था, उसमें बोला गया था कि आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आके ले लो और 15,000 रुपए पहले जमा कर दो।
0: अरे बाप रे, तो मतलब ये तो धड़ाधड़ वाला धोखाधड़ी था यार। तो मतलब किया तो नहीं भाई ने ऐसा?
1: नहीं नहीं, यहाँ ने बोला कि आप हमारी पहले बाइक खुद लेके आओ, अगर आप हैंड टू हैंड देंगे तब हम आपको दे देंगे।
0: ओके, तो ये तो चलिए अच्छा बोला भैया ने, थैंक गॉड। तो इससे कहीं ना कहीं आप बच गए
1: जी,
0: है ना। दोस्तों ऐसे आए दिन हमारे साथ भी होते हैं, और जैसे इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपके इंस्टाग्राम पे रैंडमली कोई मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन आप जीत चुके हैं 10,00,000 रुपए का लॉटरी पैकेज, इस पे लिंक पे क्लिक करें एंड अपने अकाउंट में जल्दी से विड्रॉल करें पेमेंट, तो आपको ना ये बेवकूफी नहीं करनी है, आपको सावधान और सतर्कता के साथ स्मार्टनेस के साथ काम करना है, आपने उस लिंक को इग्नोर करना है। रिसेंटली 2 दिन पहले ही मेरे इंस्टाग्राम पे आया था रिक्वेस्ट में, बट मैंने उसको डिलीट किया, और मैंने एक दो लोगों से पूछा भी, क्योंकि कभी कभी होता है हमें चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हमने कोई लॉटरी खेली नहीं है तो हम जीतेंगे कहां से, सबसे बड़ा क्वेश्चन। दूसरी बात यह है, अगर आपने जाने जाने में ऐसे लिंक पे क्लिक कर भी दिया तो बॉस आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाएगा, जो आपकी मेहनत की कमाई है वो भी कैसे लूट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहते हैं ना दोस्तों, लालच से बचिए और समझदारी को अपनाइए, बहुत जरूरी है। फिलहाल एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम की ओर से ये आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो जो आपको कहता है सोच बदलिए, अपने इरादों को बदलिए और थोड़ी सी नई सोच को अपनाइए, है ना, स्मार्ट सोच को अपनाइए। आप सिर्फ पुरानी चीजों पे नहीं रहना है, स्मार्ट सोच का मतलब यही है कि जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा स्मार्ट बनाइए। जैसे डिजिटल हम सोचते हैं ना कि यार सब चीजें आसान हो जाएं, वैसे थोड़ा सोच को भी आसान बनाइए। बहुत ज्यादा अगर थका दोगे तो कहीं ना कहीं जाने जाने में लिंक पे क्लिक कर दोगे, और लिंक पे क्लिक किया तो लॉस हो जाएगा, क्यों
1: जी। राइट, आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है, जिससे कि आप खो ना जाए।

0: बिल्कुल जी, मैं भी यही कहता हूँ अक्सर अपने इंस्टाग्राम को देख के कि तू है जहाँ मैं हूँ वहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम के बिना तो यार बड़ा अधूरा सा लगता है यार कुमकुम। अगर एक दिन भी रील ना डालो, फोटो ना डालो, तो ऐसा लगता है यार कुछ तो मिस था आज के दिन में। बट वही चीज अगर हम गड़बड़ कर देते हैं तो वो हमारे लिए घातक भी हो जाती है। रिसेंटली किस्सा बताता हूँ, मेरे पड़ोस में एक फैमिली के यहाँ पे शादी थी और वो लोग बाहर जा रहे थे शादी सेलिब्रेट करने, बट उनका एक बेटा जो भाई साहब सोशल मीडिया पे हर एक अपडेट डालता है, मतलब छोटी छोटी अपडेट, अब ये अपडेट उनके ऊपर भारी पड़ गई। उन्होंने सारी लोकेशन वगैरह सब डाल दी कि हम दो दिन के लिए शादी में जा रहे हैं, ये वो। अब उसके बाद जो उनके हेटर्स हैं, या यू कह सकते हैं जो मौके की फिराक में थे, उन्हें मौका मिला, घर में जाके चोरी कर ली। अब उससे बहुत बड़ा लॉस हो गया परिवार को जब ये पता लगा। तो सिर्फ किस वजह से हुआ? सोशल मीडिया की वजह से। तो सोशल मीडिया जितना अच्छा है ना गाइस, जितना आपको हैपनिंग और प्यारा साउंड करते हुए नजर आता है, जितने हम खुश दिखाई देते हैं, एक्चुअल में उतने होते नहीं है। वेरी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको लिटरली बताऊं कुमकुम, कुछ चीजें तो सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखावा चल रहा है ना?
1: आजकल दिखावे की दुनिया है।
0: है, आई नो दैट, बट इस दिखावे की दुनिया में जो फेक चीजें उनसे भी बचना है यार, नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। और चलते चलते मैं और कुमकुम जो है बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी आसान बनाता है, लेकिन छोटी सी गलती हमें बड़ी परेशानी में भी डाल सकता है। एग्जैक्टली, तो बस याद रखिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, जो आप कर रहे हैं अच्छे से करिए, लेकिन हर चीज को अपलोड मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी फोटो का कौन गलत इस्तेमाल कर ले। AI का जमाना है आजकल, तो वैसे भी गर्दन किसी और की होती है, बॉडी किसी और की होती है, तो उसका शिकार आप ना हो, हम ना हो, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ी सतर्कता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, फिर और मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तब तक के लिए मैं आरजे आनंद लेता हूँ आपसे इजाजत, अनुमति, और कुमकुम आप भी चलो बाय करो।
1: बाय।
0: बस भी इतना ही बोलेगी, अभी उसको ज्यादा थोड़ा सा जो है मतलब सीखने की जरूरत है, अभी उसको ज्यादा आ नहीं रहा है, इसने प्यार से बोला बाय। चलो ठीक है, चलो मैं अपना थैला उठाता हूँ, लाओ। अरे मेरा ये फेस वॉश तो रख दो। अरे बाबा मेरी सनस्क्रीन भी रखो इसमें। एक तो गाइस धूप बहुत हो रही है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप घर से बाहर जा रहे हैं ना, तो अपने थैले के अंदर सनस्क्रीन और ये काला चश्मा। मेरा चश्मा कहाँ गया यार? कुमकुम मेरा चश्मा है क्या? अच्छा ये, हाँ। तो गाइस आप लोग भी अपना चश्मा, पानी की बॉटल और ये सनस्क्रीन सब अपने साथ रखिए, और ख्याल रखिए, और डिजिटली थोड़ा सा एक्टिव रहिए, बट सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ।
1: आपके हाथ में
0: क्या बात है, बिल्कुल मेरे हाथ में मेरा थैला दो। चलो बाय गाइस।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस मैं यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
5: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
4: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
5: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
4: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर। और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
0: क्या बात है।
1: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
0: जी जी, प्लीज।
1: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: ब्यूटीफुल।
1: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: वाओ।
1: उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
0: क्या बात है।
1: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या?
0: जी,
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
0: हाँ जी।
1: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
0: हाँ जी।
1: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
0: Alright.
1: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। सो समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
0: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें जब न्यू बॉर्न बेबी होता है?
1: जब बेबी डिलीवर होता है, एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
0: जी जी।
1: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी जी।
1: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
0: जी जी जी।
1: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती हैं। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धोके ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
0: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
1: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इन अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
0: दिस इज कंगारू मदर केयर, आई थिंक
1: सॉर्ट ऑफ, इट्स अ डिफरेंट थिंग।
0: ऑलराइट।
1: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
0: जी।
1: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है। तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है। कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से या सीजरियन डिलीवरी से होता है तो
0: जी, जी।
1: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
0: ओके
1: ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
0: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
1: बेबी को 2-3 आवर्ली, इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स में
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: उनको नहीं पता
0: नहीं
1: होता
0: पता
1: है वो
0: होता
1: क्या
0: है।
1: करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
0: जी।
1: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
0: ओके
1: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
0: हाँ
1: उसमें हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही है तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही है तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाना, उसको अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाना।
0: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है ना, तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
1: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
0: कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
1: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोस ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
1: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
0: ठीक है,
1: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: ठीक है, तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहना रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
1: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
0: जी,
1: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ठीक है।
0: हाँ
1: तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चों को।
0: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
1: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट टाइम में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सिवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बोर्न के ऊपर ढेर सारी बात कर रहे हैं, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
1: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है। उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर हैं। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कतें हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
0: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा। श्योर, और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश नहीं है जाते जाते?
1: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत,
0: हाँ
1: जी, किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना
0: जी।
1: अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
0: हाँ जी हाँ,
1: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती है तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी, तो वो ठीक नहीं है। तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए
0: जी।
1: कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
0: बिल्कुल सही कहा,
1: क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें,
0: बिल्कुल,
1: और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: कंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
4: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
6: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन

0: आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ प्राची और मेरे साथ हैं आरजे आनंद।
3: हेलो प्राची, हाउ आर यू?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं आप बताइए, आप?
3: मैं अच्छा हूँ। आज तुम मुझे कौन से प्रोग्राम में लेकर आ गई हो? ये
2: आज मैं आपको लेकर आई हूँ महिला मंच, हमारा जो प्रोग्राम है और आज हम करेंगे ढेर सारी बातें।
3: अरे वाह, महिला मंच में पुरुष मंच भी खोल दिया आज आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगा कि मेल फीमेल सब बराबर है और सबको सबके प्लेटफॉर्म पे जाने का राइट है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: तो थैंक यू इनवाइटिंग मी वंस अगेन, और आज आनंद भी आपके साथ रहेगा और आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो घर और दफ्तरों की दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं।
2: आज की महिला डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, शिक्षक भी है और अधिकारी भी है, और हमारी बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जो बिजनेस वुमेन बन के उभर रही है, लेकिन इन कामयाबियों के पीछे उनकी संघर्षों की एक लंबी कहानी छिपी है।
3: बिल्कुल, तो आइए समझते हैं कामकाजी महिलाओं की चुनौतियों को और उनके हौसले को सलाम करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। क्यों प्राची?
2: हाँ बिल्कुल।

0: जी मैंने सोचा हम ही आपका वेलकम बैक कर लेते हैं। सभी सखियों को, भाभियों को और जितने भी पुरुष सुन रहे हैं उन भाइयों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। दीदी जी कैसी हैं आप? और प्राची जी आप बताइए, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और माइक को हिला रही हैं भाई।
1: मैं तो हूँ एकदम बढ़िया। और हम बात कर रहे हैं आज महिलाओं मंच की। हम अपनी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे स्ट्रगल करती हैं पूरे दिन भर, और ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों दोनों को बहुत अच्छे से निभाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा प्राची तुमने। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लेडीज ना हर काम में एक्सपर्ट हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चल रही हों, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एक हमारी महिला सुबह उठती है तो उसका दिन घर की जिम्मेदारियों से शुरू होता है। परिवार का ध्यान रखना होता है, उन्हें बच्चों की भी देखभाल करनी होती है, और समय पर ऑफिस पहुंचना, ये सारी चीजें कहाँ आसान होती है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: मुझे भी नहीं लगता है ये तो बिल्कुल आसान है। स्पेशली आजकल की मम्मियों के लिए तो बहुत टिपिकल है, बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आजकल तो मम्मियां भी वर्किंग हो गई हैं, है ना? बच्चों को संभालना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, उसके बाद ऑफिस भी करना, फिर वापस घर आके घर को भी मेंटेन रखना, तो इट्स नॉट इजी प्राची। आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। बट बिल्कुल कई बार कार्यस्थल पर भी उन्हें खुद को साबित करना होता है कि भैया पुरुषों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है कई बार हमारी महिलाओं को, और साबित उन्हें ये करना होता है कि भैया हम भी किसी से कम नहीं है, हम अपने कार्य क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए हर एक चुनौती का सामना कर रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आरजे आनंद जी आपने। और समाज की सोच भी, आपको पता है कई बार लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो उनके लिए एक तरह से एक हर्डल बन जाता है।
0: आई एग्री।
1: आज भी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि हमें लेडीज को घर तक ही लिमिटेड रखना चाहिए, पर हमारी महिलाएं घर और ऑफिस दोनों को अच्छे से संभाल रही हैं।
0: नहीं, ये बहुत अच्छी बात है प्राची, और मुझे लगता है अब खैर जमाना बहुत बदल गया है, लेकिन कुछ ग्रामीण एरियाज, कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जहां पर अपना एक रिचुअल्स बना हुआ है, एक रिचुअल्स चलता हुआ आ रहा है कि उनकी घर की बीबी है, जो उनके घर की महिलाएं हैं, वो घर से बाहर काम काज करने के लिए नहीं जाती है या फिर वो नहीं जाएंगी। और देखिये हर किसी का अपना अपना एक रिचुअल्स होता है, हर किसी की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर घर की महिलाएं कुछ काम काज करेंगी तो शायद वो अपने फ्यूचर में थोड़ा सा और अच्छा कर पाएंगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होंगी, और कहीं ना कहीं नया कंट्रीब्यूट हमारे समाज के लिए कर पाएंगी। क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात है कि हमारी महिलाएं इतनी टैलेंटेड होती हैं, इतना उनमें पोटेंशियल होता है। जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो इस तरह से वो परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत अपना बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करती है।
0: एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि वो अपने करियर को और अपने काम को दोनों को ही बहुत अच्छे से मेंटेन करती है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो मतलब मुझे लगता है कि प्राची आज हम विमेंस की बात कर रहे हैं महिला मंच में, और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो अक्सर महिलाओं को जब वो घर से बाहर निकलती है तो उन्हें फेस करने पड़ते हैं, वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं आज उस पर बात करेंगे, और क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उससे पहले प्राची कुछ कहना चाह रही हो, प्लीज सी समथिंग।
1: आपकी बात सुन के, आपने जो बात कही कि महिलाएं सारा काम अच्छे से कर पा रही हैं, और ये वो इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि उनके अंदर जो आत्मविश्वास है, जो उन्होंने हौसला अपने अंदर भर के वो चल रही हैं कि उन्हें रुकना नहीं है। तो उन महिलाओं को सम्मान देते हुए एक शायरी मुझे याद आ रही है।
0: वाह वाह।
1: हौसलों की उड़ान रखती हूँ, हर मुश्किल का समाधान रख, मैं नारी हूँ जनाब, अपने भीतर पूरा आसमान रखी हूँ।
0: वेरी नाइस। आज मैं ऊपर, आसमानी, बस इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं महिला मंच, ये है बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, और ये है आपकी शहर का अपना प्यारा रेडियो
1: FM मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो।
1: बजाते रहिए,
0: गुनगुनाते रहो। चलो जी अभी मिलते हैं एक छोटे से गाने।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन. यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम है महिला मंच. यहाँ पर महिलाओं की राइट्स की बात होती है, उनके अधिकारों की बात होती है. और आज इस महिला मंच में पुरुषों को भी यहाँ पर बुला के लाया गया है कि आप भी आइए और आप भी जरा बताइए कि काम काजी महिलाओं के लिए, तुम पुरुषों को जो लगता है ना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत ईजी होता है हर काम, सिर्फ मर्द को ही मुश्किल लगता है, बट ऐसा नहीं है. हम लेडीज को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्यों प्राची?
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने.
0: देखिए, कोई भी काम करना प्राची मुश्किल तो नहीं है, है ना? अगर इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, पोटेंशियल है, अगर उसके इरादे मजबूत हैं, तो चाहे लेडीज हो या पुरुष हो, बहुत अच्छे से अपने काम को कर पाते हैं. बट वही है, सपोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: हाँ, सपोर्ट बहुत जरूरी है. अगर हम उन्हें सपोर्ट देंगे, उनके काम को अप्रिशिएट करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगी.
0: करेक्ट. कामकाजी महिलाओं के सामने एक और चुनौती है, मैं आपको सच बताऊं तो, और ये देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती यही है, वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी समय का संतुलन. वो अपने सपनों को भी जीना चाहती हैं, अपने परिवार की उम्मीदों को भी पूरा करना चाहती हैं, लेकिन उसी बीच एक चैलेंज उनके लिए सबसे बड़ा हो जाता है, वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को मेंटेन करना ही अपने आप में एक बहुत चैलेंज है.
1: टाइम मैनेजमेंट, वो जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट करती हैं, यही चीज जो है उन्हें बहुत ज्यादा खास बनाती है.
0: Correct.
1: क्योंकि वो अपने बहुत खूबसूरत बात कही, वो अपने ऑफिस की भी अपना बेस्ट देना चाहती हैं और घर की, परिवार की जो उनसे उम्मीदें हैं उन्हें भी पूरा करना चाहती हैं. तो ये जो बात है, इसके लिए जरूरी है कि हमें ऐसी वुमेन, जो भी हमारी ऐसी वुमेन है आसपास, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए उनके काम को.
0: करेक्ट, राइट राइट राइट. कहते हैं दोस्तों, थक जाती है कभी कभी मगर रुकती नहीं है, कि थक जाती है कभी कभी मगर रुकती नहीं है, आंधियों के सामने भी झुकती नहीं है. उसके कदमों में छुपी है एक नई कहानी, उसके कदमों में छुपी है एक नई कहानी. वो कामकाजी महिला है जो हार मानती नहीं है, मेरे भाई. और बिल्कुल, हमें महिलाओं को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्यों प्राची?
1: बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात आपने कही. हमें ऐसी महिलाओं का सम्मान करने की जरूरत है और उन्हें सपोर्ट भी देने की जरूरत है, ताकि वे अपने सपनों की उड़ान को और ऊंचा भर सके.
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी एक ऊंची उड़ान भरेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद. जल्दी वापस मिलेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे. आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो.
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो.

0: जी दोस्तों, वेलकम बैक है आपका। और आप सुन रहे हैं महक पंच। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं आरजे आनंद।
1: क्या बात है प्राची, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, महिला मंच में आके मुझे बहुत मजा आ रहा है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें अपनी घर की विमेंस की, अपने घर की महिलाओं की, तो अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हो जाता है। लेकिन आजकल तो खैर प्राची, हमारी घर की विमेंस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। तुम्हें पता है ना, जैसे आजकल महिलाओं को बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना आसान बना दिया हमारी घर की महिलाओं के लिए। बहुत सारे द्वार खोल दिए हैं। आप घर से जो लोग अचार बनाते हैं वो घर से ऑनलाइन अपने अचार को सेल्स कर सकती हैं, मतलब अपने अचार को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकती हैं। घर बैठे बैठे मार्केट तक, लोगों तक पहुंचा सकती हैं। कोई अच्छी सिलाई करती हैं, कोई अच्छा बुनाई करती हैं, अच्छी कढ़ाई करती हैं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं महिलाओं को आसान बना रही है, उनके काम को थोड़ा आसान बना रही है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी आ गई हैं।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं, जब से ये डिजिटल दुनिया का दौर शुरू हुआ है, तब से वो अपने काम को, जो भी उनके तरफ पोटेंशियल है, कोई अच्छा डांस करती है, कोई अच्छी सिलाई करती है, अच्छी बढ़िया बढ़िया
1: कोरियोग्राफी करती हैं, बहुत बढ़िया है ना। और कुछ वीमेन्स बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो रेसिपी बनाना सिखा रही हैं। और कुछ महिलाएं बहुत अच्छी टिप्स देती हैं, स्किन के घरेलू रेमेडीज बताती हैं। तो सोशल मीडिया ने, तुम्हारे कहने का मतलब है, बहुत इजी कर दिया उनके टैलेंट को आगे पहुंचाने के लिए ना।
0: बिल्कुल, सोशल मीडिया एक बहुत ही, कह सकते हैं हम, एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बन गया है, ऐसा सशक्त माध्यम जो महिलाओं को बहुत आगे लेकर जा रहा है।
1: कॉटन, मुझे भी लगता है दोस्तों। और आजकल महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी आ गई हैं, क्योंकि महिलाएं हमारी किसी भी क्षेत्र में आप उठा लीजिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और आजकल महिला हो या पुरुष, हर किसी को अपने लाइफ में, हर किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का राइट है, अपने सपनों को जीने का राइट है। क्यों प्राची?
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की।
1: चलिए तो एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एंड वी कम बैक विद यू आनंद एंड प्राची।
0: यस।

0: ही मकसद है देश की रक्षा, उसके लिए सबसे पहले आप सबको एक सिपाही बनना पड़ेगा, तभी आप कॉकपिट में दाखिल होने के लायक बन पाएंगे। कल से आप सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर?
1: यस सर।
0: इज दैट क्लियर?

0: वेलकम बैक है प्राची और आनंद के साथ हैं आप। आज हम लोग महिलाओं की राइट्स की बात कर रहे हैं, महिलाओं की उन कामकाजी विमेंस की बात कर रहे हैं जो अपने टैलेंट को अब बहुत इजीली लोगों तक पहुंचाती हैं। और आज हम उन सभी टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं जो हमारी विमेंस के लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन जब वो दिल से करती है ना तो उनके लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। राइट प्राची?
1: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और डिजिटल मीडिया ने महिलाओं को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खोल दी हैं। और बड़ी बड़ी वो बिजनेस अपने जो भी उनके अंदर स्किल था, आज उन स्किल्स को वो बहुत आगे बढ़ लेकर जा रही हैं। और बड़ी क्या बोलते हैं, एक तरह से एक बहुत ही बड़ा उन्होंने अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर रही हैं वुमेन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे।
0: एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि हर वुमेन्स की अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक संघर्ष की कहानी है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। हमारी मम्मियों को देख लो यार, जिन्होंने कभी बस कलर टीवी पे रंगोली देखी थी, आज वो भी इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दे रहे हैं, है ना। वेल, मेरी मम्मी तो खैर नहीं करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो हमें और डांटती है कि फोन में घुसे रहोगे, इसके बाहर भी निकल के देखोगे। मैंने आजकल की मम्मियां बहुत एक्टिव होती है, अच्छी अच्छी हमारी मॉम्स को रेसिपी, अचार और पापड़ और ना जाने कितनी सारी चीजें आती है। और जब वो सोशल मीडिया के थ्रू लाखों लोगों तक सर्कुलेट करती है तो उन्हें जो खुशी मिलती है ना, उन्हें देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है।
1: बिल्कुल, जो उनका जो फील।
0: के लिए स्टे ट्यून्ड टू
1: FM मुरादाबाद 89.6।
0: बाय बाय
1: बाय बाय।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। पूरी पूरी उम्मीद है कि आज आप होंगे सब मस्ती में और इस समय ले रहे होंगे आनंद। थोड़ी हवा चल रही है, थोड़ी सी धूप है और कहीं कहीं थोड़ा से बादल हैं। फरमाइशों की दुनिया में आज आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम करेंगे आपकी फरमाइशें पूरी, जहाँ आपकी पसंद चलेगी, आपकी आवाज बजेगी और आपके गाने पर पूरा शहर झूमेगा। मैं हूँ आपका अपना अखिल और आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश। आज के नियम जो है ना, बिल्कुल सिंपल है भाई, बिल्कुल ही सिंपल। आप फरमाइश कीजिए, हम गाना बजाएंगे। आप मैसेज भेजिए, हम नाम के साथ करेंगे। और हाँ, अगर कोई मजेदार किस्सा है तो वो भी पूरे शहर को सुनाएंगे। तो मोबाइल उठाइए, मैसेज कीजिए 9837896896 पे। जो भी आज आपका मूड है ना, कैसा भी मूड हो, प्यार वाला हो, चिल वाला हो या फुल मस्ती वाला हो, हाँ भाई थोड़ा सा उदास होगा ना तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ। याद रखिए, हेलो फरमाइश में कोई भी रिक्वेस्ट ना छोटी नहीं होती, और क्योंकि आपका एक एक मैसेज हमारे लिए पूरी कहानी ऐसा होता है। तो अभी हम करते हैं अपने पहले लिसनर से बात, देखते हैं उनकी क्या है फरमाइश। हेलो, हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं इस समय? आप अपना नाम बताइए हमारे श्रोताओं को और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइए।
1: मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल।
0: जेठालाल जी, आज आप दिन में इस समय क्या मस्ती हो रही है आपकी? खाना वाना लंच हो गया आपका?
1: मस्ती कर रही है, आपने बहुत गर्मी करा रखी है, कोई ऐसा
0: साहब गर्मी है तो गर्मी का भी सोल्यूशन है, हाथ में ठंडा पानी ले लीजिए, गिलास गिलास ठंडा ठंडा गिलास का पानी, या फिर पंखे के नीचे बैठ जाइए, कूलर के आगे आ जाइए। ये तो आपके ऊपर है, आपको कहाँ आगे पीछे लेटना है, मगर आसपास उन्हें अपने पास रखिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, और अगर आप बढ़िया बढ़िया गाने सुनवाते रहेंगे तो ऐसा मौसम भी हमारा क्या कर लेगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? आज आपसे फरमाइश शुरुआत होगी हमारी।
1: जिसको हमने अपना संख्या वो निकला बेगाना।
0: क्या बात है, जिसको आपने अपना समझा वो निकला बेगाना, उसके आगे
1: वो निकला बेगाना, शीशा जैसे टूट गया दिल,
0: शीशा जैसे टूट गया दिल,
1: तो उसके आगे हमें नहीं, हम कह नहीं सकते, अब आप ही समझ जाओगे।
0: चलिए साहब, आपके देखिए, जो एक बार शीशे में चटक आ जाती है ना, वो थोड़ी आसानी से तो जाती नहीं है, ये तो आपको पता है। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम फिर से दोबारा से नया शीशा ही बने, जो ना चटके दोबारा, और आसपास देखते रहें एक दूसरे को।
1: एक बात कहें सर।
0: हाँ हाँ, पहले आप गाना बताइए।
1: गाना के बताया था ना हमने आपको,
0: एक बार फिर से बता दीजिए साहब, सबको पूरे पूरा शहर सुनना चाहता है कि आज फरमाइश का कौन सा गाना है आपका।
1: ओ बेवफा फिल्म का गाना है।
0: ओके, जिसको आपने अपना समझा वो निकला, किसे डेडिकेट करेंगे ये गाना आप?
1: अरे हम तो सबको करेंगे, पहले तो आप ही हैं, हम तो पहले आपको समझते हैं, आप ही हमें बेगाना समझते हैं।
0: नहीं नहीं साहब, हम क्यों आपको बेगाना समझेंगे। तो आप अभी कुछ कह रहे थे, बताइए जेठालाल जी, जल्दी बताइए।
1: हम तो समुद्र की लहरों से भी लड़ जाते हैं, हम तो समुद्र की लहरों से भी लड़ जाते हैं, वो यार कश्ती को तो उसने डुबाया जिसे हमने साहिल समझ लिया।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप इस समय। मुझे लग रहा है कहीं आसपास डूबे डूबे से आए हो आप
1: है?
0: कहीं आसपास से ऐसे मौसम से आए हो आप जहाँ डूबा डूबा हुआ है समा।
1: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए सर, आपकी फरमाइश पूरी करते हैं जेठालाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, हमसे जुड़े थे सबसे पहले कॉलर जेठालाल जी, और इन्होंने अपनी जो फरमाइश करी है उसको फटाफट प्ले करते हैं, उसके बाद आपकी कॉल भी रिसीव करते हैं और आपकी फरमाइश।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद पे। हेलो फरमाइश चल रहा है इस समय 89.6 मेगाहर्ट्ज़, और हमारे साथ एक लिसनर और जुड़े हैं। चलिए उनकी भी सुनते हैं फरमाइश क्या कहते हैं वो। और सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि आज जो आपकी हेलो फरमाइश पे गाने बजेंगे वो आपकी चॉइस होंगे। अगर आप किसी को बर्थडे विश करना चाह रहे हैं, या किसी को एनिवर्सरी, या किसी के लिए कोई मैसेज भी कहना चाह रहे हैं, तो ज़रूर हमें कॉल करें, उसका नाम बताएं। अगर हुआ तो हम उसे कॉल करेंगे और आपकी तरफ से विश भी करेंगे और उनका मनपसंद गाना भी प्ले करेंगे। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा आज का ये शो। तब तक करते हैं बात अपने नए लिसनर से। हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका? क्या नाम है मैम आपका?
1: आदाब सर।
0: आदाब जी, आदाब।
1: क्या आप?
0: मैं बढ़िया हूँ। क्या कर रही हैं आप इस समय?
1: हम आपको सुन रहे थे।
0: आप हमें सुन रहे थे, तो कुछ आप भी सुनाइए आज। आपकी फरमाइश भी सुननी चाहिए ना लोगों को, कम से कम कुछ तो पता चले कि आपके अंदर क्या स्पेशल है। क्या बात है, क्या बात है। तो आज हम अपने एक आरजे से बात कर रहे हैं। तो आप जो शो करती हैं वो,
1: अपना नाम बताना चाहूंगी।
0: हाँ हाँ, जरूर बताइए।
1: आरजे कहते हैं कि भरे तो करते हैं कलियों की चोरी, लेकिन देखो चुराना काम है मेरा। भरे तो करते हैं कलियों की चोरी, लेकिन देखो चुराना काम है मेरा। हर शख्स को देती हूँ मोहब्बत की कली, यही तो इनाम है मेरा।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो शमा परवीन जी नाम है आपका, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर नाम है। तो आज आप कौन से गाने की फरमाइश लेके आई हैं और कौन सा गाना सारे लिसनर्स के लिए डेडिकेट करना चाहती हैं? क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप इस अवसर पे? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये गाना जरूर ले रहे हैं। किसी के लिए डेडिकेट है या सभी जितने आपके चाहने वाले हैं श्रोतागण, उन सभी के लिए डेडिकेट है? चलिए ठीक है, तो सभी को हमारी तरफ से भी ये गाना, आपकी तरफ से भी ये गाना डेडिकेट करते हैं। और खूब मस्ती करिए, खूब मजे कीजिए। तो श्रोताओ, हमारे साथ आज जुड़ी थी एक और आरजे, और उन्होंने भी अपनी फरमाइश का आज कह दिया कि मैं तो सबकी फरमाइश के गाने प्ले करती हूँ, आज आप मेरी फरमाइश का भी एक गाना प्ले कर दीजिए। तो ज़रूर हम उनकी फरमाइश को पूरी करते हैं। अगर आपकी भी ऐसी कोई फरमाइश है ना, और आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं कोई भी गाना, या किसी को कुछ भी विश करना चाहते हैं, तो ज़रूर 9837896896 पर कॉल करें और विश करें। तो इनके गाने के बाद आते हैं दोबारा और आपसे जुड़ते हैं इसी FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: खदमा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हेलो, फरमाइश शो चल रहा है और आप लोगों की फरमाइश जो है पूरी की जा रही है। साफ फरमाइश तो पूरी होनी चाहिए क्योंकि फरमाइश होती ही पूरी करने के लिए है। बात करते हैं अपने नए लिसनर से, देखते हैं क्या फरमाइश है उनकी। हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका मैम?
1: सर, मैं निकट फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: निकट फातिमा जी, इस समय कैसा मौसम है आप जहाँ पर हैं इस समय?
1: सर, मौसम तो अच्छा है, हवाएं चल रही हैं, कभी कभी धूप भी खिल रही है।
0: कभी कभी धूप भी खिल रही है।
1: हाँ सर।
0: तो आप विटामिन डी ले रही हो मतलब?
1: हाँ सर।
0: तो आज क्या फरमाइश है जो आपकी पूरी की जाए? कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? और
1: सर, मूवी का नाम रहेगा दीवाना और उसमें बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं।
0: ज़रूर ज़रूर, गाना तो आपने बहुत ही अच्छा कहते हैं चुना है और बहुत ही बढ़िया गाना है। तो कोई शायरी भी सुना दीजिए फातिमा जी।
1: फिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, फिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, जरा सी लफ्ज़ पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, तो ऐसे वैसे से भी रिश्ता बना के रखना कमाल ये है, किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने कब भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने कब भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है।
0: क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत ही सुंदर शायरी पढ़ी आया। तो आज इस गाने को जो आपने फरमाइश में करा, इसकी कोई खास बात जो आपको बहुत पसंद है गाना, या फिर जिसके ऊपर पिक्चर आया गया है शाहरुख खान और दिव्या भारती के ऊपर, वो दोनों आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस?
1: सर, आपने पता है कब से अच्छा लगाया हमारे विरोधन ने ना इस गाने पे, और अपने फोटो लगाए थे ना, जब से इतना पसंद है, उनकी वीडियो देखी थी ना इस गाने को लेकर, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब से।
0: अच्छा,
1: हाँ सर।
0: तो इसलिए आपको ये गाना ज्यादा पसंद है?
1: हाँ सर, विरोधन वहाँ पे है ना सऊदी अरब में, दो विरोधन, तो उनकी याद आ रही थी, मैंने कहा यही सॉन्ग सुनूंगी।
0: चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए करते हैं आपकी फरमाइश को भी पूरा और सुनते हैं इस गाने।
1: हाँ सर, मेरे साथ में है मेरे दोस्त,
0: हाँ हाँ बताइए, नाम बोलिए।
1: जैसे अभी समा परवीन जी ने कॉल की थी, वो है मेरे साथ और मेरी दोस्त फिजा और सभी सुनने वाले दोस्त।
0: चलिए, आपके दोस्तों को भी ये गाना डेडिकेट, और आपके दोस्तों को भी
1: ओके सर,
0: नमस्कार।
1: थैंक यू सर, बाय
0: बाय बाय फातिमा जी। तो श्रोताओ, हमारे साथ जुड़ी थी फातिमा जी आज, और उन्होंने जो फरमाइश करी थी, ऐसी दीवानगी देखी नहीं गई। तो चलिए सुनते हैं उनकी फरमाइश का गाना बिना देर का।

0: एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका। अभी जो हम गाना प्ले कर रहे थे, ऐसी दीवानगी देखी नहीं, ये मूवी दीवाना मूवी का ये गाना था और इसमें इस पर फिल्माया गया था शाहरुख खान जी और दिव्या भारती जी के ऊपर। सिंगर थी अलका याग्निक और विनोद राठौर। म्यूजिक डायरेक्टर जो थे वो थे नदीम और श्रवण जी। डायरेक्टर जो थे इस मूवी के वो थे राज कुमार। और जो लिरिक्स लिखी है ना, ये लिरिक्स लिखी है समीर जी ने। तो गाना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास दिल के बहुत ही बेहद करीब आ जाता है और कुछ जो उसके अल्फाज या लफ्ज होते हैं वो आप खुद ही गुनगुनाने लगते हैं। तो चलिए, आप ही की फरमाइश चल रही है और हमारे साथ बैक टू बैक हमारे लिसनर जुड़ रहे हैं। तो हमारे अभी साथ जो लिसनर जुड़े हैं, चलिए उनसे पूछते हैं उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका जनाब?
1: मेरा नाम मकसूद हुसैन जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से मुखातिब हूँ जनाब।
0: तो मकसूद हुसैन जी, इस समय क्या कर रहे हैं आप?
1: लेट लग रही है, एक हाथ जो है सर के नीचे रख रखा और एक मोबाइल है, बात कर रहे हैं।
0: तो आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पे सुन रहे हैं या फिर FM उस पे रेडियो पे?
1: रेडियो पे सुन रहे हैं आपका।
0: सही है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या नाम है आपका? फरहान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? पहली में पढ़ते हो? तो आज छुट्टी जल्दी हो गई स्कूल से या अभी अभी स्कूल से आए हो? आज छुट्टी थी, आज स्कूल गए थे आप या छुट्टी थी? आज आज छुट्टी है। चलो ये बताओ फिर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे? नजरों का तीर। तो चलो जरूर करते हैं प्ले। और सुनो, जब ये गाना प्ले होगा ना तो थोड़ा सा डांस वांस भी कर लेना यार फरहान, ठीक है? चलो बाय बाय। हाँ जी, चलिए गीत थोड़ा सा, हाँ आप लोग भी करें एंजॉय, मैं करता हूँ आपके अभी फरहान जी का ये गाना प्ले। तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े थे अभी फरहान जी, जो अपने दादाजी के साथ बैठ के चारपाई पे इस समय आनंद ले रहे हैं, बढ़िया सी नींद ले रहे हैं। तो चलिए उनका गाना प्ले करते हैं जिससे उनकी नींद, उनको आराम अच्छा आए। आपकी भी कोई फरमाइश है तो ज़रूर 9837896896 पे हमें मैसेज करें या कॉल करें, या किसी को करना है विश तो भी हमें उनका नंबर भेज दें, हम उन्हें कॉल करके आज आपकी तरफ से कर देंगे उन्हें विश। तो सुनते हैं एक गाना और तब तक।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पे और आपका ही अपना शो चल रहा है हेलो फरमाइश का। हमारे पास मैसेज आया है हरप्रीत जी का। उन्होंने कहा है कि आज उनके बेस्ट फ्रेंड वरुण का बर्थडे है, प्लीज़ कोई आज उनके लिए बर्थडे से रिलेटेड कोई एक सॉन्ग उन्हें डेडिकेट कर दीजिए या फिर कोई अपने पसंद का गाना आप उनके लिए डेडिकेट कर दीजिए। तो ज़रूर हैप्पी बर्थडे वरुण जी, और हम आज के लिए आज आपके लिए चलाएंगे एक स्पेशल गाना। हमारे पास अभी एक कॉल आई थी, उनकी कॉल हो गई डिस्कनेक्ट, मगर वो बोले हैं काशी राम से सोनू जी। तो सोनू जी ने भी एक गाने की हमें फरमाइश करी है, वही गाना हम आपके लिए भी आज प्ले करेंगे जिसकी भी आपकी फरमाइश हुई। चलिए एक कॉल और आ रही है, उनसे ही पता करते हैं क्या कहते हैं हमारे। हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है मैम आपका? नेहा जी, क्या कर रही हैं अभी आप? तो बैठे हैं तो बैठे बैठे भी बहुत कुछ काम हो जाते हैं नेहा
1: प्रोग्राम
0: जी।
1: सुन रहे हैं।
0: हाँ ये बोलिए ना, हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आज क्या फरमाइश है पहले आप ये बताइए, आपकी फरमाइशें जो हैं पूरी होती रहती हैं नहीं होती रहती हैं, या सिर्फ बच्चों की फरमाइशें पूरी होती रहती हैं?
1: हमारी बच्चों की फरमाइश है, हमारी फरमाइश है।
0: क्या बात है, आपने एकदम जवाब को घुमा के एकदम जवाब दे दिया है, मस्त बोले भाई साहब। बात की बात भी रह गई और फरमाइश की फरमाइश भी हो गई।
1: कौन
0: तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप,
1: सा गाना?
0: या हम अपनी पसंद का कोई गाना प्ले कर दें फिर?
1: हाँ आप अपनी पसंद का चला दीजिए।
0: चलिए ठीक है, ये आज आपकी फरमाइश है कि हम अपनी फरमाइश का गाना प्ले कर दें, है ना? नेहा जी, इतना नेहा जी कोई शायरी या कुछ कहना चाहेंगी, बोलना चाहेंगी?
1: नहीं, शायरी में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है।
0: शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कोई बात, कोई पोएम ही सुना दीजिए जो UKG की वाली पोएम होती है।
1: पोयम सुना दो, ट्विंकल
0: हाँ कोई तो आज आप पोएम आप
1: ट्विंकल लिटिल स्टार,
0: ये भी पूरी सुनानी पड़ेगी नेहा जी, ऐसा नहीं है कि बस एक लाइन।
1: ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप हाउ आई आर व्हाट सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। थैंक
0: वेरी गुड, आपको मिलते हैं 10 में से 10
1: यू सो मच।
0: तो बहुत ही बढ़िया रहा आपने कॉल करी। चलिए एक बढ़िया सा गाना इसी के ऊपर अभी आपके लिए पेश करते हैं। ठीक है, ओके नेहा जी। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़ी थी नेहा जी, जो देखिए ना बिल्कुल एकदम हसमुख, एकदम उन्होंने आज अपने दिल से जो निकली थी फरमाइश वो कर, चलो जो आपकी फरमाइश है वही प्ले कर दीजिए। तो हम करते हैं उसको प्ले, और इतनी बढ़िया पोएम सुनाई है कि आपको शायद अपनी सारी पोएम्स जो पुराने समय की होंगी याद आ गई होगी। ट्विंकल ट्विंकल तो आज सभी को एक बार गा लेनी चाहिए। तो आप हमें कॉल करते रहिए 9837896896 पर, अपनी फरमाइश बताइए, किसी और के लिए फरमाइश तो वो भी बताइए साहब, हम हैं आपके पास पूरे पूरे 5 बजे तक। चलिए आते हैं इस गाने के बाद।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। और इस समय चल रहा है हेलो फरमाइश का दौर, जिसमें आपके मनपसंद गाने बजाए जा रहे हैं बैक टू बैक। चलिए अभी बात करते हैं जतिन जी से, जो कॉल कर रहे हैं पीतल नगरी से। पता करते हैं उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है जी, आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: सर क्या हो रहा है इस समय पीतल नगरी में? आप क्या कैसा मौसम है आपकी तरफ?
1: पीतल नगरी में अभी सुबह तक तो मौसम बढ़िया था, मगर सुबह के बाद से धूप बहुत तेज है।
0: धूप तेज हो रही है
1: जी,
0: तो कहीं उम्मीद है शाम तक फिर बादल आ जाएं और कुछ रिमझिम रिमझिम हो जाए?
1: आपकी आवाज सही से नहीं है।
0: मैं कह रहा हूँ शाम तक उम्मीद है कुछ बादल आ जाएं और फिर से रिमझिम रिमझिम हो जाए।
1: हो सकता है कि शाम को बारिश हो जाए।
0: हो सकता है
1: तो भोले बाबा का समय चल रहा है, तो ये पूरा महीना ही धूप का और बारिश का ही रहेगा।
0: क्या बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही। तो आज कौन सी फरमाइश है, कौन सा गाना है जो हम प्ले करें आपके लिए?
1: सावन सावन जीता लागे हरिद्वार में,
0: सावन सावन जीना लागे हरिद्वार में।
1: जीता लागे हरिद्वार में मासूम शर्मा है।
0: ठीक है साहब, ये करते हैं आपके लिए गाना प्ले। और कोई और बात, कोई शायरी वायरी आप कहना चाहेंगे या किसी को कोई कैसे हैं डेडिकेट करना चाहेंगे कुछ गाना?
1: शायरी वगैरह तो कुछ नहीं, पर भोले बाबा से यही विनती है कि सभी कांवरियों की सुरक्षा में पुलिस हमारी तैनात है और सभी लोग सहायता कर ही रहे हैं। बाकी भोले बाबा सभी का ख्याल रखते हैं और कांवर आ रही है। मुरादाबाद में भी जोर शोर से जाम के साथ कांवर चल रही है।
0: ठीक है साहब, तो जतिन जी करते हैं आपकी फरमाइश का प्ले और करते हैं गाना सुनते हैं। श्रोताओ हमारे साथ जतिन जी की फरमाइश आई है और चलिए सुनते हैं उनकी फरमाइश, जय हो भोले बाबा की। आज ये गाना आप सभी के लिए।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, और इस समय हो रही है आपकी फरमाइशों की लड़ियां लग रही हैं साहब। अपनी अपनी फरमाइश बताइए और आनंद लीजिए थोड़े से इस समय का। चलिए मिलते हैं नए कॉलर से, बात करते हैं क्या है उनकी फरमाइश आज। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप?
1: हेलो फरमाइश जी, बढ़िया।
0: अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइए सभी श्रोताओं को।
1: जिला मुरादाबाद कमल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी बोल रहा हूँ।
0: तो सैनी जी, आपका इस समय आज मौसम उधर कैसा है आपकी तरफ?
1: एक मौसम तो धूप निकल रही है, बस हवा चल रही है, बाकी मौसम सही है। बोलो कि मस्ती में सब झूमे हुए रहते हैं। हाँ,
0: आप ये तो है, इस समय तो भोलों की मस्ती ही कुछ अलग ही मस्ती चल रही है,
1: हर जगह जहाँ भी देखो भोले भोले दिखाई दे रहे हैं।
0: और इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको?
1: हाँ, सबसे बढ़िया मौसम चल रहा है उस टाइम, बोलो का पूरा महीना ये चलेगा ही।
0: हाँ जी, हाँ जी। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, सभी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: जी, आज फिल्म का नाम है आया सावन झूम के, गाने के बोल हैं सातिया नहीं जाना के जी ना लगे, मौसम है
0: जरूर
1: सुहाना के जी ना लगे। जी
0: जरूर जरूर जरूर, ये भी हम गाना प्ले करते हैं। और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: जी मैं अपने परिवार के नाम लेना चाहता हूँ कुछ।
0: हाँ हाँ जरूर जरूर।
1: हाँ, जैसे मीना मुन्नी पवित्रा ये आंचल आकांक्षा आकाश घाटमपुर रामपुर से राम भजन सैनी, और बाकी जितने भी सुनने वाले हैं सभी के लिए।
0: चलिए सैनी साहब, तो बहुत ही बढ़िया है, चलिए आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा आपने कॉल की।

तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे सैनी साहब, मैं कह रहे हैं भोले की मस्ती में बिल्कुल एकदम कहते हैं ना बम बम भोले। तो चलिए उनकी पसंद का गाना सुनते हैं और फरमाइश को पूरी करते हैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका। हाँ तू है, हाँ तू है, क्या गाना है साहब। के साहब ने गाया था ये गाना। और के साहब के अंदर कहते ना एक, अब तो वो हमारे बीच नहीं है, मगर क्या रुहानियत थी उनकी आवाज़ में, क्या गाते थे वो। शायद ही ऐसा कोई उनका गाना जो गाया हुआ हो जो हमारे पास नहीं गूंजता हो। कोई सा भी उनका गाना आप ट्रैक ले लें, इकबाल मूवी का ले लें, या किसी भी लेटेस्ट, अभी जैसे हमने प्ले किया था हाँ तू है, तो ये गाने कुछ ऐसे हैं उनके कि कभी कभी आप जो है ना बुलाए नहीं भूल सकते। और जैसे ही वो गाना प्ले होता है तो के साहब खुद ही मेमोराइज हो जाते हैं आपके यादों में। तो चलिए हम अपनी फरमाइश की तरफ चलते हैं और अपने नए लिसनर से बात करते हैं कि क्या है आज उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका और कैसे हैं आप?
1: अखिल भैया जी को नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कर रहे हैं साहब आप?
1: इस समय तो बैठे हैं, हवा ले रहे हैं, थोड़ा बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, मौसम में
0: थोड़ा
1: मस्ती ले रहे हैं।
0: सा बादलों को रोक के कहिए कि भाई साहब अभी बरस जाओ फिर चले आना।
1: नहीं, बारिश तो सर कल परसों हुई है, कल तो दबा दी हुई थी।
0: हाँ कल तो अच्छी हुई है बारिश। तो कौन सी फरमाइश है आज आपकी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: अखिल भैया जी, आज मूवी का नाम रहेगा नीलकमल। जी,
0: नील कमल।
1: गाने के बोल हैं, आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
0: तुझको पुकारे मेरा प्यार, क्या बात है। जरूर जरूर, किसको डेडिकेट करना चाहेंगे ये गाना, आप नाम लेना चाहेंगे किसी का?
1: ये डेडिकेट आप हैं और हम लोग हैं और जो हमारे सुनने वाले श्रोता लोग हैं, इनके लिए डेडिकेट है सब।
0: चलिए चलिए, धन्यवाद साहब, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और चलिए आपकी करते हैं फरमाइश पूरी, ये गाना आपके लिए प्ले करते हैं। श्रोताओं सुनते हैं सर की फरमाइश का गाना, और अगर आपकी भी कोई फरमाइश हो तो ज़रूर हमें कॉल करें 9837896896 पे, या फिर मैसेज करके बता सकते हैं। अगर किसी को विश भी करना है या फिर करनी है किसी की टांग खिंचाई, तो ज़रूर हमें मैसेज करके बताएं उसका नाम, और करते हैं उसको कॉल और लेते हैं थोड़ी सी फरमाइश का आनंद। तब तक सुनते हैं गाना और मिलते हैं इस गाने के बाद आप।

0: चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
1: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहां हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
0: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: हजारों रंग के नजारे बन गए, लिखे जो खत।

एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश, जहां पे बसते हैं आपकी फरमाइश के गाने, आपके दिल से निकली हुई आवाज़ों की वो तराने कि किसी को भी अगर आप डेडिकेट करना चाहें कोई गाना तो हमें ज़रूर बताएं। आज एक अभी एक मैसेज आया है मेरे पास और मैसेज भी बहुत मस्त है, थोड़ा सा जोकिंग वाला। कहते ना मौसम है, मौसम तो भले ही थोड़ा सा कभी बारिश कभी धूप वाला है, मगर जो मैसेज है वो सच में थोड़ा सा हंसी मजाक वाला है। पत्नी कहती है, सुनिए मैं कैसी लग रही हूँ। पति कहता है, बहुत ही अच्छी लग रही हो। पत्नी, सच में? पति कहता है, हाँ। पत्नी कहती है, फिर इतनी जल्दी जवाब क्यों दिया? तो पति कहता है, क्योंकि पिछली बार सोचने में 10 मिनट लगाए थे। तो साहब, अगर पति पत्नी गाड़ी में है इस समय तो एक दूसरे की तरफ मत देखेगा, वरना गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है, कहीं राइट की जगह लेफ्ट ना चली जाए। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी हमारे शहर की भी। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं जाम में या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे हो रहा है कोई इवेंट, तो ज़रूर हमें बताएं। और रही

0: इवेंट अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि इवेंट एक कल एग्जीबिशन शो हो रहा है, एक एग्जीबिशन कम सेल का फ्यूजन एंड फैशन के द्वारा तीज एवं रक्षाबंधन एग्जीबिशन कम एंड सेल, ये हो रहा है मिगलानी सेलिब्रेशन पे, जहाँ पे सुबह साढ़े ग्यारह बजे से गेट ओपन हो जाएंगे और आप अपनी फ्री एंट्री का आनंद ले सकेंगे। कहाँ? ठोड मिगलानी सेलिब्रेशन पे, जहाँ पे फूड पार्टनर आपको मिलेंगे ट्रूप आइसक्रीम एंड कैटरिंग सर्विसेज। खूब आनंद लीजिएगा खाने का भी और आइसक्रीम का भी। तो कल जाइए, खूब सारी शॉपिंग कीजिए, एग्जीबिशन कम सेल को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आने वाला है रक्षाबंधन और आपका चल रहा है तीज फेस्टिवल। ये ऑर्गेनाइजर्स हैं इनकी गुंजन महेश्वरी जी एंड प्रिया अग्रवाल जी, जो बहुत ही टाइम से एग्जीबिशंस कम सेल करते आते हैं, ऐसे प्रोग्राम लाते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं एग्जीबिशन में। तो करते हैं अपने नए लिसनर से बात, देखते हैं क्या कहते हैं वो भी, कौन सी फरमाइश के साथ है हमारे पास। हेलो फरमाइश, कैसे हैं, क्या नाम है आपका?
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या कर रहे हैं आप?
1: जी सर, हम धर्माजी असम बुनाई मिशन की तरफ से बिमल बसंत बात कर रहे हैं सर।
0: बिमल जी, बहुत बढ़िया। असम में कैसा मौसम है इस समय?
1: जी सर, असम में तो बारिश रात को आया था, अभी बारिश नहीं आया सर।
0: रात में बारिश आया था?
1: जी सर, आपको बारिश आया था, अभी नहीं आया है, अभी ठीक ठाक है, अंधा है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपके यहाँ बारिश आया था और हमारे यहाँ बारिश आई होती है। तो इस समय आप क्या आनंद ले रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, कहीं पार्क में हैं, क्या हैं, या शॉप पर हैं अपनी?
1: जी सर, मेरा तो दुकान था, अब बाजार भी था, फिर बाजार से अभी दुकान बंद करके आया हुआ है, इधर फुटबॉल खेल चल रहा है सर, इधर फुटबॉल खेलने के लिए आ गया सर, हम ये फुटबॉल देख के अभी फोन कर रहे हैं सर।
0: चलिए चलिए, तो आज कौन सा गेम खेल रहे हैं सब पार्क में?
1: जी सर, ये फुटबॉल खेल चल रहा है।
0: फुटबॉल गेम चल रहा है?
1: जी सर।
0: कौन जीत रहा है, आपकी टीम जीत रही है या अपोजिशन वाले जीत रहे हैं?
1: नहीं सर, अभी शुरू होने वाला है।
0: अभी शुरू होने वाला है, तो बताइए कौन सा गाना फटाफट प्ले कर दें आपके लिए।
1: जी सर, हमको सुनना है अनारी फिल्म का रोना सा है, रोना सा है, ये गीत सुनना है सर।
0: मतलब गेम भी खेलना चाहिए और रोना चाहे रोना पाए, मतलब पहले से ही जरूरी है। आपको पता है कि गेम में कौन जीतने वाला है?
1: जी सर, देखा जाएगा, हम लोग जीतेगा। और सर, आप बहुत अच्छा लगा है कि आप इतना दिन के बाद पहली बार आप लोग का साथ हम बात कर रहा है कि और वीडियो प्रोग्राम भी सुनते रहता है, बहुत अच्छा लगता है।
0: नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा विमल जी, आपने समय निकाला और अपनी फरमाइश वाला सॉन्ग हमें बताया, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: जी सर, मैं दोस्तों के लिए डोनेट करना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ, जरूर जरूर, नाम बोलिए दोस्तों के।
1: हम लोग का दोस्त है, सबसे पहले हम लोग का सुनीतपुर असम से अमोल बसुमतारी है, और है फाइकन मुंडा, रमेश पत्र है, और पूरन वर्मा है, राकेश है, और रमेश प्रजापति है, और
0: धन्यवाद धन्यवाद। देख लीजिए कोई छूट छाट ना गया हो, अगर कोई छूट गया हो तो हम वेट कर लेंगे, नाम बोल दीजिए उसको।
1: जी सर, हम लोग का विजय परिवार तो बहुत है, बोलने से बहुत टाइम लग गया, और है हम लोग का बहुगल सिंह तोमर है, प्रेम सिंह सुसिया है, और तनुश्री है, और बहुत है सर, हम लोग का बोलेगा इतना लंबा कर लगेगा, आठ की जगह बोलेगा सर, बाद में
0: ठीक है, बाद में उनके लिए भी कुछ छोड़िएगा, उनके लिए भी कोई और गाना डेडिकेट कर देंगे। ठीक है साहब, करते हैं आपकी फरमाइश प्ले, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने असम से कॉल मिलाई और हमें बहुत अच्छा लगा,
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओ, ये थे बिमल जी असम से, इस समय मैदान में बैठे हुए हैं और फुटबॉल मैच होने वाला है, कह रहे हैं उससे पहले हम एक गाना सुनना चाहते हैं, तो क्यों नहीं साहब, हम तो बैठे हैं आज आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए, तो चलिए सुनते हैं उनका गाना। आपकी भी कोई फरमाइश तो हो सकती है अभी प्ले, क्योंकि कुछ मिनट हैं हमारे और आपके बीच में अभी, 9837896896।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद पे। और शो चल रहा है हेलो फरमाइश, तो जहाँ हो रही हैं आपकी फरमाइशें प्ले, हमारे पास खूब सारे मैसेजेस आए हैं और उन्होंने अपने अपने गाने बताए हैं, तो ज़रूर उनके हम गाने प्ले करेंगे। उससे पहले करते हैं हमारे बात, हमारे लिसनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए कहते हैं क्या है उनकी फरमाइश। हेलो हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या कर रहे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सोनू कुमार सर,
0: बुद्धि बिहार से।
1: सर
0: तो सोनू जी, इस समय कैसा हो रहा है मौसम?
1: मौसम बहुत मस्त हो रहा है, हवा बहुत मस्त चल रही
0: है। हवा मस्त चल रही है,
1: आज तो पसीने में आ रहे हैं, काम करेंगे सर हम। हवा ऐसी ठंड ठंडी।
0: सही है सोनू जी, कभी कभी इसका भी आनंद लेना चाहिए। तो क्या फरमाइश है आपकी?
1: मेरे हाथों में नौ चूड़ियां।
0: मेरे हाथों में नौ चूड़ियां है, किसके लिए है ये गाना?
1: ये हमारे दोस्तों के लिए है।
0: दोस्त लोग जो हैं आज इस ये गाना आप दोस्तों के लिए डेडिकेट कर रहे हैं?
1: सर आपकी आवाज लग रही है।
0: नाम बताइए आप दोस्तों के अपने। हाँ जी,
1: रमेश, असलम, भगत जी और जिलेंदर और इंदर।
0: चलिए साहब, तो करिए आप इस गाने को एंजॉय कीजिए और हमें बताइए कि कैसा लगा आपको ये गाना।
1: बहुत अच्छा लगा, आपसे बात हो रही है सर, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपने गाना भी इतना अच्छा मतलब चूज किया है कि बहुत समय बाद ये गाना सुनने को हमें मिलेगा। सर इतने अच्छी बात है कि दोस्त आपके साथ है, मौसम भी सही है और काम भी हो रहा है, मतलब तो सब आज आपके सब फेवर में है। चलिए चलिए साहब, अच्छे अच्छी बात ही क्या है। तो धन्यवाद सोनू जी हमसे जुड़ने के लिए, चलिए करते हैं आपकी फरमाइश पूरी। बाय। तो दोस्तों सोनू जी थे हमारे साथ, जिन्होंने अपने दोस्तों के लिए गाना डेडिकेट किया है, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं। तो चलिए इसका लेते हैं आनंद और मिलते हैं आपसे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। 9837896896 ये नंबर है। अभी भी अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, थोड़ा बहुत आपका मन है कि चलो आज मैं अपनी फरमाइश का एक गाना तो प्ले करवा लेता हूँ, तो अखिल बिल्कुल तैयार बैठा है आपका फेवरेट सॉन्ग प्ले करने के लिए। सिंपल सा नंबर डायल करना है 9837896896 और सुनना है अपना मनपसंद गाना।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 9.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका रेडियो स्टेशन। दोस्तों पता ही नहीं चला बस आ ही गया था। तो अभी हमारे लास्ट लिसनर जाने से पहले हम करेंगे अपने लास्ट लिसनर से बात और सुनेंगे कि क्या है उनकी फरमाइश, और उसी फरमाइश से हम करेंगे आज इस शो की समाप्ति। चलिए बात करते हैं। हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका? इंद्रभान जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ। ड्यूटी से घर आया हूँ सर, और आपका कार्यक्रम लाइफ में रेडियो मुरादाबाद में जुड़ा हूँ। आपसे बातचीत ठीक लग रहा था, और आज मैं अपने पसंद की गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम ही करनी कोई सन्नी, और गीत की बोले सावन में लग गई यार। गायक मीका सिंह बासा, नेहा कक्कर। सबको गीत आपको, पूरे भारत श्रोता को, रेडियो मुरादाबाद में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, स्टाफ कर्मचारियों को, सभी उद्घोषक भाई बहनों को, हर एक रेडियो फरमाइश ग्रुप में जुड़े श्रोता को, पूरे भारत राष्ट्र श्रोता को ट्रेजर करता हूँ सर। इसके धन्यवाद। अब इंतजार कर रहा हूँ अपने पसंद की सुनने के लिए। धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद इंद्रभान जी, बहुत ही अच्छा लगा आपने कॉल करी और अपने अपने फरमाइश हमें बताई।
1: जी सर, धन्यवाद।
0: तो श्रोता हमारे साथ जुड़े थे इंद्रभान जी, इन्होंने आप देख रहे कितनी फ्लुएंटली इन्होंने अपनी सारी बात कह दी और कितने अच्छे तरीके से कह दी। पूरे भारतवर्ष को उन्होंने ये गाना डेडिकेट करा है, और कहते हैं ना जब अपनी फरमाइश को आप सबके लिए साझा कर देते हैं तो उससे अच्छी बात ही क्या है। तो दोस्तों आज का ये सफ़र 2 घंटे का बिल्कुल सच में मेरे लिए तो एकदम ऐसा था कि पता ही नहीं चला। मैं फरमाइश पूरी कर करके अभी भी लग रहा है कि कुछ फरमाइशें आ जाएं तो ज़रूर उन्हें हम पूरी करें, मगर थोड़ी सी समय की नज़ाकत के साथ ये समय, ये शो जो है अब हमें यहीं पे समाप्त करना होगा। और इस फरमाइश के साथ हम फिर मिलेंगे आपको मंडे से फ्राइडे तक अखिल के साथ, दिल से दिल तक अखिल संग, रात में 9 से 10 बजे तक फिर से मैं आपके साथ जुड़ूंगा। आपके दिल की बातें, आपके दिल के गानों को ज़रूर हम यहाँ पे ऑन एयर करेंगे, खूब सारी गुफ्तगू करेंगे। और उससे पहले भी आप दिन में हेलो फरमाइश, जो हमारी आरजे खुशी जी का प्रोग्राम है, वो उनके साथ जुड़ सकते हैं, अपनी फरमाइश ज़रूर आप अपनी प्ले करवा सकते हैं। और उसके बाद रीना जी आएंगी ठीक 5 से 7 अपने इस शो के साथ, कुछ नया अंदाज ही रहता है उनका हमेशा। और अगर आप हैं मुरादाबाद में तो कल मिगलानी सेलिब्रेशन जाना मत भूलिएगा, एग्जीबिशन को एंजॉय करिएगा, खूब सारी शॉपिंग करिएगा। टिल देन बाय बाय, खूब मस्त रहें, गुनगुनाते रहें और स्वस्थ रहें। और ये जो गाना है ना बहुत ही बढ़िया चुना है इंद्रभान जी ने, सावन में लग गई आग के दिल मेरा।
2: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: हाँ जी दोस्तों, कैसे हाल चाल है? मैं आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत करते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ साथियों, अगर हमारी सोच बदलेगी, हमारे समाज की सोच बदलेगी, तो हमारा देश अपने आप बदल जाएगा। एक बार फिर से आनंद हाजिर हो गया इस प्रोग्राम को लेकर, और आज हमारा मुद्दा बहुत ही खास और विशेष और अहम और महत्वपूर्ण है। सारे शब्दों का मैंने इस्तेमाल कर लिया है श्रोताओं। एक बार फिर से सबसे पहले आपका वार्म वेलकम करते हैं आपके फेवरेट स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 9.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और इस प्रोग्राम को आज मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूं, मेरा साथ दे रही है हमारी प्यारी सी को एंकर कुमकुम। बहुत बहुत स्वागत है कुमकुम स्टूडियो में, कैसी हैं आप?
1: थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आज का जो प्रोग्राम है सोच बदलो, आज उसके बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो काफी डिजिटल के बारे में बात करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा रहने वाला है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर देखने से ज्यादा सुनाई देने वाला है कुमकुम जी। कुमकुम हाँ। अभी थोड़ी नई नहीं है इसलिए ना वो डिजिटल जमाने में ज्यादा एक्टिव है, इसलिए वो देखने की बात कर रही है, लेकिन हम यहाँ सुनाई देने की बात करते हैं क्योंकि यहाँ आवाजों की दुनिया है। तो कुमकुम हमारे साथ अभी नई जुड़ी है, श्रोताओं कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम बिल्कुल सही बताया, सोच बदलो। आज हम इस पे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया की, जहां दोस्ती भी ऑनलाइन है, काम भी ऑनलाइन है और पहचान भी ऑनलाइन है। आजकल तो खाना पीना भी ऑनलाइन है, क्यों कुमकुम जी? कपड़े भी ऑनलाइन है,
1: अब तो हमें जो चाहिए वो ऑनलाइन मिल जाता है।
0: इनफैक्ट मजे की बात यह है, आजकल मेकअप भी ऑनलाइन है, आप नहाकर मत आओ, फिल्टर लगाओ, आपका मेकअप भी आ जाता है। तो सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन इस डिजिटल जमाने में जितनी चीजें मेरे और आपके लिए आसान है ना कुमकुम, उतनी ही खतरनाक भी है। क्यों?
1: हाँ। सही कहा ना मैंने? सोशल मीडिया से हमारे कनेक्शंस और लोगों तक जा सकते हैं जो निगेटिव रहते हैं हमारे लिए।
0: करेक्ट करेक्ट, और हम वो सारी चीजें जाने जाने में शेयर भी कर देते हैं जिसका हमारे जो हेटर्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं कई बार। तो श्रोताओं, आज इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। आप बिल्कुल चिपक के बैठिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 पे। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, चलिए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः मिलेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: बड़ा ही प्यारा गाना था, आपको कैसे लगा कुमकुम ये गाना?
1: जी ये तो मेरा एक फेवरेट गाना हो गया।
0: अरे वाह, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। और देखिए भाई साहब, निगाहों में गुल नहीं, आजकल निगाहों में सोशल मीडिया के एप्स खुले हुए हैं, कहीं पर इंस्टाग्राम, कहीं पे व्हाट्सएप, कहीं पर फेसबुक, और कहीं स्नैपचैट, और पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शायद अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो हमारा समय कम पड़ जाएगा। वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन सा ऐप है जरा ये बताओ, तुम सबसे पहले उठते ही कौन सा ऐप खोलती हो मोबाइल में?
1: एक्चुअली मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ।
0: देखा, व्हाट्सएप के दीवाने भी भरे पड़े हैं, मुझे पता है गाइज, आप भी व्हाट्सएप चलाते हो दोस्तों, मैं जानता हूँ मैम। दीदी जी सुबह उठते ही व्हाट्सएप मत चलाया करो, फैमिली ग्रुप्स में गुड मॉर्निंग बेबी आ जाता है ना सुबह उठते ही, मुझे पता है। तुम्हारे पास किसका गुड मॉर्निंग आता है सबसे पहले?
1: एक्चुअली मेरी फैमिली का ही आता है।
0: ये लो भाई, आजकल जमाना बड़ा डिजिटल हो गया, फैमिली के साथ बैठे हैं फिर भी ऑनलाइन गुड मॉर्निंग कर रहे हैं।
1: हाँ, जी नहीं, मेरी हाँ, तो
0: आपकी शादी हुई तो बात अलग है। जी हाँ, वो तो फिर चलो समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप्स है ना, इसमें जो लोग खेलते हैं गुड मॉर्निंग, हमको भी कभी कभी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों खैर, जितनी मजे की चीज है ना सोशल मीडिया, उतनी घातक और खतरनाक भी है। क्यों कुमकुम? क्योंकि
1: हाँ,
0: मुझे लगता है कि आज हम जो जी रहे हैं वो एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर चीज हमारे लिए बहुत आसान हो गई है, बहुत कन्वीनियंट हो गई है, बट कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्क भी बढ़ गया है। डिजिटल स्कैम्स लगातार हो रहे हैं, हम इन पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, चीजें बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर सावधानी हम नहीं रखेंगे तो चीजें खराब भी हो सकती हैं।
1: हाँ, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ।
0: हाँ प्लीज।
1: जैसे कि डेटिंग एप्स हैं।
0: हाँ अरे वाह, बताओ बताओ।
1: डेटिंग एप्स पे जो गर्ल्स अपने पार्टनर्स ढूंढ रही होती हैं, कई बार उनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है, या बॉयज के साथ भी हो जाता है।
0: ट्रू ट्रू, आजकल तो लड़के लड़कियां बन के घूम रहे हैं, व्हाट्सएप पे आईडी बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे भी, और आपको मैसेज करेंगे ये वो। इनफैक्ट सबसे मजे की बात तो ये है कि आजकल आप ही के दोस्त के नाम की आईडी बना के आपसे पैसे लूट रहे होते हैं लोग।
1: जी राइट,
0: ये भी बहुत हो रहा होता है। कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा?
1: मेरे साथ तो नहीं, बट मेरी फ्रेंड के साथ हो चुका है, क्योंकि उसके साथ तो मैंने ही करा था।
0: आइयो रामा भाई, सबसे बड़ी यहाँ पर साइबर क्राइम बैठी हुई है, क्या कह रहे हो?
1: बट वो एक प्रैंक था।
0: अच्छा प्रैंक था, बट यार ऐसे प्रैंक मत किया करो, दिक्कत हो जाती है। वेल, इसे जोक सपाट दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा नया प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो, और अगर हम बदलेंगे तो सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो समाज अपने आप बदलेगा। और आज हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है सोशल मीडिया सिक्योरिटी, यानी कि खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखना भी जरूरी है। तो तुम क्या मानती हो कुमकुम, ऑनलाइन जितनी सारी चीजें आजकल हमें मिल रही हैं, इसमें क्या रिस्क भी है?
1: जी हाँ, अगर हम अपनी सारी चीजें ही सोशल कर देंगे तो सारी चीजें लोगों को पता चल जाएंगी, और जिससे हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी।
0: और लोग करते हैं यार
1: जी,
0: अगर लोग चाय भी पी रहे हैं उसकी फोटो, थोड़ी देर बाद सैंडविच खा रहे हैं उसकी फोटो, कहीं जा रहे हैं उसकी फोटो, मैं गाइस यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ।
1: एक्चुअली लोकेशन इंस्टाग्राम पे मोस्ट ऑफ डालते हैं कि लोकेशन के साथ कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं,
0: और जबकि वो आपके लिए घातक भी हो सकता है।
1: जी, आप पैसे निकाल लें एटीएम से तब आप ऑनलाइन है, लाइव आ रहे हैं, ये सारी चीजें गलत है।
0: गॉट इट, बिल्कुल सही कहा इसने। और श्रोताओं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आज हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद ही शेयर कर देते हैं, जैसे इन्होंने कहा, जैसे कि लोकेशन। एग्जैक्टली, फोन नंबर भी हम कई बार डाल देते हैं ना जब हम आईडी बना रहे होते हैं। आजकल तो खैर लोग कुछ कुछ तो ऐसे अपना आधार कार्ड भी डाल देते हैं भाई, जबकि वो नहीं डालना होता है, दिस इज फुल ऑफ प्राइवेसी, बट क्या ही कर सकते हैं। देखिए हमारा डेली रूटीन है, मानते हैं, एक तो आदत भी हो गई है कहीं ना कहीं कुमकुम इस चीज की ना हमें, कि उठते ही हर चीज शेयर करनी है, हर चीज को दिखाना है,
1: सोशल मीडिया का कीड़ा बनना हो गया है एक तरह से।
0: करेक्ट करेक्ट, मतलब पूरे आदि बन चुके हैं हम
1: जी।
0: अगर एक दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो पता नहीं लोग क्या हाल होगा,
1: आधी दुनिया रुक जाएगी।
0: सच बोल रही है यार, ये तो मुझे भी लगता है। तो दोस्तों यही से शुरू होता है खतरा, यानी कि हैकर्स या फिर फ्रॉड जिन्हें हम कहते हैं। और आज छोटी छोटी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, और आज का हमारा टॉपिक हमने आपको बता ही दिया है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ श्रोताओं, सोशल मीडिया सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, कैसे आप बच सकते हैं सोशल फ्रॉड से, इस पे हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है, सोच बदलो प्रोग्राम के अंतर्गत आपके साथ तमाम बातें साझा करेंगे। आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः लौट कर आ रहे हैं मैं और कुमकुम।

0: sickness.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: हे, यू आर ट्यून्ड टू FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आज का हमारा शो ये बेहद खास होने वाला है, यानी कि लीगल टॉक्स, जहाँ हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, यानी सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी कानून। चाहे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो या पैदल सड़क पार करते हो, ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या बिना हेट बाइक चलाने पर सिर्फ चालान होता है या और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है? अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाना और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर कानून क्या कहता है? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी। तो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे रेडियो में। आप बताइए कि रेडियो में आकर आपको कैसा लगता है?
1: देखिए, मैं हर वीकेंड वेट करता हूँ कि कब आपका शो आए और मेरे को आप इनवाइट करो यहाँ पे, और मैं जो हूँ अपने प्यारे जो लिसनर्स है कम्युनिटी रेडियो के, हमारे लिसनर्स, उनसे मैं बात कर पाऊँ, उनको अवेयर कर पाऊँ, उनकी परेशानियों को दूर कर पाऊँ।
0: श्रोता तो हमारा इंतजार ही करते रहते हैं,
1: वेट करते हैं उनका कि हमारी उनसे कब मुलाकात होगी। और जो है, मैं भी बड़ा बेताब रहता हूँ कि मैं अपने लिसनर्स के जो उनके डाउट्स हैं या उनकी कोई लीगल अवेयरनेस है या उनको कोई भी लीगल हेल्प चाहिए तो उसको मैं गाइड कर पाऊँ उनको।
0: तो श्रोताओं, हम बातें करते रहेंगे, बस आपने कहीं नहीं जाना है, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमानी है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहने, क्योंकि शो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास, जिसमें आपको तरह तरह की जानकारियां मिलती रहती है। और मुझे लगता है कि हर चीज के बारे में जानकारियां हमें लेना हमारे लिए ही अच्छा है। कभी कभी किस चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में हमें नहीं पता होता है, जिसके खिलाफ हम नहीं बोल पाते क्योंकि हम डरते हैं, और जब आपको पूरी जानकारी होगी तो आप आसानी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है?
1: देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट भारत का एक वह कानून है जो सड़क पर चलने वाले सभी मोटर वाहनों, ड्राइवर, वाहन मालिक, लाइसेंस पंजीकरण, बीमा, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम और दुर्घटना से जुड़े जो भी अधिकार हैं, जो भी दायित्व को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना होता है और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कराना होता है।
0: क्या हर वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है?
1: हाँ, बिना वह ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है, और वाहन आपको डीएल तभी मिलता है जब आपको वाहन चलाना आता हो प्रॉपर, ठीक है। और बिना डीएल के अगर आप वाहन चलाते हैं तो गैर कानूनी है, तो लिहाजा जो है, अगर इसके लिए जो प्रावधान है, जुर्माना भी हो सकता है और कार्रवाई के तौर पे आपको सजा भी हो सकती है। तो आप कभी भी अगर कोई वाहन चलाते हैं तो वाहन के लिए आपको डीएल बनाना अनिवार्य है। आप पहले प्रॉपर परिवहन आरटीओ विभाग जाएं, वहाँ पे प्रॉपर आप अपने डीएल के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करें, डीएल बनवाएं, उसके बाद ही आप सड़क पे वाहन लेके आए। अधिकतर मैंने देखा आज की डेट में बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको स्कूटी दे देते हैं ऐसी।
0: हाँ, वही,
1: वो गलत है, वो इलीगल है। अगर आप बच्चा स्कूटी चलाते हुए किसी को हिट कर देता है या तो उसको भी चोट लग सकती है और सामने वालों को भी चोट लग सकती है, तो ये अपराध है।
0: लाइसेंस बनवाने के लिए सर एज लिमिट क्या होती है?
1: 18 प्लस होनी चाहिए।
0: अच्छा, 18 प्लस होना चाहिए,
1: बालिग होना चाहिए।
0: ओके, लेकिन तो आजकल अगर जेंजी की बात करूं तो वो 16-17 की एज में

0: नहीं वो देखिए
1: वो इलीगल है, वो पेरेंट्स दे देते हैं, गलत है वो, तो आप ऐसे जो है बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के आप व्हीकल नहीं चला सकते।
0: क्या वाहन चलाते समय कौन कौन से दस्तावेज साथ होना चाहिए?
1: देखिए सबसे पहले तो आपका डीएल होना चाहिए जो आपको इशू किया गया है, वो गवर्नमेंट आईडी होती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप रोड पे अपना व्हीकल लेके नहीं जा सकते। फिर जो आप वाहन चला रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, उसको हम आरसी बोलते हैं। प्रॉपर जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं उसका इंश्योरेंस होना चाहिए,
0: चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो, गाड़ी हो।
1: हाँ, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पॉल्यूशन का पेपर होना चाहिए,
0: पॉल्यूशन,
1: हाँ, पॉल्यूशन, पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल बोलते हैं उसको, पॉल्यूशन उसका डॉक्यूमेंट, पॉल्यूशन चेक होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप व्हीकल चला रहे हो, ठीक है। और आवश्यकता होने पे अगर कोई परमिट की, कोई हैवी आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको किसी स्टेट का परमिट है तो परमिट भी आपके पास में होना चाहिए। इन सबकी डिजिटल कॉपी मान्य है, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनली अपने पास में रखना है, डिजिटल कॉपी भी मान्य हो सकती है यदि कानून के अनुसार स्वीकार है वो चीजें, तो आप उसकी डिजिटल कॉपी भी आप रख सकते हैं।
0: तो सर जैसे आपने बोला कि कॉपी होनी चाहिए तुम्हारे पास,
1: हाँ,
0: वो चाहे स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, मतलब अपने साथ रखना है,
1: सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपने मोबाइल पे रख सकते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं।
0: अच्छा, फोन में भी है,
1: फोन में भी चल सकती है, गवर्नमेंट ने उसको वैलिड कर दिया, पहले नहीं था, तो अब आप अपनी डिजिटल कॉपी भी मान्य है। अगर कोई आप ट्रैफिक पे जा रहे हैं या आप स्कूटी से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है या चेकिंग हो रही है और वो आपसे कोई वैलिड आईडी मांगते हैं, आपका डीएल है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या इंश्योरेंस है, तो आप उसको मोबाइल पे भी दिखा सकते हो। उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन है, वो प्रॉपर चेक कर लेंगे कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है, अगर वो चीज ऑथेंटिक है, सही है, तो वो आपको जाने देंगे। वो
0: मान लीजिए सर कोई मेरा ही गाड़ी है, वो कोई और लेके जा रहा है तो
1: वो गलत है, कायदे में तो आपको गाड़ी नहीं देनी चाहिए अपनी। लेकिन अगर आपने गाड़ी दे भी दी है तो उस गाड़ी के पेपर उसको दें, आप पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दें, इंश्योरेंस की कॉपी दें, और जिसको आपने गाड़ी दी है उसका डीएल बना होना चाहिए।
0: अच्छा, उसका भी बना होना चाहिए,
1: उसका भी डीएल होना चाहिए। अगर आपने डीएल उसका नहीं बना हुआ, पेपर आपके पूरे हैं, डीएल आपका है और गाड़ी दूसरा चला रहा है जिसके पास डीएल
0: नहीं है,
1: तो वो भी गैर कानूनी है।
0: तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो आजकल हर कोई भूल जाता है। क्या हेलमेट पहनना केवल चालक के लिए जरूरी है?
1: देखिए अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो यहाँ आप देखते हैं कि लोग जो है हेलमेट नहीं लगाना
0: नहीं
1: चाहते,
0: लगा चाहते,
1: तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, ठीक है, और जो है इससे आपकी सुरक्षा भी होती है, प्लस आप जो है दोपहिया वाहन चलाते वक्त जो चालक और पीछे व्यक्ति बैठा हो दोनों जो है हेलमेट पहने रहते तो सुरक्षा की दृष्टि से भी और ये एक कानून की निगाह से भी एक मैंडेटरी है, तो आगे आज आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। तो कई परिस्थितियों में जो है कई बार ऐसा हो जाता कि हमने देखा कि अक्सर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, हल्की सी टक्कर लग गई और डिसबैलेंस होकर गाड़ी गिर जाती है, तो क्या होता है सर पे बहुत ज्यादा गंभीर चोट लग जाती है उसकी वजह से, तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो कानून के हिसाब से भी हेलमेट आपको लगाना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी हेलमेट जरूर लगाना चाहिए आपको।
0: बहुत से देखा होगा सर आपने बोलते कि अरे दो मिनट का तो काम ही है, यही जाना है, दो कदम पर ही जाना है।
1: देखिए दो मिनट का काम होता है लेकिन अगर ज्यादा कोई मिसहैपनिंग हो गई दो मिनट के अंदर ही तो आप क्या करेंगे।
0: करेक्ट। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, सीट बेल्ट का क्या महत्व है?
1: सीट बेल्ट की भी यही मैंने प्रॉब्लम देखी है, लोग पता नहीं सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते हैं।
0: एक तो बोल देते हैं हमने खाना खा लिया, पेट में दर्द हो जाएगा अगर उसको पहन लेंगे तो,
1: सीट बेल्ट
0: दबने लग जाएगा।
1: कानून के हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उस पे आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है, वो कानूनन अपराध की मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग वो जो है अपराध माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर सीट बेल्ट दुर्घटना के समय कोई दुर्घटना हो गई तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती तो कई ज्यादा गंभीर चोट आ जाती है, उससे क्या होता है कि जो है कई डेथ तक हो जाती है। तो सीट बेल्ट अगर आप गाड़ी में लगा के ड्राइव कर रहे हैं और कोई मिसहैपनिंग भी कुछ होती है तो हो सकता है साधारण चोट ही लगे, ज्यादा आपको चोट न लगे और आपकी लाइफ बच जाए, तो सीट बेल्ट आपको कानून की दृष्टि से भी लगानी चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी लगानी चाहिए।
0: उसके साथ वाला जो बैठा होता है उसके लिए
1: सीट बेल्ट सबके लिए अनिवार्य है तो लगानी चाहिए आपको।
0: सर कभी कभी जैसे कि मैंने ही देखा है कि वो सोचते हैं कि सामने पुलिस वाले तो है नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, क्या ही हो जाएगा।
1: देखिए आप ये सोचिए कि भाई ठीक है मेरे को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, है ना, तो आप ये सोचोगे से मुझे चलान से बचने के लिए हेलमेट पहनना है या चलान से बचने के लिए मुझे सीट बेल्ट पहननी है, तो ये गलत है, इसको आप प्रैक्टिस में लाइए।
0: ओके,
1: जैसे आप डेली प्रैक्टिस में लाते हैं ना, आप सुबह ब्रश करते हैं, नहाते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस में लाइए कि मुझे जब जाना है तो पहले मुझे गाड़ी खोलनी है, फिर उसमें प्रॉपर बैठ के मुझे सीट बेल्ट लगानी है, तब मुझे आगे ड्राइव कर।
0: आजकल तो कैमरे भी लगा दिए गए हैं ना कि सीधा पकड़े जाओ।
1: हाँ, तो जो ई चालान होते हैं वो आजकल ट्रैफिक पुलिस जो है वो ई चालान से भी अगर आपने गाड़ी में देखा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आपकी पिक्चर उसमें कैप्चर हो जाएगी, आपका चालान कट जाएगा उसमें,
0: यानी कि पॉकेट मनी कब उड़ जाएंगे।
1: टू व्हीलर पे भी ऐसी हो गया है कि आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपकी गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया, चालान कट जाएगा आपका उसमें। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे चालान बचाने के लिए चीजें करनी है, आप ये सोचिए कि मुझे सुरक्षा की दृष्टि से भी करनी है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, शराब पीकर वाहन चलाने पर क्या परिणाम हो सकता है?
1: देखिए, शराब पीकर तो वाहन चलाना ही नहीं चाहिए, गंभीर अपराध है, इसके कारण कई एक्सीडेंट्स भी देखे होंगे आपने, अधिकतर सुना होगा कि भाई वो कोई कैजुअल्टी हो गई तो पता चला कि ड्रिंक कर रखी थी उसने, शराब पी रखी थी, इसके कारण भारी, अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो बहुत हैवी पेनल्टी के साथ आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है, ठीक है, आपका व्हीकल भी सीज कर रहे हैं पुलिस वाले, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, प्लस आपको जेल भी हो सकती है, कारावास भी भेज सकते हैं वो, और प्लस आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है।
0: यदि सड़क दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए, अगर सड़क दुर्घटना हो जाती है तो घायल व्यक्ति को आप कोशिश करिए कि सबसे पहले जो है, अगर कोई पास में कोई पुलिस वाला दिख रहा है आपको तो आप उसकी उससे आप मदद मांग सकते हैं, एम्बुलेंस और पुलिस को आप सूचना भी दे सकते हैं, 112 नंबर पे आप कॉल करके पुलिस को भी बुला के सूचना दे सकते हैं। यदि संभव हो तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें, कोई जैसे कोई ऑटो वाला जा रहा है उससे थोड़ी सी हेल्प मांग लीजिए, कोशिश करिए कि अगर वो बच सकता है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाएं।
0: पर सर आजकल ये हो गया ना कि कोई किसी का हेल्प नहीं करता, उसके मन में एक ही डर होता है कि कहीं मैं ना फंस जाऊं।
1: देखिए, ऐसा होता है कि जब एक एक्सीडेंट होता है, अधिकतर भी हमने देखा, तो पहले तो था कि पुलिस थोड़ा सा पूछताछ करती थी कि भाई कब हुआ क्या हुआ, लेकिन अब जो है हमारे हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की भी डायरेक्शंस आई हैं, अगर कोई घायल है या कोई दुर्घटना में घायल हुआ है तो ये तत्काल उसको मदद देनी है, पुलिस भी इसमें सहयोग करती है, और आपसे कुछ नहीं उसमें पूछा जाता है, आपसे कुछ कोई भी उसमें पूछताछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, आप अगर उसकी मदद करते हैं तो बल्कि आपको अप्रिशिएट किया जाता है। आप सोचिए, आपने एक व्यक्ति के प्राण बचाए, तो अब जो है बहुत लोगों में चेंजेस आए हैं, लोग मदद भी करते हैं एक दूसरे की, तो आप ये सोचिए कि अगर किसी की कोई दुर्घटना हुई है, किसी को कोई इंजरी हुई है, तत्काल उसको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो शायद वो उसके घर वाले आपको दुआएं देंगे अगर उसकी जान बच जाएगी, और आप किसी व्यक्ति के प्राण बचा पाएंगे, क्योंकि अगर एक्सीडेंट के केसेस में अगर आप वक्त पे किसी को फर्स्ट एड दिला देते हैं या ट्रीटमेंट दिला देते हैं तो उसकी लाइफ बच सकती है।
0: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है?
1: देखिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं यदि आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति या उसके वाहन या उसकी संपत्ति को नुकसान हो गया तो थर्ड पार्टी जो होती है इंश्योरेंस, उस नुकसान की भरपाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो आपको नहीं देना पड़ता, जो आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देती है, ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस।
0: यदि वाहन का बीमा नहीं हो तो क्या होगा?
1: देखिए, बिना वाहन के वैध बीमे के आप वाहन आपका सीज भी हो सकता है, ठीक है, और ये कानून का उल्लंघन है, इसके लिए जो भी दंडात्मक कार्रवाई है और फाइन है पेनल्टी वो भी पड़ सकती है, तो लिहाजा जो है आप वाहन का इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए आपको, और रिन्यूअल है तो रिन्यूअल भी जरूर कराएं।
0: तो श्रोताओं, यहाँ पर हम लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, और आप सभी को मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, और मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

क्या बात है श्रोताओं, आपने बहुत ही शानदार गाना एंजॉय किया है और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना, जहाँ हम बात कर रहे हैं काम की। आज भी कई लोग बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए खुद को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर एक छोटी सी दुर्घटना हो जाए तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? आपके परिवार को। असली हीरो वो नहीं जो बिना हेलमेट तेज रफ्तार से बाइक चलाए, असली हीरो वो होता है जो हेलमेट पहनकर ट्रैफिक नियमों का पालन करे, सुरक्षित अपने घर पहुंचे, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। याद रखिए, हेलमेट और सीट बेल्ट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए है। सड़क पर आपकी एक गलती किसी और की जिंदगी भी खतरे में

0: फिर आप सिटी के अंदर देखिए उतनी हाई स्पीड में ओवर स्पीड में वो गाड़ी चलाते हैं कि सामने अगर कोई आ जाए तो उसको भी चोट लगेगी और इनको भी चोट लगेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो अधिक गति से वाहन चलाने पर अगर आप चलाओगे तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा, सबसे बड़ी चीज अगर एकदम आपको ब्रेक मारने तो, और आप ब्रेक मारोगे भी तो गाड़ी स्किप हो जाएगी आपकी, फिसल सकती है। तो ये भी एक कानून मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये कानूनन अपराध है, उल्लंघन कानून का, तो इस पे भी फाइन हो सकता है और आपकी गाड़ी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं। तो ओवर स्पीड आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं किसी गंतव्य तक जा रहे हैं तो आप ये सोचिए मुझे आराम से चलाना है, ड्राइविंग है ना, जिगजैग गाड़ी नहीं चलानी है आपको। और जो है आप अपनी भी केयर करिए, सामने वाले की भी केयर करिए।
1: सर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बाइक भी चला रहे होते ना तो एक बार हैंड फ्री होकर चलाते।
0: हाँ तो वो सब चीजें गलत है। वो एक स्टंट जो ये आजकल देखते हैं जो बच्चे स्टंट वगैरह दिखाते हैं तो ये गलत है। और इस पे हमारी मैं तो एक अपील करूंगा हमारी मुरादाबाद पुलिस से भी कि तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं वो, अगर कहीं भी देखते हैं जो करते भी हैं वो लोग
1: स्टंट मारते
0: हैं। हाँ ये गलत है। इससे कई सड़क पे बुजुर्ग बच्चे जाते हैं उनको भी कई बार चोटिल होते हुए देखा गया है। तो निश्चित तौर पर ये गलत है और ये कानून का उल्लंघन है।
1: सो अगला भी क्वेश्चन सर बहुत इम्पोर्टेंट है, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना कितना खतरनाक है?
0: देखिए मोबाइल फोन पर अगर आप बात कर रहे हैं या कोई व्हाट्सएप पे कोई संदेश पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए आप मोबाइल पे देख रहे हैं और एक तरफ आप व्हीकल भी चला रहे हैं तो सामने से कोई आ रहा है तो आप कैसे उससे आप अपने आप को बचा पाओगे, कैसे डिफेंस कर पाओगे? तो मोबाइल पे चलाने देखते हुए करते हुए कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, है ना, उससे एक्सीडेंट का खतरा पैदा हो, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर इस पे भी जुर्माना है।
1: अच्छा, बहुत से सर ये कहते हैं कि अरे क्या होगा कुछ नहीं होगा आराम से चला ले, मैं फोन भी दोनों कर लेता हूँ।
0: इस पे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है अगर आप मोबाइल बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो इस पे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, आपकी गाड़ी का जो परमिट कैंसिल भी हो सकता है, आपके ऊपर जुर्माना भी पड़ सकता है। तो उस समय जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई होती है पुलिस करती है उसमें।
1: यदि ट्रैफिक पुलिस चालान काटे तो नागरिक क्या करे?
0: देखिए ट्रैफिक पुलिस अगर चालान काट रही है तो आप पहले तो आपको शांत रहना है, कोई आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है, कोई सोर्स लगाने की आपको जरूरत नहीं है। प्रॉपर एक जेन्युइन से आप रीजन पूछिए कि आप मेरा चालान क्यों काट रहे हैं, क्या रीजन है। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वैलिड डॉक्यूमेंट्स आप उसको दिखाइए। अगर आप अपनी जगह ठीक है, आप प्रॉपर गाड़ी सही से चला रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, वो जो कागज मांग रहे हैं आप कागज अवेलेबल कराइए। और अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है तो आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो भी आपके ऊपर फाइन लगता है उसको आपको पे करना चाहिए।
1: ओके, मोटर दुर्घटना दावा अधिकार क्या है?
0: देखिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इसे MACT बोलते हैं, MACT, ये एक न्यायिक मंच है जहां सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति या जो भी मृतक होते हैं, जो भी जिसकी डेथ हो जाती है उसके परिजन जो होते हैं उनको मुआवजा मिल सकता है। उसमें आप क्लेम डालिए तो आपको क्लेम मिलता है उसमें।
1: सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, दुर्घटना में मुआवजा किन लोगों को मिल सकता है?
0: देखिए घायल व्यक्ति यदि कोई या कोई स्थायी विकलांगता से पीड़ित हो गया या व्यक्ति या दुर्घटना में मृत्यु होने पर कानूनी आश्रित जो भी होते हैं उसके, जो भी उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार दावा कर सकते हैं। तो वो आपको कोर्ट में दावा करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लेम मिलेगा।
1: सर अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही शानदार है कि आज CCTV फुटेज और डैश कैम रिकॉर्ड साक्ष्य बन सकते?
0: हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। आज की गाड़ियों में जो है जो हमने देखा डैश कैम तो सारी गाड़ियों में मोस्टली आ रहा है, इतनी एडवांस हो गई है, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डैश कैम से कई ऐसी चीजें हमें सामने वाले की गलती पकड़ में आ जाती है। अगर दो गाड़ियों की टक्कर लगती है तो दोनों बोलेंगे कि भी मेरी गलती नहीं थी, उसमें हम गलती कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर आपकी गाड़ी पर डैश कैम लगा होता है तो डैश कैम क्या करता है, वो एक्चुअल जो आपकी जो जब आप ड्राइव कर रहे हो वो एक्चुअल सारी मूवमेंट्स को कैप्चर करता रहता है।
1: सर डैश कैम है क्या?
0: डैश कैम एक तरीके का कैमरा होता है, CCTV कैमरा होता है, वो आपकी गाड़ी में लगा होता है, वो रिकॉर्ड करता है प्रॉपर,
1: मतलब वो जो गाड़ी चला रहा है उसको पता है?
0: हाँ पता क्या, वो गाड़ी में इनबिल्ट फीचर होता है वो।
1: अच्छा,
0: वो गाड़ी में इनबिल्ट फीचर होता है। आजकल गाड़ियाँ ऐसी आ रही है उसमें डैश कैम लगा होता है, आप कहीं जा रहे हैं तो सामने से भी जो गाड़ी आ रही है उसको भी कैप्चर करता है, पीछे आपकी गाड़ी के वो भी कैप्चर होता है। तो अगर कोई भी मूवमेंट होता है ऐसा तो डैश कैम के थ्रू वो एज एन एविडेंस बन सकता है कि भाई किसने टक्कर मारी थी, किसकी गलती है, वो ऑन द मैटर ऑफ रिकॉर्ड होता है। अगर कोर्ट में केस जाता है तो उसको हम वहाँ पे क्लेम भी कर सकते हैं,
1: मतलब ऑटोमेटिक वो चालू हो जाता है जैसे
0: रिकॉर्डिंग, जैसे आपके CCTV कैमरे लगे होते हैं तो वैसे एक तरीके का गाड़ी में CCTV कैमरा लगा होता है, तो उसमें मेमोरी होती है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड करती रहती है, तो एज एन एविडेंस का काम करती है वो।
1: सड़क पर वाहन चलाते समय सबसे बड़ी कानूनी जिम्मेदारी क्या है?
0: देखिए कानूनी जिम्मेदारी आपकी यही है कि जब आप

0: चलाएं तो एक वैलिड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी के प्रॉपर पेपर्स होने चाहिए, इंश्योरेंस पॉल्यूशन, और आप अपनी साइड पे ही चलें, कभी भी रॉन्ग साइड ना चलें और कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें। बस ये दो तीन चीजें हैं
1: सर। जो आजकल की जेन जी आम नागरिक है और जो गर्ल्स है, विमेन है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए भाई, मैं तो यही बोलूंगा कि सड़क पर जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आपको आराम से व्हीकल चलाना है, जिम्मेदारी दिखाइए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, नशे में वाहन ना चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित सफर ही सबसे बड़ी मंजिल है। और अगर उसके बाद भी आप मेरी बात नहीं मानते तो मुरादाबाद पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है।
1: वो तो है सर।
0: तो फिर उसके बाद फिर आप जो है, आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी लॉज है, उसको आप फॉलो करें।
1: तो चलिए श्रोता, ये शो हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आज की बात से हमें यही समझ आई कि सड़क पर सुरक्षा हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिर्फ कानून का डर नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के जीवन का सम्मान करना है। घर निकलते समय हमेशा हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करे और कभी भी शराब पीकर वाहन ना चलाए। छोटी सी सावधानी आपकी और आपके परिवार की खुशियाँ हमेशा सुरक्षित रख सकती हैं। और सुनते रहे FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और इस बार यानी कि टॉक शो में हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं FIR के बारे में, यानी कि अक्सर जब किसी चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी या किसी अन्य अपराध की घटना होती है तो सबसे पहले एक शब्द सुनने को मिलता है, FIR। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि FIR आखिर होता क्या है, इसे कौन दर्ज कराता है, क्या हर शिकायत FIR बनती है या पुलिस FIR दर्ज कराने में मदद कर देती है? ऐसे में हम आम नागरिक के पास क्या अधिकार है और FIR दर्ज होने के बाद आगे की कानून जो प्रक्रिया है वो कैसे बढ़ती है आगे, इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिल सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सर आप बताइए, अब मुझे लगता है कि आपके बार हमने लेट नहीं करा है।
4: हाँ बिल्कुल, टाइम पे आपने याद किया है मेरे को, लेकिन आज थोड़ा सा गला मेरा हल्का सा कफ है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा मैं आपके आंसर्स दे पाऊँ।
3: कहीं आप बारिश में तो गिले नहीं हो गए?
4: नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन वेदर थोड़ा चेंज है तो थोड़ा सा गला खराब हुआ।
3: हाँ वो एक्चुअली इसलिए होता है ना सर कि हम एसी में रहते हैं, फिर बाहर निकल के जाते हैं तो ठंडा गर्म कुछ इस तरीके से खाने से भी होता है। तो हम अपने शुरुआत करते हैं आज का शो, यानी कि सबसे पहले सर ये बताइए FIR होता क्या है?
4: देखिए पुलिस स्टेशन में FIR जो दर्ज कराने के लोग अधिकतर, एक आपने वर्ड सुना होगा, कोई भी मारपीट हो जाती है, कुछ होती है तो लोग धमकी दे देते हैं, मैं FIR दर्ज कराऊंगा और पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। देखिए FIR जो होती है, FIR को हम बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। FIR जो पुलिस के द्वारा दर्ज करी जाती है, जो भी कोई, अगर कोई क्राइम किया गया है या कोई घटना हुई है, उसकी इन्फॉर्मेशन एक पीड़ित के द्वारा पुलिस को दी जाती है और जो पुलिस होती है उस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उस FIR को रजिस्टर्ड करती है।

0: रिकॉर्ड्स में, उसको ये हम FIR बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड।
1: क्या हर शिकायत FIR होती है?
0: नहीं, देखिए हर शिकायत FIR नहीं होती। यदि मामला संज्ञेय अपराध का है तो FIR दर्ज होती है, लेकिन अगर मामला असंज्ञेय अपराध का है जिसमें कॉग्निजेंस पुलिस नहीं ले सकती, तो समानता पुलिस समान शिकायत दर्ज कर सकती है और आगे की कार्रवाई नियम अनुसार होती है उसमें।
1: तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर होता है?
0: देखिए संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में ये अंतर होता है कि संज्ञेय अपराध जैसे गंभीर अपराध हो गया, ठीक है, कोई गंभीर मारपीट हो गई, डकैती है या अपहरण है या कोई मर्डर है या कोई ऐसा कोई बलात्कार का कोई ऐसे कोई केसेस हो जाते हैं, तो उसमें क्या है पुलिस जो है बिना अदालत की अनुमति के जांच शुरू कर सकती है और कॉग्निजेंस ले सकती है उसका, है ना। और असंज्ञेय अपराध जो होते हैं वो अपेक्षाकृत कम गंभीर होते हैं, जैसे साधारण मारपीट है या गाली गलौज है या मानहानि के कुछ मामले, तो उसमें कानून के हिसाब से अलग अलग जो भी प्रक्रियाएं हैं उसके हिसाब से कार्रवाई बनती
1: है। और अगला क्वेश्चन है, FIR दर्ज कराने की सही प्रक्रिया क्या है?
0: देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई परेशानी होती है या कोई घटना हमारे साथ ऐसा हो जाता है, कोई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, किसी के घर कोई चोरी हो गई या कोई किसी ने किसी को नुकसान कर दिया या उसकी प्रॉपर्टी तोड़ दी या घर में घुस के मारपीट कर ली, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि हम अपना जो कंप्लेंट है या FIR हम कैसे दर्ज कराएं, कहां जाएं। तो लोग अक्सर छोटी छोटी बात सोच के चलो टाल देते हैं, ये जो टालने की आदत है किसी दिन बड़ा रूप ले लेती है, एक बड़ा क्राइम बन जाता है। तो FIR दर्ज कराने की सही प्रक्रिया ये है, अगर आपके साथ में कोई भी घटना हुई है आप सबसे पहले थाने जाइए, जो भी संबंधित थाना या नजदीकी चौकी हो वहाँ पे आप जाइए, घटना की पूरी जानकारी आप स्पष्ट रूप से बताइए कि आपके साथ क्या क्राइम हुआ है, क्या घटना हुई है, उसकी तारीख, समय, स्थान, जो आरोपी है जिसने वो घटना करी है उसका नाम, उसका पता। अगर मौके पे कोई और भी लोग मौजूद थे जो आपकी तरफ से एक विटनेस बन सके और घटना के बारे में बता सके कि हाँ भाई वास्तव में इनके साथ में मारपीट हुई थी या ये इंसिडेंट हुआ था, तो पूरी सबूतों की जानकारी आप पुलिस को दीजिए। FIR लिखने के बाद उसको आप ध्यान से पढ़िए कि जो आपने चीज बताई है, जो कंटेंट आपने पुलिस को बताया है, क्या वही चीज लिखी है, और अगर वो सही हो जो आपने चीज इन्फॉर्मेशन दी है तो आप उस पर साइन या अंगूठा लगा सकते हैं, तो आप उसको अपनी कंसर्ट दे सकते हैं कि हाँ ये मेरे द्वारा ही लिखी गई है, बताई गई है।
1: ओके, तो सर अगर शिकायत दर्ज कराने में यानी कि वो 10 दिन या 15 दिन डिले कर देता है तो क्या तभी भी हो सकती है?
0: हो सकती है, लेकिन जितनी जल्दी आप सूचना देंगे पुलिस को, जितनी जल्दी आप क्राइम की सूचना देंगे उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहती है, और ये जल्दी अगर टाइम पे चीज दर्ज होती है तो आरोपी को एक तो सबूत मिटाने का टाइम नहीं मिलेगा, पुलिस जांच में तेजी करेगी और उससे जो न्याय है उसमें तुरंत न्याय मिल पाएगा उसको।
1: और सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए क्वेश्चन है, यदि मुझे लिखना नहीं आता तो क्या होगा?
0: ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि भाई बुजुर्ग होते हैं या कुछ ऐसे अनएजुकेटेड लोग होते हैं कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, उनके साथ कोई घटना हो जाती है तो वो सोचते हैं कि मैं जाऊंगा कैसे लिखूंगा, कैसे कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपके साथ में कोई क्राइम हुआ है या कोई ऐसी घटना हुई है तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाएं, कोई थाने जाएं, वहां पे आप अपनी समस्या बताएं कि भाई मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता या मैं नहीं लिख सकता, मैं सक्षम नहीं हूं। आप मौखिक वहां पे अपनी पूरी जानकारी, जो भी वहां पे पटल पे जो भी पुलिस अधिकारी बैठे होंगे उनको आप पूरी मौखिक अपनी जानकारी दीजिए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना हुई है, समय बताइए, उसको स्थान बताइए, और पुलिस उस घटना को पूरा लिखने में आपकी मदद करेगी, आपको पढ़ के सुनाएगी वो कि ये आपने जानकारी दी हो, ये हमने इसमें लिखवा दिया है। अगर वो सब सही ही हो तो आप उस पर अपना अंगूठा लगा सकते हैं और अपनी स्तुति दे सकते हैं कि हाँ ये मेरी तरफ से ही ये FIR लिखाई जा रही है।
1: और सर वो ये भी सोच अपने दिमाग में कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो जाएगा?
0: देखिए पुलिस के पास आप जाने हैं, पुलिस तो होती है आपकी हेल्प के लिए, तो आप अगर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वहाँ पटल पे जो भी अधिकारी संबंधित अधिकारी बैठे रहते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है कि जो भी उनके पास न्याय मांगने जा रहा है, जो भी पीड़ित जा रहा है, वो उसकी हर संभव मदद करें। अगर उसको लिखने पढ़ने में कोई असुविधा है तो एक अधिकारी अपने जो जूनियर पुलिस अधिकारी होते हैं, पुल ऑफिसर्स होते हैं, जो भी वहाँ पे कांस्टेबल होते हैं, पटल पे जो भी अधिकारी होते हैं, वो उसकी प्रॉपर मदद करते हैं लिखने में। तो इसमें कोई अगर किसी को लिखने पढ़ने में कोई दिक्कत है या उसे ज्ञान नहीं है कानून का, तो भी वो अपनी हेल्प मांग उस पे
1: कभी कभी मतलब उनको तो कागजों का भी ज्ञान नहीं होता ना सर।
0: हाँ बिल्कुल, तो उसमें कोई घबराने की विषय नहीं है। आप जो है वहाँ पे जो संबंधित अधिकारी है या जो थाना इंचार्ज होते हैं, चौकी इंचार्ज होते हैं, वहाँ आप अपनी समस्या बताइए तो आपको पूरी मदद करेंगे, ये आपका अधिकार है।
1: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर सर हम FIR दर्ज कराते हैं तो उसके लिए कोई फीस?
0: नहीं, कोई फीस नहीं ली जाती, कोई पैसा नहीं जाता है, ये प्रॉपर बिल्कुल फ्री है। किसी भी तरीके का कोई भी जो है आपकी तरफ से जो अगर कोई भी वहाँ पे मैटर आपने दिया है या कोई भी जो है आपने समस्या बताई है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई शुल्क नहीं देना वहाँ पे। अगर कोई मांगता है तो आप उसकी तत्काल जो है उसके शीर्ष अधिकारी से कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, यहाँ पर हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। ऐसे ही हम बात करते रहेंगे, बस आप बने रहिए आरजे रीना के साथ। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: वेलकम बैक है श्रोताओं, टॉक शो में आप आर्जुरीना के साथ कनेक्ट है, जहां हम बात कर रहे हैं FIR के बारे में, जिसके आप जैसे सर ने बताया भी है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी FIR दर्ज कराते हैं, कि अगर आप पुलिस के पास जा रहे हैं वहां आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई बीच में मिल भी जाता है और वो आपसे बात करता है और ये कहता है कि नहीं इसके लिए पैसे लगते हैं, पहले मुझे पैसे दो तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन ऐसे से आपने बचना है, सीधा आप स्टेशन जाइए, वहीं अपनी शिकायत दर्ज कराइए। तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, FIR की कॉपी लेना क्यों जरूरी है?
1: देखिए FIR की कॉपी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और वो कॉपी आपको इसलिए लेनी मैंडेटरी है, उसको जरूर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि भविष्य में अगर आपने कोई FIR कराई है तो निश्चित तौर पर वो उसका संज्ञान कोर्ट लेती है, कोर्ट उसी FIR के आधार पे आपके केस को निस्तारित करती है, उसको सुनती है। तो अगर आपके पास कोई कागज जो आपने खुद अपनी घटना के बारे में बताया अगर वो आपको नहीं पता होगा तो आप वहां कोर्ट में अपने केस को कैसे प्रेजेंट कर पाओगे, या भविष्य में कोई कोर्ट या कोई बीमे का आपका मुआवजा है सपोज करिए, या अन्य कोई कानूनी कार्रवाई है, तो इसकी आवश्यकता हमेशा पड़ेगी आपको। तो शिकायतकर्ता को इसकी कॉपी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। मैं दोबारा बोलूंगा, FIR फ्री ऑफ कॉस्ट लिखी जाती है, कोई पैसा नहीं आता है, और FIR की कॉपी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर कोई भी अधिकारी कोई भी आपसे डिमांड करता है, पैसा मांगता है, तो आप उसके शीर्ष अधिकारी से, जो भी इसके सीनियर ऑफिसर है, इसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं।
0: क्या बात है,
1: FIR बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लिखी जाती है और उसकी कॉपी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीड़ित को दी जाती है।
0: अच्छा, मतलब जो उसकी कॉपी होती है वो फ्री में ही मिलता है, मतलब इसके लिए कोई पैसा लगता
1: कोई पैसा नहीं लगता है। ये आपका अधिकार है और आप इसके लिए जो है अपने अधिकार के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। सर कभी कभी ऐसे मामले सामने आ जाते हैं, जैसे हम पुलिस के पास FIR दर्ज कराने जा रहे हैं लेकिन वो नहीं कराते, हमें बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: देखिए सबसे पहले तो अगर आप कोशिश करिए कि आप अपनी पूरी बात बता के उनको जो है, जो भी आपके थाना इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज है, उसको आप बताइए कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है और आपके साथ ये परेशानी है, तो वो आपकी FIR बिल्कुल लिखेंगे। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं लिखते हैं, तो आप शांत रहिए, आपको कोई भी मिसबिहेव अधिकारी से नहीं करना है, ना कोई एग्रेशन दिखाना है। आप संबंधित अधिकारी से कारण पूछिए कि भाई आपकी कंप्लेंट क्यों दर्ज नहीं हो रही है। उसके बाद भी यदि आप दर्ज नहीं होती है तो आप इस लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक, जो आपके क्षेत्र के हैं, जो SSP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं हर सिटी में, आप वहां पे इसकी कॉपी रिसीव करा सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं थाने भी गया था, मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पे आपकी FIR लिखी जाएगी। और आवश्यक होने पर संबंधित न्यायालय से भी आप उचित उपाय उपलब्ध, आप कोर्ट के थ्रू भी FIR अपनी लिखा सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस होता है, पहले आपको चौकी इंचार्ज या थाना इंचार्ज से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, अगर वहां कोई दिक्कत आती है तो आप SSP महोदय के समक्ष अपनी।
0: सर दिक्कतें तो बहुत आती है, कभी कभी आपकी जो शिकायत होती है इतनी जल्दी दर्ज तो होती
1: बिल्कुल है। कई केसेस में हमने देखा है, हमारे पास भी केसेस आते हैं कि पुलिस के पास जाते हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं होती है, तो उस केसेस में हम लोग कोर्ट की शरण भी लेते हैं, कोर्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पे भी FIR दर्ज होती है। तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है ये, पहले आपको एक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, आपको चौकी, जो नजदीकी चौकी है वहां पे आप कंप्लेंट करिए, फिर आप SHO के पास जाइए, उसके बाद अगर आप वहां से भी आपको FIR रजिस्टर्ड नहीं हो रही है या आपको टाला जा रहा है बार बार, तो आप SSP महोदय के पास भी आप अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप न्यायालय की शरण में जाके भी FIR पंजीकृत करा सकते हैं।
0: तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जीरो FIR क्या होता है?
1: देखिए जीरो FIR यदि घटना किसी दूसरे जिले या राज्य से में हुई हो तब भी निकटतम जो पुलिस स्टेशन में जीरो FIR दर्ज कराई जा सके, मतलब घटना किसी दूसरे स्टेट में हुई है सपोज करिए, ठीक है, तो जो भी निकटतम थाना होगा वहां पे भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं, बाद में उसी संबंधित थाने में भेज दिया जाता है जो उससे संबंधित थाना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे साथ घटना हुई है और थाना मेरा जो है, जो पास में नजदीकी थाना है, वो मेरे क्षेत्र में नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। जीरो FIR आप वहां भी दर्ज करा सकते हैं,
0: और
1: जहां क्राइम हुआ है संबंधित थाने में वो FIR वहां पे भेज दी जाती है, उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है पीड़ित को तुरंत हेल्प करना होता है, ऐसा नहीं कि आप सपोज करिए कि एक वारदात हुई है यहाँ पे और संबंधित थाना ये नहीं लगता है, संबंधित थाना दूर है, तो जो भी नजदीकी थाना है आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ आपकी जीरो FIR दर्ज होगी, उसके बाद वो जीरो FIR दर्ज होकर संबंधित थाने में ट्रांसफर हो जाती है।
0: तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन घूमता है, क्या एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोई एज लिमिट होता
1: नहीं,
0: है?
1: नहीं, कोई एज लिमिट नहीं होती है। जो पीड़ित है, कोई भी पीड़ित हो, चाहे वो महिला हो, स्त्री हो, किसी भी उम्र का हो, उसका अधिकार बनता है। अगर उसके साथ कोई भी क्राइम हुआ है, कोई अपराध हुआ है, तो आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र हैं, आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
0: पुलिस स्टेशन में एक नागरिक के क्या अधिकार है?
1: देखिए, हर नागरिक को सम्मानजनक व्यवहार पाने का अधिकार होता है, शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होता है। यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण भी बताना होता है पुलिस को।
0: जी जी,
1: ठीक है। और परिवार को सूचना भी दी जाती है कि भाई ऐसे ऐसे हम इस केस में अरेस्टिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस किसी अपराध में या एक्यूज को अगर वो अरेस्ट भी कर रही है तो आप उसको एक ह्यूमन राइट्स के तहत आप उससे बदतमीजी नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप उसको कस्टडी में ले रहे हैं तो ये उसका एक, जिस एक्यूज को गिरफ्तार किया उसका भी राइट बनता है कि उसको वो जाने कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। उसके परिवार को

0: सूचना देनी पड़ेगी पुलिस को कि भाई ऐसे ऐसे इसने अपराध किया था और इसकी गिरफ्तारी जरूरी है, इसलिए हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं, और उसको अपने एडवोकेट से, अपने वकील से मिलने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि
1: मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एकदम आप बिना किसी को सूचना दिए,
0: बिल्कुल भी आपको कानून को ना चाहिए। आपको अगर कोई पुलिस अधिकारी भी आपको अरेस्ट कर रहा है तो आपको ये जानने का अधिकार है कि मुझे किस जुर्म में आप यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हो। आप अपनी फैमिली वाले को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, आप अपने वकील से भी मिल सकते हो, ये आपका राइट बनता है। ठीक है, तो आपको अपने राइट पता होने चाहिए। पहली चीज ये कि आप अगर कोई क्राइम ऐसा करे ही नहीं कि आपको ये सारी नौबत झेलने को आए, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको कुछ केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि अधिकतर फर्जी केसेस भी कई बार दूसरी पार्टी करा देती है,
1: क्वेश्चन में पूछने
0: और उसमें ये होता है कि पुलिस अगर कोई एक्शन भी लेती है तो आप सबसे पहले जो अपनी फैमिली मेंबर्स को बताएं, पुलिस अधिकारी से पूछें कि आप मुझे किस जुर्म में अरेस्ट करने आए हैं यहाँ पे, और आप अपने वकील को भी तुरंत फोन करते हैं, आपका वकील से भी आप अपने कंसल्ट कर सकते हैं और आपका राइट बनता है।
1: मतलब कोई भी आपके ऊपर जैसे झूठा ही केस किसी ने लगा दिया
0: जी
1: और उस पे आपको अरेस्ट करने आ रहे, तो उसके लिए मतलब वो अपने लिए आवाज उठा ही सकता है।
0: देखिए
1: कभी कभी इस केसेस में सर उसको मौका ही नहीं मिलता।
0: मोस्टली केसेस में क्या होता है कि पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट नहीं करती है। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा गाइडलाइंस ऐसी सुप्रीम कोर्ट की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की आ गई हैं कि बिना इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस किसी को अरेस्ट भी कर लेती है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तो वो पुलिस के ऊपर भी एक्शन हो सकता है। तो मोस्टली केसेस में पुलिस अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद ही वो एक्यूज को अरेस्ट करती है और प्रॉपर उसका अरेस्ट मेमो बनता है, प्रॉपर उसको जो है उसके घर वालों को सूचना दी जाती है कि किस वजह से हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस होती है, एक लीगल प्रोसेस, उसको फॉलो करके ही पुलिस ऑफिसर्स आगे बढ़ते हैं और जो है फिर वो केस कोर्ट में जाता है। कोर्ट में एक एज पर प्रोसेस जो कोर्ट के डायरेक्शन होते हैं उसको भी पुलिस वालों को मानना पड़ता है।
1: क्या बात है। तो ये क्वेश्चन हमारा सर अगला महिलाओं से रिलेटेड है, महिलाओं के लिए कानून में क्या विशेष प्रावधान है?
0: देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। जैसे संवेदनशील मामले में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही बयान दर्ज किए जाते हैं। सपोज करिए कोई रेप का केस आ गया, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि भाई एक महिला, एक तो वैसे ही उसके साथ गलत काम हुआ है, फिर किसी जेंट्स को अधिकारी नियुक्त कर दे तो ऐसा नहीं होता। महिला का अगर कोई केस है वो बहुत ही संवेदनशील मैटर है तो महिला अधिकारी को ही नियुक्त किया जाता है कि भाई आगे की इन्वेस्टिगेशन आप करो। कुछ ऑन द रिकॉर्ड्स चीजें ऐसी होती हैं कि वो एक जो एक लेडीज से बात कर सकती है, वो ज्यादा इजी रहता है। तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बयान दर्ज किए जा सकते हैं और कानून के अनुसार विशेष जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया का पालन कराया जाता है।
1: साइबर फ्रॉड होने पर क्या करें?
0: देखिए, ऑनलाइन ठगी आजकल बहुत देख रहे हैं हम लोग कि अधिकतर आप देखते हो कि हमने भाई अभी एक फोन आया था और हमारा फोन हैंग हो गया और पैसे कट गए हमारे, या जो है बैंक फ्रॉड में हो जाता है, या यूपीआई से कई बार फ्रॉड हो जाता है। सोशल मीडिया पे आजकल प्रलोभन दिए जाते हैं कि आप जो है ऐसे ऐसे एक लिंक को क्लिक करें और आपके पैसे इसमें जो है अकाउंट में आएंगे, तो कई केसेस आते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले साइबर हेल्पलाइन पे अगर कोई भी ऐसी बात है, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 1930 नंबर नोट कर लीजिए आप,
1: 1930।
0: अगर कोई भी आपके साथ ऐसी अप्रिय घटना हुई है, साइबर फ्रॉड होता है या आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं जो आपने ट्रांजेक्शन नहीं करी है, तो आप सबसे पहले 1930 नंबर मिलाएं, ठीक है, वहाँ पे आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उसके बाद साइबर पुलिस में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी जल्दी आपकी जो पॉसिबिलिटी है रिफंड आने की, जो आपका पैसा कटा है वो आपको रिटर्न मिल सकता है। तो जितनी जल्दी आप साइबर क्राइम में आप शिकायत दर्ज कराएंगे, उस पैसे को जो साइबर पुलिस होती है, जो साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस एड्रेस को देखते हैं, तो अगर आप शिकायत दर्ज करा देंगे तो वो अमाउंट चेक करते हैं कि किस खाते में गई, तो उसको फ्रीज कर लेते हैं वो।
1: ओके,
0: हाँ, तो आप 1930 पे कंप्लेंट नंबर है उस पर आप शिकायत दर्ज कराएं और तुरंत तत्काल इसकी सूचना साइबर थाने में दें जरूर और FIR अपनी दर्ज कराएं उसमें।
1: सर फिर तो इसका मतलब ये भी हो गया ना कि कोई इंसान किसी नंबर पे कर रहा है, गलती से कोई और नंबर, एक नंबर मिस्टेक हो गया।
0: नहीं, मिस्टेक्स हो जाती है, उसका एक प्रॉपर जो है एक प्रोसेस के थ्रू हम उस चीज को, पैसे को हम वापस ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आप 1930 पे आप पहले अपनी जो भी आपकी कंप्लेंट है आप उसको लॉन्च कराएंगे, फिर आप उसको जो है साइबर थाने में जाएंगे, आप वहाँ पे जो पुलिस ऑफिशियल हैं उनको आप बताएंगे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ऐसे ऐसे मेरे खाते से पैसे कटे हैं, तो निश्चित तौर पे आप जितनी जल्दी आप अपनी कंप्लेंट बताएंगे उतनी जल्दी उसमें रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें।
1: सो सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति FIR दर्ज कराने जाता है तो सबसे पहले वो पति क्या करते हैं?
0: देखिए एफआईआर दर्ज कराने आते हैं तो सबसे पहले आपको एक शांत रहना चाहिए है ना, उसके बाद आप जो एक पुलिस अधिकारी से जो भी वहाँ पे इंचार्ज हूँ उनको आप पोलाइटनेस के साथ में आप अपनी पूरी बात बताइए। लोग क्या करते हैं अधिकतर हमने देखा है कि बड़े एग्रेशन में चले जाते हैं थाने में और जाके साहब ये हो गया वो हो गया, एक की चार बातें बता के आते हैं वहाँ पे,
1: तेवर में चले जाते हैं,
0: तेवर में भी जाते हैं, फिर जो एक्चुअल जो घटना हुई नहीं होती आप वो भी उसमें जोड़ देते हैं कि आप किसी की कहाँ सुनी हुई, तो कहाँ सुनी छोड़ के वो कहता साहब मेरी कहाँ सुनी हुई, इसने मुझे मारा भी, मेरे पैसे भी छीन लिए और चार बातें और एक्स्ट्रा बताता है, उस केस में पुलिस आपकी एफआईआर क्यों दर्ज करेगी? जब आप उस पुलिस को ही मिसगाइड कर रहे हो, आप आपके साथ जो एक्चुअल घटना हुई जो एक्चुअल इंसिडेंट हुआ वो तो आप बता नहीं रहे हो और आप उसको बता रहे नहीं साहब मेरे साथ लूट हो गई, मेरे साथ मारपीट हो गई, मेरे पैसे छीन लिए, तो अब जब आप एक की चार चीजें बताओगे तो पुलिस ऑब्वियस समझ जाती है सब बात,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो लोग इतने
1: हाव भाव से
0: समझ जाते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पता है,
1: बिल्कुल
0: ठीक है। तो अगर आप अपनी सही चीज पुलिस को आप सही जानकारी नहीं दोगे तो वो आपके एफआईआर क्यों दर्ज करेंगे? तो पहली चीज है कि आपके साथ जो एक्चुअल घटना हुई है आप पुलिस को बताइए कि ऐसे ऐसे बात हुई है, तो निश्चित तौर पे पुलिस ऑफिशियल्स आपकी हेल्प करेंगे और एफआईआर भी आपकी लिखी जाएगी।
1: बिल्कुल सर, वो तो झूठ बोलते तो इंसान के फेस पे ही दिख जाता है, मतलब वो क्लियर बता नहीं पाता।
0: आपको एक जानकारी और देता हूँ कि झूठी सूचना देने पर पुलिस आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, आपके ऊपर ही एफआईआर दर्ज हो सकती है।
1: अच्छा, उल्टा ही हो जाएगा
0: जी, अगर आपने कोई झूठा सबूत दे दिया है, आपने कोई झूठी इन्फॉर्मेशन पुलिस में दे दी तो आप भी फंस सकते हैं, आपको लीगल केसेस का और एफआईआर का सामना कर सकता है, पुलिस आपके खिलाफ भी झूठी सूचना देने का मुकदमा दर्ज करा सकती है।
1: तो श्रोताओं यहाँ पर हम लेते एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ।

0: वंस अगेन एक बार और आप सभी का वेलकम है श्रोताओं। आपने बहुत ही शानदार गाना सुना है और हम आपके साथ ही कनेक्ट है। सो अब तक की बातचीत में हमने जाना कि FIR किसी भी आपराधिक मामले में कितनी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, FIR एक कानूनी प्रक्रिया है। इसका इस्तेमाल सोच समझकर और सच्ची जानकारी के साथ ही करना चाहिए। कई बार गुस्से, गलतफहमी या किसी को परेशान करने की नीयत से लोग झूठ शिकायत या झूठी FIR दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी जानकारी देता है या किसी निर्दोष को फंसाने में कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। यानी कानून सिर्फ पीड़ित की ही नहीं बल्कि निर्दोष व्यक्ति की भी सुरक्षा करता है। तो आइए आगे बात करते हैं सर से, क्या झूठी FIR दर्ज कराने पर भी कार्रवाई हो सकती है?
1: ये तो मैंने अभी बताया आपको, बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज कराता है या किसी के खिलाफ, तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। इसलिए हमेशा सत्य और सही तथ्य ही आपको बताने चाहिए।
0: तो श्रोताओं, आज के इस शो में हम रैपिड फायर करने वाले हैं सर के साथ, यानी कि आप सभी को पता है कि इससे क्वेश्चन पूछने में सर बड़ा मजा आता है। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है, FIR कॉपी मुफ्त मिलती है?
1: हाँ।
0: जीरो FIR क्या किसी भी थाने में हो सकती है?
1: यस।
0: क्या बिना पढ़े हस्ताक्षर कराना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं।
0: क्या पुलिस से सम्मानजनक व्यवहार पाने का अधिकार है?
1: हाँ।
0: क्या झूठी FIR कराना अपराध हो सकता है?
1: यस।
0: आम जनता के लिए सर आपका कोई संदेश जो आप देना चाहेंगे?
1: बस यही है कि आप अपने लीगल राइट्स को जानें, आपके जो अधिकार हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या क्या राइट्स हैं आपके पास में। कानून से डरे नहीं, कानून को समझे। मैं इसलिए कह
0: सही बात है,
1: कानून से डरना नहीं है आपको, कानून को समझना है आप, ठीक है?
0: बहुत व्यक्ति तो सर FIR दर्ज कराने से पहले सोचते हैं, डरते हैं कि क्या होएगा।
1: अपने अधिकारों की जानकारी रखें आप, लेकिन अपने कर्तव्यों का भी पालन करें साथ साथ, और जागरूक नागरिक ही न्यायपूर्ण और सुरक्षित समाज की नींव रखते।
0: तो श्रोताओं, आज के इस बातचीत में हमने बहुत सी जानकारियां प्राप्त करी है FIR के बारे में। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर आपको शिकायत करनी है तो देखिए, एक तो हमें डिसीजन तुरंत लेना है। अगर आप ये सोच रहे कि डिसीजन 1-2 दिन बाद या 10 दिन बाद ले, तो उसमें आप डिले हो सकता है, लेट हो सकता है। दूसरी बात कि कोई भी FIR दर्ज कराने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी डरिए मत, क्योंकि ये आपका अधिकार है और FIR दर्ज आप करा सकते हैं। लेकिन झूठी अफवाहों पर आपको FIR दर्ज नहीं करानी है। अगर आप झूठी FIR दर्ज कराते हैं तो आप ही फंस सकते हैं। तो इसलिए बचिए, सही जानकारी के साथ जाइए, क्योंकि इसके लिए आपको सर ने जैसा कि बोला ये कि कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में होता है, तो आप आसानी से करवा सकते हैं, चाहे कोई भी

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
2: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
1: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
2: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
1: समरस

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। दिल्ली कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक के मसौदे को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ा नीतिगत बदलाव किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम में 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। दिल्ली पुलिस ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल से हर घर तिरंगा अभियान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्य क्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी कानूनी ढांचा तैयार करना है। उन्होंने कहा कि विधेयक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों और उनके ऑफ कैंपस सेंटर्स के लिए दिल्ली में स्थापित होने का रास्ता भी साफ करेगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि विधेयक में छात्रों के हितों की सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। लागू आरक्षण नीति के अनुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम में 25% सीट दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी। दिल्ली मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा।

0: दिल्ली नगर निगम ने आज सिविक सेंटर में 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया। इसमें 17 स्पेशल एजुकेटर भी शामिल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की चिकित्सा जांच और स्वास्थ्य निगरानी के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया और उनके परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को गति देना दिल्ली नगर निगम को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है तो काम कैसे होगा, नर्सिंग स्टाफ नहीं है तो काम कैसे होगा। इसलिए जरूरत है जिस रेशो में पेशेंट बढ़ रहे हैं उसी रेशो में फैसिलिटीज भी बढ़नी चाहिए। मुझे खुशी है आज यहाँ पे नियुक्ति दी जा रही है। ये एक मानवीय सोच इस नगर निगम की दिखाता है कि साधारण बच्चे नहीं स्पेशल बच्चों के लिए भी सरकार काम कर रही।
0: दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने इस अवसर पर कहा कि आज परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसमें नए नियुक्त कर्मचारी और अनुकंपा के आधार पर नियुक्त लोग शामिल हैं। महापौर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम उनके कर्मचारियों के कल्याण, सम्मान और अधिकारों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: दिल्ली नगर निगम के हेल्थ सेंटर्स, हमारे स्कूल्स, सुरक्षित माहौल, एक बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर के साथ साथ बेस्ट टीचर्स के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। दिल्ली नगर निगम बिल्कुल मॉडल और ये जो पब्लिक स्कूल है उनके समकक्ष आकर खड़ा हो गया है। निश्चित रूप से जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें नई योजनाएं लाकर नई बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर दिलशाद गार्डन के समीप स्थित कांवड़ सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांवड़ सेवा शिविर में निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों से संवाद कर उनकी यात्रा व व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली और सभी के मंगलमय, सुरक्षित और सफल कांवड़ यात्रा की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि किसी भी शिव भक्त व कांवड़ सेवा शिविर को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार की ओर से कांवड़ समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके तहत 20,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में 6 से 12 दिन तक संचालित होने वाले बड़े कांवड़ शिविरों को अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रावण मास में हजारों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कांवड़िया भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में पूजनीय और सम्मानीय है तथा इस वर्ष बड़ी संख्या में महिलाएं भी कांवड़ यात्रा में शामिल हो रही हैं।
1: जो है समय शिव में हुई हुई है और कांवड़िए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दिल्ली राज्य पूरी मुस्तैदी के साथ में सभी कांवड़ लेके आने वाले शिव भक्तों का स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है।
3: दिल्ली सरकार द्वारा कांवड़ सेवा समितियों को वित्तीय सहायता, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात प्रबंधन, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार दिल्ली के सभी 13 जिलों में बाल भिक्षुक मुक्त दिल्ली, चाइल्ड बेगर फ्री अभियान शुरू करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य भीख मांगते पाए जाने वाले बच्चों की सुरक्षा करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। मुख्यमंत्री ने वीडियो के माध्यम से ये भी बताया कि बच्चों को जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर परिवारों की काउंसलिंग की जाएगी, उनकी मुश्किलों को समझा जाएगा और बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली की विधि विज्ञान प्रयोगशाला का दौरा किया। श्री सूद ने प्रयोगशाला के कामकाज, वैज्ञानिक आधारभूत संरचना, फॉरेंसिक जांच सुविधाओं और समग्र कार्यप्रणाली की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि निरीक्षण के बाद आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधनों और अधिक दक्षता के जरिए जांच प्रक्रियाओं को मजबूत करने के बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विश्व बंधुत्व रक्तदान महाअभियान का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने आयोजित किया। इस अवसर पर श्री नवीन ने कहा कि रक्तदान के माध्यम से जीवन बचाने और युवाओं को नशे से दूर रखने हुए राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित बनाने का ये संकल्प मानवता की सच्ची सेवा का संदेश देता है।
4: कई बार थैलेसीमिया के कैंप में जाने का मौका मिला, मैं जब उन बच्चों को देखता था तो मुझे लगता था कि आखिर उनका दोष क्या है, पर कहीं ना कहीं प्रकृति ने उनसे उस दोष को उसके जीवन में डाल दिया। और जब रक्त की बात आती है और थैलेसीमिया के बच्चों को जो सहयोग रक्तदान के रूप में मिलता है, निश्चित रूप से एक आत्मसंतुष्टि मिलती है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में अवैध रूप से रह रहे 7 विदेशी नागरिकों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार खुफिया जानकारी और रिकॉर्ड्स की पड़ताल के जरिए पुलिस की टीमों ने 7 अफ्रीकी नागरिकों की पहचान कर उनका पता लगाया है। इनमें 5 नाइजीरियाई के और 2 घाना के नागरिक शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों से आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराकर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर साझा करें। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने बच्चों को देश की स्वतंत्रता में किए गए लोगों के तप, त्याग और बलिदान के बारे में बताने की अपील भी की। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज से 12 अगस्त तक वंदे मातरम अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द मदरलैंड कार्यक्रम आयोजित करेगा। आज वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई। इसमें दुर्लभ दस्तावेज और तस्वीरें प्रदर्शित की जा रही हैं। कल बहुभाषी सुलेख प्रदर्शन और 11 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के करीब 20 विद्यालयों के बीच समूह गायन प्रतियोगिता होगी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रस्तुति देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति के एक संगीतमय कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि 32 वायु सैनिकों और 8 अग्निवीर वायु की एक टीम ये प्रस्तुति देगी। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू को आज अमृतसर के अजनाला में स्थित गुरुद्वारा गुरु का बाग में SGPC ने सम्मानित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने बताया कि अजनाला का ये गुरुद्वारा ऐतिहासिक स्थल है। यहां वर्ष 1922 में सरदार तेजा सिंह समुद्री के नेतृत्व में गुरु का बाग मोर्चा हुआ था। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये संघर्ष अनुशासित और अहिंसक प्रतिरोध का सशक्त उदाहरण है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय डाक विभाग डाक सेवा उपहार के अंतर्गत उपहार और पुरस्कार दे रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि भारतीय डाक का किसी भी डाक सेवा उपहार ऑफर पुरस्कार योजना या लकी ड्रॉ से कोई संबंध नहीं है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय कई जगह पर हल्की से तेज वर्षा हुई। आज का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक के मसौदे को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम ने 187 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। दिल्ली पुलिस ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल से हर घर तिरंगा अभियान शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

लोग मुझसे कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, अच्छे लोगों से मिलोगे तो अच्छा ही लगेगा ना। हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। आनंद के साथ जुड़ चुके हैं एक और खूबसूरत से माहौल में, और ये माहौल आज का और भी ज्यादा

0: खूबसूरत होने वाला है और भी ज्यादा शायराना वाला जो ये माहौल है अब होने वाला है। और आज की जो ये अमेजिंग सी वाइब है इसमें हम सिर्फ शायरी नहीं बहुत सारी चीजें आज आपके लिए लेकर आए हैं। और एक बहुत ही कमाल के शख्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, गीत संगीत का सिलसिला भी चलेगा और प्रोग्राम जो है ये और भी खूबसूरत हो ही जाता है जब ये जनाब हमारे बीच में आते हैं। मैं किन की बात कर रहा हूँ जरूर मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ अगर आपको इनकी बात या मेरी बात कुछ भी पसंद आए तो आप इस बीच हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो आइए सर का स्वागत करते हैं। सर एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद आनंद, मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जैसा कि ये माहौल भी है मौसम भी है।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो इसमें आपने मुझे याद किया, आपने मुझे अपना समय दिया, श्रोताओं के लिए मैं उनसे रूबरू होने का मेरा सौभाग्य मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है।
0: क्या बात है, और आपने अपना नाम तो बता ही दिया होगा
1: नाम तो कोई नया नहीं है
0: लेकिन हमारे लिस्टनर को, हमारे जो लिस्टनर है ना वो हर बार नए नए होते हैं
1: जी, तो मेरा
0: पता तो होना चाहिए।
1: जी जी, मैं बता दूं, खाकसार को मनोज वर्मा मनु कहते हैं, आपके ही शहर से ताल्लुक रखते हैं और जैसा कि पहले भी ये बात हो चुकी है शायरी में और कविता में दोनों में ही कुछ कहने की कुछ सीखते रहना प्रयास रहता है।
0: बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है हर शायर के अंदर हर कलाकार के अंदर ये खूबसूरत प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए, है ना?
1: जी,
0: आप जिस फील्ड में हैं यहाँ पर हर दिन एक नई चीज, हर घंटे एक नई चीज जन्म लेती है।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये सृजन की बात है।
0: हाँ।
1: जैसे प्रकृति, जैसे नेचर अपने आप को क्षण क्षण चेंज करती है, वैसे ही जैसे जैसे प्लॉट मिलते हैं वैसे वैसे एक कलाकार या एक लेखक या एक शायर या एक गीतकार वहां से उसे उस ऊपर वाले की नियामत से जो माँ सरस्वती का वरद हस्त उसे प्राप्त होता है, उसके अनुकंपा जो उसे प्राप्त होती है तो उसे वो बनाता है।
0: क्या बात है, इतनी शुद्ध हिंदी, ये अगर बोलेंगे तो आज मैं अच्छा अनाउंसर बन ही जाऊंगा मतलब इतनी अच्छी हिंदी तो मैंने पढ़ी नहीं, जितनी आज मैं सीख रहा हूँ।
1: आप ऑलरेडी बहुत अच्छे अनाउंसर हैं।
0: आपसे बात करके मुझे एक चीज लगती है साहब कि मतलब ऐसे लगता है मैं किसी प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ साक्षात, कोई मेरे साथ मेरा रेडियो साथी बैठा है, क्योंकि आप इतने अच्छे से शब्दों का उच्चारण करते हैं, इतनी बढ़िया वॉइस क्वालिटी है, तो वो थोड़ा सा एक फील हो जाता है मुझे। चलिए आज आपको बताइए
1: आनंद जी, आपकी ये जर्रा नवाजी है,
0: ये तो सर
1: हम इस काबिल कहां
0: सर, ये तो आपका प्यार है,
1: लेकिन ये है कि चूंकि मामला चाहे आपका है या हमारा है
0: जी जी,
1: उसमें शब्दों से जुड़ा है
0: बिल्कुल,
1: तो अधिकतर ये कोशिश रहती है कि प्रोनाउंसिएशन उसका सही हो सके, जहां हम अपने उस शब्द को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो उस एनवायरमेंट में बैठने लायक हो, उस बात को अपनी अदा करने लायक हो, तो बस यही हमारी सफलता होती है।
0: यही चीजें सीखने सिखाने में बहुत आनंद आता है आनंद को, और जब ऐसे अच्छे लोग आते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है। तो लिसनर अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुन के वापस आएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए,

0: तो वेलकम बैक एक बार फिर से मनु जी, मैं आपकी तरफ सबसे पहले तो आपका स्वागत करूंगा और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब भी आप स्टूडियो में आते हैं तो आपको यहाँ का वातावरण कैसा लगता है? बाहर निकलने के बाद एक अलग माहौल होता है, स्टूडियो में आने के बाद, माइक के पास करीब आने के बाद आपको कैसा लगता है?
1: जाहिर सी बात है कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी एग्जाम हॉल में कोई विद्यार्थी परीक्षाएं देने जाता है।
0: अरे वाह, क्या बात है। लेकिन आपके दिल के करीब है ना, क्योंकि इन सब चीजों से तो आपका जुड़ाव पहले से ही रहा होगा, आई एम श्योर।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल क्या है कि यही तो हमारी जान भी होती है।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: ये जो माइक है, ये जो श्रोताएं हैं, तो इसके बिना तो कोई रचनाकार कुछ नहीं है, कोई कलाकार कुछ नहीं है।
0: क्या बात है,
1: उसकी जो जान बसती है वो उसके श्रोताओं में बसती है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो डर भी कि हम अपने श्रोताओं को अच्छे से अच्छा दे सकें, अपना बेस्ट दे सकें, बस यही चीज है।
0: कई मर्तबा हमने इनसे बात करने का प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया कनेक्शन। फाइनली जैसे तैसे बातचीत करके आज हमने इनको बुला ही लिया। उपस्थिति तो कल ही थी लेकिन किसी कारणवश कल हो नहीं पाए, कल ये बारिश में कहीं भीग गए, क्योंकि आजकल मौसम भी सुहाना हो रहा है। मुरादाबाद की बारिश ऐसी है पता ही नहीं चलता है कब आ जाती है साहब।
1: नहीं नहीं बिल्कुल,
0: सुबह में धूप है तो शाम में बारिश है।
1: आजकल मौसम इसीलिए इसी तरह से मेहरबान है।
0: मैंने आज आपको बुलाया, आप समझ रहे ना मेरा इशारा, आज हम अपने श्रोताओं को कुछ नया देने वाले हैं। मौत ना खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली है और मतलब बारिश की जो बूंदे है वो कहीं ना कहीं एक शायर के मन के हिसाब से देखा जाए तो कैसी होनी चाहिए, क्या कहता है एक शायर इस मौसम में, क्योंकि हर एक मौसम का अपना एक लहजा होता है सर, है ना, अपना एक मजा होता है हर एक मौसम का।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही,
0: देखते हैं मनु जी क्या इस पे आपको बताने वाले हैं आज।
1: नहीं बात सही है आपकी, देखिए बारिश का जो मौसम है ये अपने आप में क्या क्या समेटे हुए है, अब मैं क्या बताऊं। दरअसल क्या होता है कि बारिश के इस मौसम में जिसके साथ जो बीती होती है वो वही अनुभव करता है।
0: बिल्कुल सही बात,
1: अगर बात नायक और नायिका से कही जाए तो जिनको अपने साथी की कुर्बत, जिनको सानिध्य हासिल होता है, वो उसी तरह से यहाँ पर प्रफुल्लित होते हैं, और जो जुदाई में होते हैं वो वैसे ही बेचैन हो जाते हैं। और अगर हम सोचें कि इसका जो वास्तविक मतलब है, तो एक किसान आंख उठा के ऊपर देखता है कि कब ऊपर से बारिश बरसेगी और कब मेरी धरती सोना उगलेगी। तो ये मौसम हर किसी के लिए अपने अलग अलग मानी रखता है, हम शायरों के लिए भी, हम रचनाकारों के लिए भी ये उसी तरह से है।
0: क्या बात है, और उन्हीं में से एक रचनाकार मनु जी हैं, इनके जो शब्द हैं वैसे सर करके बाहर निकल रहे हैं मोतियों की माला की तरह, एकदम एकदम सही फ्लो में और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यही खूबसूरती होनी भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ अपना एक यूनिक टैलेंट होता है, गाने का हो, सुनाने का हो, चाहे बोलने का हो, क्योंकि हर किसी में हर एक कला नहीं होती सर, राइट। हर किसी की कला बहुत अलग है, हम किसी को जज भी नहीं कर सकते हैं। हर किसी के बोलने का तरीका अलग है, हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप पूरी एक पूरी डायरी लेकर आए हैं और बड़ी खूबसूरत लाइनों में आपने कुछ लिखे हुआ है, तो ये आप खुलते हैं?
1: हाँ,
0: राइटिंग तो बड़ी प्यारी है सर आपकी, सर्दी में डायरी देख रहा हूँ, बड़ी सुंदर सी क्यूट सी लिख के लेकर आए हैं और काफी पुरानी भी लग रही है मुझे।
1: माँ सरस्वती की कृपा है जो शब्द उतरते हैं,
0: ये पुरानी डायरी है, जरा ये बताए आप लिसनर को।
1: ये सिलसिला तो चलता रहता है असल से।
0: क्या, अरे क्या बात है दोस्तों, आपको हम दिखा नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन करा सकते हैं। आप महसूस कर पा रहे होंगे हमारी इन बातों से कि हम अभी डायरी खोल रहे हैं और डायरी में जो लिखावट है वो शायद आप महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि एक शायर की कलम से जब बातें निकलती है ना तो वो सिर्फ बातें नहीं होती है, उसमें एक जज्बात होते हैं, राइट, उसमें इमोशन होते हैं, फीलिंग्स होती है।
1: बेशक, अगर ये इमोशंस ना होते तो शायद शायर ना होते।
0: क्या बात, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बातें करते हैं। और अभी तो सिर्फ हमारी बातें हुई हैं, अब सिलसिला शुरू होगा, तो सिलसिले से पहले एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, उसके बाद जल्दी से वापस आएंगे और कुछ मनु जी से बेहतर सुनेंगे। आज मौसम इतना अच्छा है, मौका इतना बढ़िया है, सब कुछ तो हमारे आसपास है, तो इसको और ज्यादा इंजॉय करेंगे। आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही जुड़े रहिए, सुन रहिए FM मुरादाबाद 89.6 RJ आनंद के साथ।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो, आपका अपना फेवरेट देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद, और हमारे साथ मनु जी स्टूडियो में उपस्थित हैं। ढेर सारी बातें कर रहे हैं। शायद मैं इनका नाम थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट नाम मुझे भी अच्छा लगता है। सर का भी शायद ये प्यारा सा शॉर्ट वाला नेम है, इसको हम ले सकते हैं ना? इजाजत है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ये मेरा उपनाम है, सकते हैं आपका, इसी से मेरे रचनाकार होने का पता चलता है।
0: तो बहुत सारे ऐसे आपके श्रोता और साथी हैं जो आपकी आवाज सुनकर आपका चेहरा इमेजिन कर रहे होंगे, अच्छा ये वही मनु जी हैं जो हमेशा मुस्कान लिए घूमते रहते हैं, जब भी इन्हें मिलो मुस्कुराते हुए मिलते हैं,
1: आप कह सकते हैं।
0: तो अभी जो है हम चाहेंगे सर, अभी आप मुझे ऑफ एयर कोई गीत सुना रहे थे, उसकी दो लाइनें अगर हमारे श्रोताओं के लिए हो जाएं। मौसम इतना अच्छा है, मॉनसून भी कहीं ना कहीं दस्तक दे ही चुका है अब।
1: बिल्कुल, बल्कि अपने शबाब पर है इस समय।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: आपने गीत की बात रखी है तो मौसम से ही मुतालिक मैं एक गीत रखता हूं आपके सामने।
0: जरूर,
1: और बल्कि उसे अपने श्रोताओं के लिए गुनगुनाने की भी कोशिश करता हूं। ये एक देखना है कि मैं कहां तक सफल हो सकता हूं।
0: अरे वाह।

0: संयोग या वियोग, या तो मिलन या जुदाई, तो सबका अपना अपना मजा भी है और ये गीत भी उन्हीं कड़ियों को लेकर के चलता है। आप ये समझिए कि बस ये आगे चलता रहेगा और चीजें खुलती रहेगी।
1: वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लेकिन सर एक चीज तो आपने बड़ी अच्छी बोली इस पूरे में, जो मुझे मैंने नोट करी कि जैसे आपने बताया ना कि जो एक रचनाकार होता है वो किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है।
0: बिल्कुल,
1: वैसे
0: बिल्कुल
1: ही कोई अनाउंसर है, उद्घोषक है, कोई एक्टर है, वो किसी एक का नहीं होता, वो सबके लिए होता है। क्योंकि वो कोई भी बात अगर बोल रहा है तो वो किसी एक के लिए नहीं बोल रहा, वो सबके लिए बोल रहा है। कोई रचनाकार अगर कोई रचना लिख रहा है तो उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो हर एक सुनने वालों को लगेगा कि वो मेरे लिए है, है ना।
0: बिल्कुल,
1: वो फील और वो मैजिक आपकी उस शब्दों में होना चाहिए, उस रचना में होना चाहिए कि जो उसे पढ़े सुने उसको ऐसा महसूस हो कि तो मेरे लिए लिखा है मनु जी ने, तभी वो सक्सेसफुल भी हो,
0: तभी उसके सार्थकता है। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि ये हर कला के क्षेत्र में ऐसा है।
1: जी जी,
0: क्योंकि जब ऊपर वाला किसी बंदे को किसी कला से किसी हुनर से नवाजता है,
1: जी जी,
0: तो जाहिर सी बात है कि वो फिर अपना अपने लिए नहीं रह जाता।
1: ये बिल्कुल सही बात है,
0: है ना। जैसे कि साहित्य की बात है, आप मुझे याद आता है मेरा नाम जोकर, आपने पिक्चर देखी होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी।
0: उसमें जो आदरणीय राज साहब ने, राज कपूर साहब ने जो अभिनय किया था, उस अभिनय में एक आपने देखा होगा कि उनकी अपनी माँ उस समय उस दुनिया में नहीं रही है और उन्हें अगला शो करना है जो पब्लिक के लिए करना है, तो उन्होंने उस अपनी उन भावनाओं को भी दरकिनार करते हुए जो उनके श्रोता थे, जो उनके दर्शक थे, उसके लिए अपना समर्पित हो करके पूरा अपना प्रोग्राम दिया।
1: ये तो खैर मैं यहाँ पे तो इस चीज को तो मैं भी अग्री करता हूँ कि बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में भी चल रही होती हैं लेकिन हम सब वो गेट के बाहर ही छोड़ के अंदर आते हैं। ये बिल्कुल सच है। अभी भी मेरी लाइफ में, मैं हर इंसान अगर जीवन में आया तो उसकी जिंदगी में परेशानियां आना स्व जेन्युइन है, बहुत नेचुरल सी बात है। इंसान है हम यार, यही तो है नहीं, है ना, हम कंप्यूटर तो है नहीं, जो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी सबकी जिंदगी में आती है। लेकिन जब हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है, जब हमारे सर पे एक ठेकरा होता है कि भाई उसे अब हमें निभाना है, फिर सब कुछ भूल जाते हैं।
0: नहीं सर, आप कह रहे हैं सही बात है, लेकिन बात यह है कि जो AI का आपने देखा होगा आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी इंसानों की तरह सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। वो फील कर रहा है कि वो अपनी बात को उन भावों के साथ रख सके जो उसका ओनर है।
1: लेकिन फिर भी सर इंसान तो इंसान ही होता है,
0: इंसान तो इंसान है,
1: जिसको ऊपर

0: स्वागत है एक बार फिर से आपका। आप आनंद के साथ जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में। मनु जी हमारे साथ हैं और आज की ये जो महफिल है वो और भी खूबसूरत हो रही है सर की बातों से, सर के अल्फाजों से, और कुछ न कुछ हम भी बीच बीच में तड़का लगाते ही रहते हैं तभी माहौल और अच्छा बन जाता है। बड़ी खूबसूरत एक लाइन मेरे जहन में आई तो मुझे लगा आपके साथ साझा करनी चाहिए कि पहली बारिश का नशा ही कुछ अलग होता है। पहली बारिश का नशा ही कुछ अलग होता है, पलकों को छूते ही सीधा दिल पे असर होता है।
1: क्या बात है,
0: मतलब मजा आ गया। हालांकि मेरी आवाज में आपको कशिक नहीं महसूस हो रही होगी, फील नहीं हो रही होगी, हमारा जोनर नहीं है, लेकिन मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी। और मैं कभी कभी गुलजार साहब को भी पढ़ता रहता हूँ, उनकी भी मुझे बहुत चीजें बहुत प्यारी लगती है।
1: और बहुत अच्छा,
0: ऐसे मतलब उसमें इतनी सुंदर सुंदर चीजें पढ़ने को मिलती है, कई बार गजलों से इतनी अच्छी निकल जाती है पंक्तियाँ की उन्हें पढ़कर ही मतलब सुकून मिलता है। ऐसे लगता है हमारे लिए लिखी है सच में, नो डाउट।
1: एक शेर के दो मिसरे मैं आपको, शोख बरसात का मौसम है या भी जाओ,
0: वाह,
1: शोख बरसात का मौसम है या भी जाओ,
0: भी जाओ,
1: मेरे जज्बात का मौसम है या भी जाओ।
0: अरे वाह क्या बात है, मेरे जज्बात का मौसम है आ भी जाओ, मजा आ गया। क्या बात है, इस माहौल को जो है ऐसी बरकरार रखेंगे मैं आप और आप लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपको मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप के जरिए या इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे। एफ एम मुरादाबाद 89.6 का हमारा ऑफिशियल आईडी है, आप वहां आके फॉलो कीजिए। अगर आपके पास भी कोई अच्छा शायर है या आप खुद एक अच्छे शायर है, लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, आपको लगता है यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, तो ये मंच आपके लिए भी है। आप हमें इंस्टेंट डीएम करें, रजिस्टर कराएं और अगले दिन हो सकता है आप भी हमारे साथ हों स्टूडियो में। फिलहाल मनु जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, उनसे ढेर सारी बात कर रहे हैं हम और इस माहौल को और भी खूबसूरत बना रहे हैं आपकी बातों से। तो सर अभी हम जो है जिक्र कर रहे थे, जैसे कि आपने कुछ अल्फाज सुनाए, कुछ बातें कही, मैं चाहूंगा कि उन्हीं को हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं।
1: हाँ सही कहा आनंद जी, दरअसल ये गीत का एक मुखड़ा चल रहा था
0: जी जी,
1: और गीत का एक अपना जो मजा है वो ये है कि जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए
0: 100%
1: तब तक उसकी बात पहुंच नहीं पाती है। तो फिर हम इस बारिश के गीत में थे, इसे मैं कंटिन्यू करूंगा जैसा कि आपका आदेश है। और आप देखें कि किस किस तरह से, किस मोड़ से चीज कहाँ पहुंचती है,
0: क्या बात है।
1: और अपने श्रोताओं के लिए भी ये क्यूरियोसिटी हम बना के रखते हैं।
0: आपके पास सब कुछ होता है, यहाँ हर हर मर्ज की दवा है आपके पास।
1: अरे जरा नवाजी
0: सर, आते हैं पकड़ के।
1: मैं कंटिन्यू करता हूँ
0: जी।
1: मौसम बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि उसके करीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ जिस मैंने जिससे प्यार किया, प्यार का इजहार किया, उसने भी प्यार से इस प्यार का इकरार किया। आज

0: खुश नसीब हूँ, मौसम बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ। देखें और एहसास करें
1: क्या
0: कि जब बारिश मसलसल पड़ जाती है
1: जी जी,
0: तो आपने देखा होगा कि बच्चों के भी होठ कांपने से लगते हैं।
1: हाँ,
0: कोई भी बारिश में जब ज्यादा देर तक टिक जाता है तो हाँ, होठ बस वो कैफियत आप नजर में रखें और ये संतरे का
1: आप लुत्फ उठाइएगा। आप सोचिए कि आप बारिश में है, इमेजिन करिए खुद को।
0: उसके कांपते लब पे मेरे दिलो जा कुर्बान, भीगती जुल्फ

0: खुश नसीब हूँ, और खुश नसीबी का क्या आलम है
1: जी,
0: देखें अगला अंतरा। वो संग मरमर है, कोहिनूर हीरा है,
1: वाह,
0: उसकी हुस्न अदा और दिल पे हक मेरा है।
1: क्या बात,

0: मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मौसम में बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ। और अब इसका अंतिम अंतरा आ रहा है
1: जी,
0: और लौट के हम फिर वापस अपने इस ध्यान में आ जाते हैं।
1: अरे वाह, बिल्कुल।
0: दर्द दिल सताता है शाम को जालों में, अब भी मिला करते हैं।

0: मौसम बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब।
1: क्या बात है, मजा आ गया सर। मतलब मुझे इतना मजा आया है तो सोचिए हमारे सुनने वालों को कितना मजा आएगा। ये तो आपने नो अपने टैलेंट को छुपा के रखा था ना गाने वाले को, अगली बार हम आपसे पहले गाना ही सुनेंगे। मतलब सच में अमेजिंग यार, इतना बढ़िया आपने गाया। पहले तो आपकी आवाज इतनी अच्छी है,
2: इतना भी अच्छा है, थोड़ा सा
1: नहीं सच में यार मेरे को सुनने में बहुत मजा आया। मुझे पता है हमारे लिसनर को भी बहुत आनंद आ रहा होगा, इतना अच्छा आपने गाया और इतनी गहराइयों से आपने सुनाया, हमें बिल्कुल हमारे सामने पिक्चर चल रही थी। आपने गाना है वो इमेजिन करना
2: है
1: सच में, लेकिन बहुत
2: हमारे श्रोताओं तक बात ये पहुंच पाई है।
1: जी बिल्कुल,
2: दरअसल क्या है कि इसे तहत में भी पढ़ा जा सकता था, लेकिन जो इसका रोमानी अंदाज है, जो फील है वो इन गुनगुनाहट के साथ है।
1: क्या बात है,
2: ये एक अलग बात है कि हम रफी साहब
1: लेकिन बट सर आपने जिस तरीके से अपने शब्दों को रखा ना गुनगुनाहट में भी, तो वो एक था उसके अंदर एक चमकी है, मजा आ रहा है सुनने में। वो वाइब मिल रही थी आपके शब्दों की और आपके गाने की जो सुर तालमेल थे एकदम बढ़िया वाले थे,
2: अच्छा,
1: तो वो अच्छा लगा मुझे।
2: बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया
1: सर, आपका भी शुक्रिया। आप इतनी बार आए लेकिन आपने कभी हमें सुनाया नहीं, ये बड़ी गलत बात है, लेकिन आज लगे हाथ आपने सुनाई डाला, बहुत बढ़िया।
2: हाँ दरअसल क्योंकि मौसम है और मौसम में बात है कि मैंने अभी जिक्र किया कि जब महबूब के साथ होता है तो उसका साथ जिंदगी की सबसे बड़ी नियामत होती है।
1: शायर होते ही महबूबा की बात क्यों करते हैं, मैं सवाल पूछ सकता हूँ क्या? मतलब मैं यहाँ मोस्टली जितने भी इंटरव्यूज कर चुका हूँ, हर कोई महबूबा और मतलब मैं क्या बोलूँ, पहली मोहब्बत, ये सब पे बात होती है ज्यादातर। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ यार क्या चल क्या रहा है देश दुनिया में, हर किसी ने प्यार किया, मैंने नहीं किया शायद, इसीलिए मेरे को समझ नहीं आता क्या जरूरी है सब समझने के लिए प्यार करना।
2: नहीं नहीं, आप क्या जरूरी है, आप चाहें तो छुपा सकते हैं, कोई बात नहीं
1: सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं आप देख रहे दोस्तों,
2: लेकिन
1: सर निशाना कहाँ मार रहे हैं,
2: सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, ये रूह से महसूस करने की चीज होती है। और एक बात और होती है, मैं ये बिल्कुल पुख्तगी के साथ बता सकता हूँ,
1: हाँ जी हाँ जी,
2: वो बताना चाहता हूँ और ये रखता हूँ कि इश्क नहीं दुनियावी यारो,
1: क्या बात है,
2: इल्हाम ही है रास मियां, रूह से रूह का रिश्ता है, दिल ने जिसे पिरोया है,
1: क्या बात है।
2: तो ऐसी कंडीशन में कि जब व्यक्ति दुनियादारी के बारे में सोचता है तो वो उस प्रेम को, उस इश्क को, इस जज्बे को फील करना उसके लिए सेकेंडरी हो जाता है, और जो इसे डीपली सेंटीमेंट्स के साथ फील करता है इस रूहानी एहसास को, वो दुनिया उसके लिए सेकेंडरी हो जाती है।
1: नहीं, सर बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में, ऐसे सारे लिसनर भी खो गए हैं, मैं भी खो गया हूँ, मुझे जागना पड़ेगा कि मैं रेडियो में बैठा हूँ। तो अभी एक काम करते हैं कि अच्छा से गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, फिर सर से इजाजत लेंगे, क्योंकि दोबारा के लिए भी सर को दोबारा बुलाना है ना, तो पिटारे को थोड़ा संभाल के रखना है, इनके पास बहुत बड़ी पोटली है, तो उस पोटली में से मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें ना बात के लिए भी रखी जाए, क्यों मनु जी?
2: अरे बस ये आपकी मोहब्बत है जो
1: अभी अभी हम थोड़ा सा
2: और हमें भी उस जिंदगी को, उस पास्ट को जीने के लिए मजबूर
1: करती है, और
2: मजबूर नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस मामले में कि
1: ये शुक्राना जो है एक कप चाय से होगा, ऐसे नहीं होगा, खाली खाली शुक्राने से काम नहीं चलता मनु जी, है ना?
2: क्या बात है, हाँ मौसम भी इजाजत दे रहा है।
1: हाँ बिल्कुल, तो हम बिल्कुल आपसे अभी इजाजत नहीं ले रहे, लेकिन एक गाने की इजाजत जरूर चाहते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, और अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली आप फरमा सकते हैं साहब, अपने दिल की बात हम तक रख सकते हैं हमारे मैसेजेस के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं, जाइए अपने मैसेज बॉक्स में, टाइप कीजिए अपना नाम और अपना प्यारा संदेश, उसको छोड़िए ना हमारे नंबर पे 9837896896 9837896896 पर।

0: मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस एपिसोड को सुनने के बाद जितनी खुशी आपको मिल रही है ना, उतनी खुशी सर के बच्चों को भी मिल रही है। अरे वाह पापा, रेडियो पे बहुत अच्छे अच्छे गाने गा रहे हो, कभी इतना हमें नहीं सुनाया आपने। रेडियो पे बैठ के जनता में बहुत गाने सुनाते हो, बच्चों को भी सुनाते हो नहीं कुछ ऐसा बढ़िया सा? कभी रिक्वेस्ट आती है बच्चों की, पापा आज कुछ सुना दो बढ़िया सा?
1: नहीं नहीं, बच्चे भी पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर हाँ। होता यही है कि घर की मुर्गी भी दाल बराबर होती है।
0: आपने वो बात बिल्कुल सही कही है, मेरे दिल की बात आपने छीन ली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके घर का एक माहौल ऐसा बनता जा रहा होगा ना कि कहीं ना कहीं बच्चे भी फिर वो ढलते चले जाते हैं, उनको भी वो चीजें पसंद आने लगती है।
1: बच्चों का और हमारी शरीर की हयात का और परिवार में जो भी है सभी का बड़ा सहयोग रहता है।
0: अरे वाह, इस तरफ रुझान
1: बड़े प्यार से जो है अपनी जिंदगी चल रही है, ये
0: चलिए हमारी तो शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, आपकी ये जो गाड़ी है वो ऐसी चलती रहे, बस हमारा भी यही आपके लिए कहना है जी। सर तो चलते चलते देखिए, इस घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही और कैसे हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। ये तो आपकी कह सकते हैं जर्रे नवाजी है जो आपने इतने खूबसूरत तरीके से जो है पेश किया हमारे साथ कार्यक्रम, मजा आ गया। कैसे मतलब टाइम हो गया पता ही नहीं चल रहा है।
1: अरे नहीं यार आनंद जी, एक बात मैं बताऊं कि जब भी श्रोताओं से जुड़ने का मेरा मौका होता है तो मेरे अंदर भी एक अलग उत्साह आ जाता है।
0: वो तो मैं देखता हूं
1: और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यार आनंद जी, जो तुमने मुझे बुलाया है वो मेरे मन की बात छीन लिए, या तो इस तरीके से बिल्कुल ऐसा रहता है।
0: अरे वाह क्या बात।
1: चलिए एक मौजू बदलते हुए एक शेर मैं आपके
0: बीच जरूर सुनना चाहूंगा, इरशाद स्वागत है।
1: अभी मरासिम की बात चल रही थी, संबंधों की बात चल रही थी, तो मैं दो लाइन रखता हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है जमाना बहुत बदल रहा है और लोग मोहब्बत को भी उसकी कमी समझ बैठते हैं। तो तमाशा बन के रह जाए मरासिम, तमाशा बन के रह जाए मरासिम, मोहब्बत में कभी इतना न झुकना,
0: वाह
1: उसी की जी हुजूरी मार देगी, मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात,
1: मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना,
0: मोहब्बत में इतना ना झुकना, वाह। लेकिन सर मोहब्बत में झुके बिना काम नहीं चलता ना।
1: हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, ये इश्क की बाजी है।
0: हाँ।
1: और जो हार जाता है वही जग को जीत देता है।
0: क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया।
1: लेकिन यहाँ मैंने अभी जैसे जिक्र किया
0: जी
1: कि जमाना बहुत बदल गया है, लोग आपकी शराफत को अलग तरीके से भी देखने लगते हैं।
0: ये बिल्कुल सही बात।
1: और यकीनन तो है ही है कि जो घटिया लोग होते हैं वो उसका अक्सर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
0: सही बात,
1: वो चाहते हैं कि उनके साथ वही ब्रूटल स्वभाव को रखा जाए ताकि वो अपनी औकात समझते में नीचे रहें। लेकिन फिर भी मैं महसूस करता हूं कि हमें जो अपनी सादगी है, जो अपनी मासूमियत है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए।
0: क्या बात,
1: इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्रोताओं के साथ विदा लेते हैं।
0: आपने मनु जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छी बात भी कह दी जाते जाते हैं। तो बट मेरा ऐसा मानना है कि हमें किसी की वजह से खुद को नहीं बदलना है,
1: बिल्कुल
0: हम है वो हमें रहना
1: है
0: ना
1: जी।
0: जो आपकी नेचुरलिटी है, जो आप नेचुरल है, जो आप ओरिजिनल है, उसको ही रखिए, मेरा मानना तो ये है। जो जैसा है,
1: अरे हमारे गाली चचा कह गए भाई, बस बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना।
0: वाह,
1: बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना,
0: अरे
1: आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना।
0: क्या बात,
1: तो जो इंसानी गुण है, जो अलामत है,
0: हाँ जी,
1: जो उनकी मोहब्बत है, तो
0: बहुत बढ़िया
1: कायम है
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी उतना ही आनंद आया होगा हमारे साथ बातचीत करके और हमारे श्रोताओं से बात करके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आनंद का होल स्क्वायर है ये।
0: अरे वाह,
1: आनंद जी के साथ जो आनंद मिलता है तो मल्टीप्लाइड बाय आनंद इज स्क्वायर ऑफ आनंद।
0: धन्यवाद सर। और हमारे जो श्रोतागण है उनको भी जरूर पसंद आ रही होंगी हमारी बातचीत। और बाकी श्रोताओं, अब हम लेंगे आपसे जाने की इजाजत, कुछ अच्छे गीत आपके लिए छोड़ के जाएंगे। जल्दी मनु सर के साथ वापस जुड़ेंगे कुछ और नई रचनाओं के साथ, कुछ नए गीतों के साथ, कुछ और नई उनकी प्यारी सी शायरियों के साथ।
1: फिर
0: वो आपके दिल के तरानों को
1: छेड़ेंगे।
0: हाँ जी,
1: हमेशा हाजिर हूँ।
0: हाँ
1: जब चाहे।
0: बिल्कुल सर, डेफिनेटली। और वैसे भी हमारी मुलाकात तो चलते फिरते कई बार हो ही जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी श्रोताओं, आपसे भी हमारा यही कहना है कि अगर आप भी कुछ अच्छा करते हैं तो उसे करते रहिए, सही दिशा में काम करेंगे तो जरूर एक ना एक दिन पहचान आपको भी मिलेगी। बस वही है कि अपने कर्म को मत छोड़ो, जो आप चाहते हो वो आप करते रहो। बाकी अभी मैं लेता हूं आपसे जाने की इजाजत, जल्दी होगी मुलाकात कुछ अच्छे गीतों के साथ। आप जो है आनंद लेते रहिए एफएम मुरादाबाद का। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर कुछ और नए साथियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: है तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कांवड़ लेकर महादेव का नाम।
2: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
1: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
2: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
1: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: 14 एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है, तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है

अहमदाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।